0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहित पीज़ादा इन वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। हिंदुस्तान पाकिस्तान बरे सगीर और मशरक़ वुस्ता में अब 11 जुलाई 2026 और हफ्ते के दिन की सुबह हो रही है। हमेशा की तरह ये नाचीज पूरी दुनिया की डेवलपमेंट्स को देख रहा है। आप में से वो तमाम लोग जो मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको अब तक शक हो गया होगा, आपने ये एनालिसिस किया होगा कि मोहित पीज़ादा का कोई मसला ही इस किस्म का है, पागल है बेचारा, हर वक्त दुनिया की डेवलपमेंट्स को देखता रहता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं जब डेवलपमेंट्स को देखता हूं तो हर डेवलपमेंट, हर न्यूज स्टोरी के अंदर से मैं एक मॉरल आउटकम निकालने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब क्या है, इसमें से हम क्या चीज सीख सकते हैं। तो मैंने एक बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की, बहुत इंटरेस्टिंग, जब आप फैसला करें कि इंटरेस्टिंग ज्यादा है या खौफनाक ज्यादा है, मैंने एक न्यूज स्टोरी देखी। गुज़श्ता 24 घंटों में यूनान के एक एयरपोर्ट से रायन एयर का, जो मेरा ख्याल बजट एयरलाइन है, उसका एक जहाज उड़ा जर्मनी के किसी एयरपोर्ट के लिए। वो थोड़ी देर उड़ा था तो उसकी एक खिड़की जो है वो टूट गई और एक शख्स जो उस खिड़की की विंडो सीट पर बैठा था वो बेचारा हवा में मुअल्लक हो गया। फॉर्चुनेटली उसने बेल्ट पहनी हुई थी और उसका धड़ भारा हवा में लटका हुआ था जहाज के बाहर, लेकिन बाकी पैसेंजर्स ने उसको खींच के अंदर कर लिया। जहाज वापस यूनान के एयरपोर्ट की तरफ आया और पता चला कि ये जहाज था बोइंग 737NG। तो ये मसला है कि खिड़की खुद से नहीं टूट गई, खिड़की की कमजोरी नहीं थी, दर हकीकत जहाज के इंजन का एक पार्ट लूज हो गया और वो आके खिड़की पे लगा, खिड़की क्रैक कर गई, खिड़की टूट गई और ये शख्स जो है हवा में मुअल्लक हो गया। मैंने थोड़ी सी रिसर्च की, कुछ न्यूज स्टोरी से पता चली मुझे, कुछ मैंने एडिशनल रिसर्च की, वैसे तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, बिकॉज खैर मैं बैठता नहीं वैसे विंडो सीट में, रोंगटे मेरे खड़े हो गए। तो मैंने देखा कि ये इससे चंद साल पहले भी बोइंग 737NG के साथ ऐसा ही एक हादसा अमरीका में भी हुआ था और फिर अमेरिकन जो एयर ट्रांसपोर्टेशन की सेफ्टी है उसने बहुत डंडा दिया, बम्बू दिया बोइंग को, बोइंग ने अपने तमाम जहाज वापस बुलाए, उनको ओवरहॉल किया। अब रायन चूंकि बजट एयरलाइन है, ये पता नहीं कि रायन एयर ने अपने जहाज़ों को ओवरहॉल किया था या नहीं किया था, लेकिन अब तो ज़ाहिर है जो कुछ भी वो करेंगे। अब इस स्टोरी के मॉरल आउटकम बहुत से निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि अगर आप ट्रैवल करते हैं यूरोप में, खास करके बजट एयरलाइंस बहुत ज़्यादा हैं, तो बजट एयरलाइन में ट्रैवल ना करें, किसी ऐसी एयरलाइन में ट्रैवल करें जिसके पास सफिशिएंट लिक्विडिटी और फंड्स होते हैं अपनी अपनी मेंटेनेंस को रखने के लिए। दूसरा इसका मॉरल आउटकम यह है कि अगर आप जहाज में बैठे हैं तो चेक कर लें कौन से जहाज में बैठे हैं, और अगर आप बोइंग 737NG में बैठ गए क्योंकि अमरीका में ज़ाहिर इस्तेमाल हो रहा है, तो आप फिर ऐसा करें कि एयर होस्टेस वाली जो है ना सीट, आइल वाली, वो ले लें, विंडोज पे ना बैठें। वैसे भी अगर आइल सीट पे होते हैं तो एयर होस्टेस अगर अच्छी हो, मेहरबानी करें, तो उसके साथ गपशप का भी खासा मौका मिलता है। लेकिन इसका एक और भी बड़ा सीरियस किस्म का आउटकम है, वो सीरियस आउटकम ये है कि जहाज जो है वो एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है और जब जहाज उड़ता है तो उसके ऊपर बेतहाशा एटमोस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर होता है, उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में, इसीलिए जहाज़ों के अंदर ये मसले जो हैं पैदा होते हैं। अब जहाज तो एक इंजीनियरिंग प्रोडक्ट है, इसी तरह से जो एक रियासत होती है ये भी एक मैन मेड प्रोडक्ट है। रियासतें खुदा ताला ने नहीं बनाई, ये कोई ऑर्गेनिक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मैन मेड पोलिटिकल प्रोडक्ट है। जब आप गलतियाँ करते हैं और आपका दिमाग ख़राब हो जाता है तो आप अपनी गलतियों के नतीजे में किसी भी रियासत के ढांचे के ऊपर बेतहाशा प्रेशर जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। जब ये प्रेशर बढ़ता है तो फिर उसके असरात जो हैं वो नज़र आते हैं। इस वक्त रियासत पाकिस्तान, ये जो मुमलकत खुदादाद है, इसके ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 3 साल से जो गाड़ी चलाई हुई है नवंबर 2022 से, उसका प्रेशर जो है वो आपको बहुत विजिबल तरीके से नज़र आ रहा है। ये प्रेशर आपको बलूचिस्तान में भी नज़र आ रहा है, ये आपको फाटा में भी नज़र आ रहा है, ये अफगानिस्तान के साथ डीलिंग में भी नज़र आ रहा है, ये आपको आज़ाद कश्मीर में भी नज़र आ रहा है, ये आपको GBP भी नज़र आ रहा है। और भूल जाएं इस चीज़ को कि ये अडयाला जेल के बाहर आपको नज़र आ रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ जो झगड़ा है उसमें नज़र आ रहा है, ये आपको पाकिस्तान के मीडिया के झगड़े में नज़र आ रहा है, ये आपको पाकिस्तान की जुडिशरी के साथ झगड़े में नज़र आ रहा है, उसके असरात आपको नज़र आ रहे हैं। इसके नतीजे में आपको मेरी तरह के जर्नलिस्ट जो हैं वो सारे के सारे दहशतगर्द बन चुके हैं। इमरान खान भी दहशतगर्द है, बुशरा बीबी भी दहशतगर्द हैं, पाकिस्तान का फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर भी दहशतगर्द है। तो इसके असरात आपको हर तरफ नज़र आ रहे हैं। मैंने इस सिलसिले में गुज़िश्ता चंद घंटों में बहुत से ट्वीट्स मैंने सेलेक्ट किए हैं और वो हर ट्वीट की अपनी एक कहानी है, वो ट्वीट मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाने भी वाला हूँ और उसके ऊपर चंद कमेंट भी करने वाला हूँ, और जब ये सारी कहानी मेरा ये वीलॉग आप कंक्लूड करेंगे तो शायद आप मेरे से एग्री करें कि एक मुकम्मल कहानी जो है इन ट्वीट्स की आपके सामने आ जाएगी। मुझे ज़रा स्टार्ट करने दें। सबसे पहला जो ट्वीट मैं आपको दिखाने लगा हूँ یہ پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بنیادی طور پر یہ کوئی پریس کانفرنس ہے جو کی ہے جناب اختر مینگل صاحب, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, محمود خان اچکزئی جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لیڈر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر بھی ہیں پارلیمنٹ کے اندر نیشنل اسمبلی میں, ان کے ساتھ راجہ علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے. یہ بلوچستان کے حوالے سے ہے جہاں محمود خان اچکزئی, آپ کو پتہ ہے, بڑی مناسب بات کرتے ہیں, یہ کوئی مطلب سبسٹنس کے بغیر بات نہیں کرتے. یہ منگی ڈیم کے اوپر جو حملہ ہوا بلوچستان میں, اس حوالے سے محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چلا ہے, اور یہ بلوچ لیڈر ہیں, ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ پولیس والے جو منگی ڈیم کے لیے جو پوسٹ تھی ان کو کہا گیا کہ آپ لوگ وہاں پر پہنچیں, ان کو نہیں بتایا گیا کہ ان کو وہاں پر کیوں بلایا گیا ہے, اور ان کو کہا گیا کہ ایک ایک دو دو میگزینز اپنے ساتھ لے کر آئیں. ایک تو پراپرلی پریپیئرڈ نہیں تھے, پھر جب ان کے اوپر حملہ ہوا وہ لڑتے گئے اور دوپہر کے 12 بجے کے قریب ان کا تمام اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا. محمود خان اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہاں سے غالباً ایئر فلائٹ میں کوئٹہ کینٹونمنٹ کے گیریزن صرف کوئی آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ تھا, ان کو مدد کیوں نہ مل سکی, اتنی بڑی تعداد میں پولیس والے کیوں جاں بحق ہوئے, کیوں انہیں حملہ آور جو ہیں اپنے ساتھ یرغمال بنا کے وہاں سے لے گئے, اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. اب گزشتہ 4-5 دنوں میں بلوچستان میں جو کچھ ہوا ہے اس کی جو شاک ویوز اور ٹریمر ویوز ہیں وہ مسلسل پورے پاکستان کو ہلا رہی ہیں, پاکستان کے اندر بھی ذرائع ابلاغ کو ہلا رہی ہیں, وہاں بھی لوگوں کے جو ہے نا پریشر پڑ رہا ہے ان کے ذہنوں کے اوپر, جس طرح سے بوئنگ 737 NG کے اوپر پریشر پڑتا ہے اسی طرح سے وہاں بھی پریشر پڑ رہا ہے. مزید ایویڈنس بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس پہ گورنمنٹ کا ریسپانس بھی

हमने जो ऑपरेशन शैबान शुरू किया है मंगी डैम पे हमले के नतीजे में, हमने उसके एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम पहाड़ियों पे चले गए हैं। पाकिस्तान आर्मी पैरा मिलिट्री ट्रूप्स जो हैं, जैसे एससी है, उसके अलावा बलूचिस्तान की पुलिस है, और हमने अब तक 75 जो हैं दहशतगर्द हमने मार डाले हैं, हम इनका सफाया कर देंगे। अच्छा, अब अगर सरफराज मुफ्ती साहब की या पाकिस्तान की किसी हुकूमत के अहलकार की, डी जी आई एस पी आर की, किसी और मिनिस्टर की ये पहली ही दफ़ा ऐसी स्टेटमेंट आई होती तो फिर तो हम इस पर यकीन कर लेते कि वाकई बड़ा सख्त रिस्पॉन्स है और इसका अब एक रिजल्ट निकलेगा। लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि गुज़िश्ता 20 बरस से इस किस्म की बीसियों स्टेटमेंट्स ही हमारे सामने ला चुके हैं। ना तो बी एल ए का जोर टूटा है, ना बी आर एफ ने कहीं डिसअपेयर हुई है, ना टी टी पी का कोई खात्मा हुआ है। अलबत्ता यह है कि ये रियासत जो है उसके प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। अगर मैं अगली ही स्टोरी आपको दिखाऊँ तो आपको सरफराज मुफ्ती साहब की जो स्टेटमेंट है उसकी कमजोरी बड़ी आपके सामने वाजे हो जाती है। ये बीबीसी उर्दू की स्टोरी है। इस स्टोरी ये कहती है कि शफीक मैंगल के घर पे हमले में 17 हलाकतें, हदफ मैं ही था लेकिन साथियों की वजह से हमला आवर नाकाम रहे। शकीफ, ये जो शफीक मैंगल साहब हैं, ये सरफराज मुफ्ती साहब के सपोर्टर हैं बलोचिस्तान के अंदर। ये वो उस धड़े से ताल्लुक रखते हैं जो हुकूमत को सपोर्ट करता है। तो ये सरफराज मुफ्ती साहब के चीफ मिनिस्टर के ये सपोर्टर हैं और इनका घर फुली आर्म्ड था, इनके पास आर्म्ड गनमैन थे। इनको मारने के लिए, वो बीबीसी उर्दू को बताते हैं कि हमला हुआ और हमले में मेरे साथी चूंकि कट गए, मरे, बहुत बुरी तरह से लड़े, तो मैं महफूज रहा, लेकिन 17 लोग मेरे साथियों में से जो हैं हलाक हो गए। अब यहाँ पे बीएलए या ये जो कोई भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं या इनके पीछे जो मास्टरमाइंड है, और ये मुझे लग रहा है कि मास्टरमाइंड बहुत सोफेस्टिकेटेड है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी सेंस है, तो ये कर क्या रहे हैं? अब वो बाकी सब चीज़ें तो कर ही रहे हैं। मंगी डैम पे हमला कर दिया, कॉन्वॉयस पे हमला कर दिया, मैंने सुना है कि सरगोधा तक उन्होंने हमले जो हैं वो शुरू कर दिए हैं, वहाँ से भी वो लोगों को अगवा करके ले जा रहे हैं, खौफ व हरास तो मचा ही रहे हैं। लेकिन वो बलूचिस्तान के पावर आर्किटेक्चर में जो भी इस हुकूमत का सपोर्ट बेस है, जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, वो शफीक मैंगल से कोई ज़ाती दुश्मनी की वजह से हमला नहीं किया। शफीक मैंगल और शफीक मैंगल की तरह के लोगों को टारगेट कर रहे हैं टू सेंड द मैसेज अक्रॉस कि जो भी इस सेटअप को सपोर्ट करेगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे। अब ये मेरा अगला ट्वीट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये खाली अगर बलूचिस्तान में ही सूरत हाल होती तो ठीक था। ये आज़ाद जम्मू और कश्मीर अपडेट्स के नाम से किसी का ट्विटर हैंडल है। ये ट्विटर हैंडल को अगर आप देखते हैं तो इसके नीचे बेतहाशा वीडियो एविडेंस है कि कैसे आज़ाद कश्मीर के तूलो अरज में जलसे हो रहे हैं, रैलीज निकल रही हैं, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और जो सूरत हाल नाआकबत अंदेशी के नतीजे में पैदा की कर दी गई है, वो सूरत हाल जो है वो मसलसल आज़ाद कश्मीर में कंटिन्यू कर रही है। एक महीने से ज़्यादा हो गया है और वो सूरत हाल जो है वो सेटल नहीं हो रही, और कहीं सैकड़ों लोग हैं, कहीं हज़ारों लोग हैं, वो सड़कों पर बैठे हुए हैं और वो सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। अब ये एक और मतलब ट्विटर है, ये वकार खान साहब हमारे दोस्त हैं अमरीका में, इनके पास कोई बहुत बड़ी टीम है, इनकी खासियत है कि हर वक्त हर किस्म की चीज़ें निकाल के शेयर करते रहते हैं। लेकिन ये जो वीडियो है इन्होंने जो शेयर की है, ये वीडियो मैंने सुनी है। ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टीवी एंकर पर्सन जो शरीफ खानदान के एक जाती एंकर हैं, जिनका तमाम मीडिया का कैरियर जो है उनके साथ ही है, ये उनके हवाले से अब्बास अफसार आलम साहब ने एक वीडियो की है और उस वीडियो में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के ऊपर हमला कर दिया। अब सियासी पहलू तो यह है कि अफसार आलम साहब जो हैं वो शरीफ खानदान से उनका ताल्लुक है और मोहसिन नकवी साहब को समझा जाता है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के ज़्यादा करीब हैं। तो एक तो इसका ये पॉलिटिकल एंगल है कि ये शरीफ खानदान की तरफ से इसे आप जनरल आसिम मुनीर की टीम के ऊपर एक हमला तसव्वुर किया जा सकता है। अफसार आलम साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप, मैं जो कुछ उन्होंने लिखा है वो ऊपर भी लिखा हुआ है, इस वजीर दाखिला ने यानी मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क कर दिया, बलूचिस्तान इसने बर्बाद कर दिया, कश्मीर का बेड़ा इसने गर्क कर दिया, केपी की तबाही इसने कर दी, और ये वजीर दाखिला उर्फ वजीर खारजा है, किधर है बंदा इससे पूछे तूने क्या किया है, तू तो कहता था कि एक एसएचओ की मार है, कल से दो एसएचओ शहीद हो गए हैं, नून लीग का सहाफ़ी अफसार आलम। ये खैर इसमें वकार खान साहब ने इसके ऊपर हाशिया नगारी की है। इसके बाद बुनियादी तौर पर अफसार आलम साहब जो हैं वो सारे का सारा मलबा जो इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल है। शुरू में मैंने आपको क्या एग्जाम्पल दी थी, मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी बोइंग 737 एनजी की, जब वो उड़ता है लाइक एनी अदर प्लेन तो उसके ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, अगर उसकी इंजीनियरिंग ठीक नहीं होगी तो प्रेशर बढ़ जाएगा, टुकड़े उसके निकल रहे। यहाँ पे आपको इस पूरे निज़ाम के परखच्चे खुद से खुद प्रेशर से जो है ना इसके परखच्चे उड़ते आपको नजर आ रहे हैं। ये अफसार आलम साहब इस निज़ाम के सबसे बड़े डिफेंडर हैं, इनकी ज़ुबान ख़राब है, इनके हालात बड़े ख़राब हैं, इन्होंने अपने पीछे किताबें रखी हुई हैं कोई 20-25, ये शायद इतनी ही होंगी इनके पास, या मुझे तो शक ही है कि जो 20-25 किताबें अफसार आलम साहब ने अपने पीछे रखी हैं इनमें से भी 4-5 ही अगर ये पढ़ लेते तो इनके ज़हनी हालात दो ना होते जो इनके हैं। लेकिन इस निज़ाम को ब्लेटेंटली

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: हम रेडियो हम वतन कोपेनहेगन के स्टूडियो से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारी ये नशरियात ऑनलाइन टीवी नई दुनिया पर भी पेश की जा रही हैं। और अब हम पेश करते हैं अपना हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग। इस प्रोग्राम में आपके मेजबान जनाब बाशी कुरैशी गुज़श्ता हफ्ते के अहम दैनिश और आलमी खबरों का तज़िया करते हुए उन पर तबसरा भी करेंगे। तो लीजिए, पेश खिदमत है हमारा हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग।
2: मोहतरम सामेन और नाजरीन, रेडियो हम वतन कोपेनहेगन और टीवी नई दुनिया की जानिब से आप सबको आदाब और सलाम। आप जहाँ भी हैं खुश खुर्रम रहें। मैं हूँ आपका मेज़बान बाशी कुरैशी। आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम बाशी के संग में हम हसब मामूल हफ्ते रफ्ता की अहम खबरों पर बातचीत करेंगे। मौजूदात सियासी, समाजी और मालूमाती नोयत के होंगे और इन सब बातों पे, खबरों पे तबसरा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन पर जनाब नसर मलिक साहब भी मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि हम जनाब नसर मलिक साहब की तरफ जाएं, हम आपको छोटी छोटी मालूमाती खबरें पहुँचा देना चाहते हैं। सबसे पहले यह है कि अभी आजकल मैंगो का मौसम हुआ है, तो पाकिस्तान कम्युनिटी जो है डेनमार्क में, उन्होंने काफ़ी फेस्टिवल्स किए हैं, मैंगो फेस्टिवल्स। अच्छी बात है, लेकिन मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी फेस्टिवल्स में मैंगो के अलावा कुछ और भी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री वगैरह के बारे में या कल्चर के बारे में भी कुछ प्रोग्राम यहाँ पे होने चाहिए। लेकिन 11 जुलाई कल जो है वो जनाब शेख खुर्रम साहब ने अरेंज किया था मैंगो फेस्टिवल अलबसलून में, बहुत से लोग आए हुए थे वहाँ पे। तो नसर और शौकत और मैं भी वहाँ पे गए थे, तो बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था। तो ऐसी जो फेस्टिवल्स की बहुत ज़रूरत है, जैसे मैंने पहले कहा है। और एक दोबारा यही फेस्टिवल 1 अगस्त को भी दोबारा वहीं पे मनाया जाएगा। और कल सैटरडे को पाकिस्तान के मशहूर क्रिकेटर जनाब मोहम्मद यूसुफ, जिनको सबका यूसुफ योहाना भी कहते हैं, वो भी आए हुए हैं डेनमार्क में। उन्होंने कल एक क्रिकेट टूर्नामेंट जो है उसको उनकी सदारत की, और आज वो वियाबो पार्कर में, जहां हमारे नसर मलिक साहब भी रहते हैं, वहीं पे एक हॉल में उनके एजाज़ में एक छोटी सी तकरीब है 5 बजे। तो हम रेडियो हमतन की तरफ से शौकत, नसर भाई और मैं, हम वहां पे जाएंगे और अगले हफ्ते आपको बताएंगे वहां पे क्या हुआ। तो उसके अलावा वो लोग जो बुज़ुर्ग लोग हैं, वो उनको शायद पता होगा कि 70s-80s में बहुत मशहूर सिंगर्स थी एक बॉनी टालर, वो उनकी भी 75 साल की उम्र में वो फौत हो गई हैं। वो उनका आयरलैंड से ताल्लुक़ था, लेकिन वो इंग्लैंड में रहती थी। तो उन्होंने जो है काफ़ी कॉन्सर्ट भी किए थे, और नवंबर में उन्होंने डेनमार्क भी आना था कॉन्सर्ट करने के लिए। तो ये जो है अब फौतगी तो सबके लिए, वो सब सबका होना उनका। हेल्थ के बारे में चंद एक स्टेप्स हैं, वो हमने कुछ तक जो है रिसर्च की है, ख़ास तौर पे जो लोग 65 साल से ऊपर हैं। रज़ा, आप तो अभी 65 साल के नहीं हुए ना, तो आपके लिए नहीं है ये, हम बुज़ुर्ग लोगों के लिए। वो स्टेप्स ये हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं, सेहतमंद रहना चाहते हैं, तो कहा जाता है कि ब्रेकफास्ट करने से पहले आप एक ग्लास नीम गर्म पानी में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के पिएं। उससे आपका जो रात को जो आपके पेट में जो कुछ होता है या और सिस्टम में, वो उसकी सफाई होती है। तो बड़ी अच्छी बात है। मैं खुद जो है सुबह नाश्ते से पहले एक नीम गर्म

जो सोने से पहले ब्रीदिंग की, ये जो हमारे जिस समय ऑक्सीजन जाती है, अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें तो उसमें उससे भी जो है आपके खून में वो एक्सरसाइज वो ऑक्सीजन जाती है। उसके अलावा प्रोटीन बहुत ज़रूरी है बुज़ुर्ग लोगों की खुराक में, इसमें एग्स, चिकन, मीट, फिश, नट्स बहुत अच्छे हैं, हर किस्म के दालें कहा जाता है बड़ी अच्छी हैं खाने के लिए, और ग्रीक योगर्ट है, और विटामिन ज़रूर लिया करें आप, क्योंकि हमारे अक्सर देखा जाता है लोग विटामिन नहीं लेते, तो आप अपने डॉक्टर से बात करके जो है या डाइटिस्ट से, तो उनको वो आपको जो है ना बता देंगे किस किस्म के खुराक आपकी सेहत के लिए अच्छी है। एक और जो नुक्ता जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि बुज़ुर्ग लोगों को चाहिए कि वो सोशली एक्टिव हों, यानी कि आप फिल्म लगा के जो सोफे पे बैठ के जो ना टिड बड़ा कर रहे हैं, उसमें है कि आप जो है ना एक्सरसाइज के अलावा आपकी सोशल एक्टिविटी होनी चाहिए, दोस्तों से मिलें, बातें करें। ये कहा जाता है कि जब आप अकेले होते हैं ना उसमें तन्हाई में, तो कुछ अजीब और गरीब ख्यालात आते हैं, तो उससे दूर रहने के लिए आप जो है ना उस तन्हाई से दूर रहने के लिए सोशल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलें, और मिलें तो ये नहीं कि सिर्फ खाना ही खाएं, उनसे बहस और मुबासा करें, मुल्की हालात पे बातचीत करें, कोई ख़ास मौजू है उस पर बात करें, उससे आपका दिमाग भी बड़ा जो है अलर्ट रहेगा, और आपको डिमेंशिया होने का भी बहुत कम जो और आखिर में कोशिश कीजिए कि नई चीज़ें जो है वो सीखें आप, उससे कि आपका माइंड शार्प रहता है, और नई चीज़ें ये नहीं है कि आप कोई बड़ी हॉबी शुरू कर दें, लेकिन अखबार पढ़ा करें या कोई जैसे मैंने पहले कहा दोस्तों के साथ बातचीत करें, तो आपका ये शार्प माइंड होना चाहिए। अगर आपका दिमाग शार्प है तो उससे आपकी सेहत जो है उसके आपकी बॉडी जो है वो बड़ी ठीक ठाक रहती है। और इसके साथ एक दो सेहत के बारे में थोड़ी सी जो ख़तरनाक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो भी आजकल कोपेनहेगन में एक नया कीड़े जो है ना वो दरख्तों पे आ गए हैं, लावा उसको कहते हैं, और वो अगर आपके जिस्म पे लग जाए, कहीं आप फिर रहे हों जंगल में या बीच पे लेटे हों, तो अगर वो आपके जिस्म पे हो तो उससे बड़ी ख़ारिश होती है, उसका प्लीज़ ख्याल रखें, आप ऑयल वगैरह लगाएं अपने जिस्म पे या रेत थोड़ी सी, ताकि और फिर या कि ऐसी जगह पे हैं जहाँ ज़्यादा घास ना हो, रेत में अगर आप बैठे हैं या लेटे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लावा जो है ना इसको कहते हैं हेल विदेस लावा, जहन्नम का लावा, तो ये जो है ना उससे बड़ी ख़ारिश वगैरह होती है और जिस्म में जो है वो फुंसियाँ भी निकल आती हैं। और डेनिश पार्लियामेंट के एक मेंबर हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर हम इस लावा का मुकाबला करना चाहते हैं, इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि वो ऐसे दरख्त जिन पे ये लावा जो है वो पैदा होता है उनको ही ख़त्म कर दिया जाए। इस पे बड़ी बहस हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं ये अजीब सी बात है कि हम दरख्त ही सारे अपने तो फाड़ दें या काट दें, ये अच्छी बात नहीं है। उसके लिए हुकूमत जो है कोशिश कर रही है कि उसके लिए कोई स्प्रे वगैरह कोई ऐसा किया जाए जिससे वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। एक और मसला भी, अभी क्योंकि अभी समर है, लोग जाते हैं बीच वगैरह पे, समुंदर में नहाते हैं, तो एक नई जेली फिश भी आई है, उस किलर जेली फिश कहते हैं, और वो ख़ास तौर पे मेडिटेरेनियन में जो लोग इटली, फ्रांस, स्पेन जो जाते हैं वहाँ पे बीचेस वगैरह पे, तो थोड़ा सा ख्याल रखिए जब आप पानी में जाएँ, तो वो जो जेली फिश है वो भी अभी बहुत जगहों पर नज़र आती है। डेनमार्क में भी वो जेली फिश जो है एक किस्म का स्पेशल जेली फिश है, ब्लैक सी में भी है, कैस्पियन से भी है, डेनमार्क के पानियों में भी है, इसका भी ज़रा ख्याल रखें जब आप नहाएं तो देखें करीब जवार आपके पास आपके करीब कोई जेली फिश तो नहीं है। लगती बड़ी मासूम है, बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन वो है बड़ी ख़तरनाक जब वो अगर आपके जिस्म पर लग जाए ना। और एक इसी तरह हाँ, अभी आज मैं आजकल सारे वो बीचेस की बातें बता रहा हूँ, कहा जाता है कि एक बहुत ख़तरनाक मछली जो है वो भी मेडिटेरेनियन में आ गई है,
اور وہ اتنے اس کے جاز اتنے پاورفل ہیں کہ اگر وہ کاٹ لے تو وہ بالکل ٹانگ وانگ یا جہاں

0: भी वो काट ले, वो बिल्कुल उसका बड़ा नुकसान होता है। तो फिर मेरी यही दरख्वास्त है कि जो लोग स्पेन, फ्रांस, इटली वगैरह जाते हैं बीचेस पे समर की छुट्टियों में, उसका भी आप ख्याल रखें, लोकल मीडिया पे आप नज़र रखें, वहाँ पे जो गाइड्स होते हैं उनसे पता कर लें कि वो बीचेस सेफ हैं या उसमें आपको थोड़ा अपना ख्याल रखना पड़ेगा। एक आखिरी खबर जो मैं बताता चलूँ वो ये है कि कुछ लोगों ने ये कंप्लेन किया है कि उनके आंखों में बड़ा दर्द होना शुरू हो गया है और उसकी कोई वजह नहीं मालूम हो रही। तो डॉक्टर्स ने भी रिसर्च की है, उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि ये कोरोना जो है इतना फैला हुआ नहीं है, लेकिन कहीं किस किस जगहों पे कुछ लोगों को कोरोना हो जाता है और उसकी वजह से उनके आँखों में भी दर्द होता है। तो अगर आपके साथ ये ऐसा है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, आई ड्रॉप्स वगैरह डालने की बजाय आँखों के डॉक्टर के पास जाएँ, उनसे चेकअप कराएँ ताकि आपको सही जो है उसकी दवाई मिल सके। तो ये एक चंद खबरें थी, और आखिर में हम जब नसर साहब के पास जाएंगे तो उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं। उनकी एक नई किताब आई है तिलिस्म शब, ये स्कैंडिनेविया के जो 5 ममालिक हैं, बल्कि शुमाली यूरोप के डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड, उनकी मुख्तलिफ कहानी हैं जिसका जो नसर साहब ने लिखी है, और वो भी पाकिस्तान से एक जिल्द की तौर पे शाया हुई है। मैंने वो किताब देखी है और हम क्या कह सकते हैं, नसर साहब की जो खिदमात हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए, उर्दू अदब के लिए, ख़ास तौर पे स्कैंडिनेविया में और इंटरनेशनली, इसकी तारीफ जितनी भी कम की जाए कम है जितनी तारीफ आलमी अदब के बारे में, उर्दू ज़ुबान के बारे में। तो इससे ही हम शुरू करेंगे। नसर साहब आपको
1: जी भाषा साहब, नसर साहब के पास जाने से पहले हमारे एक सामीन ने जो है हमें एक आगाही दी है कि जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब जिन्होंने डेनमार्क आना था कल एक फंक्शन में, वो अभी तक डेनमार्क नहीं पहुंचे। कल भी जब मैं मुंतजमीन से मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे शायद कि उनकी फ़्लाइट जो है वो अभी लेट है, तो पता चला कि वो अभी डेनमार्क जो है वो नहीं पहुंचे। और हमारे जो समय सुनने वाले हैं उनका शुक्रिया कि वो हमारा प्रोग्राम सुनते भी हैं और हमें साथ साथ जो है वो आगाही।
0: तो नहीं आएंगे आज,
1: ये अभी पता नहीं है, उन्होंने इतना कहा है कि वो अभी तक जो है वो डेनमार्क नहीं पहुँचे।
0: अच्छा जी, चलिए हम जाएँगे ज़रूर। तो नसर भाई मुबारक हो आपको।
2: जनाब बहुत खैर मुबारक। एक बात की तस्वीर चाहता हूँ
0: जी जी,
2: कि ये कहानियाँ मैंने लिखी नहीं हैं बल्कि इन मुल्कों के अजीबों की मुंतखब शुदा कहानियों का हमने 4 आदमी ने मिलकर तर्जमा किया
0: जी जी जी बिल्कुल,
2: और इसे मुरतब मैंने किया
0: है। वंडरफुल, तो चलिए थोड़ा सा बता दीजिए उसके बारे में, क्योंकि आपने आपने इतना कुछ लिखा है हम तो उसको वी कांट फॉलो, लेकिन ज़रा बता दीजिए ये कहानियाँ जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए।
2: बस यूँ समझ लीजिए कि डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और आइसलैंड की ये कहानियाँ जो हैं
0: जी,
2: ये अपने अपने ममालिक के साथ साथ पूरे स्कैंडिनेविया की अदबी शनाख्त की तर्जुमान है।
0: अच्छा,
2: और दूसरा इनमें जो सबसे ज़्यादा अहम मकसद सामने आता है वो ये है कि समाज में रहकर समाज की फलाह बहबूद के लिए क्या किया जा सकता है और इसके नतायज से हासिल होने वाले फवायद जो हैं उन्हें किस तरह इज्तमाई तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है।
0: बहुत खूब,
2: तो ये एक तरह से एक पैगाम है शुमाल की तरफ से मशरक रहने वालों को कि देखिए यहाँ का अदब किस तरह तरक्की करता है और किस तरह अपने लोगों से मुंसलिक है।
0: तो ये पाकिस्तान में शाया हुई है
2: जी, ये कराची से शाया हुई है और मेरे पास चंद कापियाँ इसकी आई हैं
0: जी,
2: आप देखते हैं कि आगे क्या होता है
0: जी,
2: लेकिन कराची से बड़े इत्मीनान के साथ इन्होंने ये किताब, छोटी सी किताब है मुख्य, लेकिन इसमें जो हम कहानियाँ हैं वो स्कैंडिनेविया के अदब की नुमाइंदा कहानियाँ कहलाया कहलाई जा सकती।
0: अगर हमें जिस आपकी खिदमत में थोड़ी सी दरख्वास्त करें वो ये है कि मेरी अभी रजा से भी बात हुई है कि हम चाहते हैं कि रेडियो हमवतन की तरफ से आपके लिए एक छोटी सी तकरीब की जाए जिसमें आप अपनी ये किताब जो है सीधे सीधे लोग हम उनको बुलाएं, तो ऐसा मुमकिन है
2: जी? क्यों नहीं, आप जो चाहे आपका उसमें करिश्मा खास करें, मेरे लिए तो ये बड़े आज़ाद की बात होगी जी, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, बड़ी अच्छी बात।
0: बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब सामेन और नाजरीन अब चलते हैं हम डेनमार्क की खबरों की तरफ। हालांकि अभी पार्लियामेंट जो है वो एक्टिव नहीं है, लेकिन ख़बरें तो जो हैं वो बहुत आ रही हैं। सबसे पहले तो कि यहाँ का एक नसर भाई बहुत ज़बरदस्त न्यूज़पेपर है, बहुत उसकी वो सीरियस न्यूज़पेपर है इंफॉर्मेशन, उन्होंने डेनमार्क में जो गैर मुल्कियों के मुसलमानों के बारे में बड़ी बहस हो रही हमेशा ही होती रहती है, उसके बारे में उन्होंने एक नई सीरीज़ शुरू की है। और वो सीरीज़ ये है कि वो मुख्तलिफ नौजवान लोगों से इंटरव्यू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो ये जो डेनमार्क में डिस्कशन हो रही है उसके बारे में उनका क्या ख्याल है, क्या वो समझते हैं कि उनकी डेनिशनेस पे जो है वो एतराज़ किया जा रहा है, वो उसको कैसे महसूस करते हैं। तो एक अरबी बैकग्राउंड के हैं एडम एल मतारी, उनका भी इंटरव्यू है, वो आपने भी पढ़ा होगा। वो कहते हैं कि मैं तो बहुत ही जो है परेशान हूँ कि यहाँ पे डेनमार्क जैसे जमहूरी मुल्क में ये क्यों ऐसी जो है डिस्कशंस हो रही हैं, बजाय इसके कि मुआशरे के बारे में बातें की जाए तो हमारे पे इनका जोर किया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: पहली बात तो यह है कि रोजनामा इंफॉर्मेशन ने ये कोई नया सिलसिला शुरू नहीं किया।
0: अच्छा,
2: जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कमोबेश हर साल या हर दूसरे साल इस तरह का एक सिलसिला शुरू करता है, जिसमें खास तौर पर तारकीन वतन और उन तारकीन वतन भी मुसलमानों को सामने लाने की कोशिश करता है।
0: अच्छा जी,
2: ये एक अच्छा अमल है क्योंकि इससे हम मुसलमानों को अपना नुकता नज़र पेश करने की जगह मिल जाती है। और अब ये बात अलग है कि हम कहते क्या हैं और हमसे पूछा क्या जाता है।
0: ये सब नौजवान लोग पढ़े लिखे यहीं पे पैदा हुए हैं।
2: बिल्कुल आपने बजा कहा, और ये बात जो है ये इस बात को भी अयां करती है कि रोजनामा इंफॉर्मेशन अपने तवस्सुत से
0: जी
2: किस तरह हमारे नौजवानों को मुआशरे में आगे लाने की कोशिश कर रहा है
0: जी,
2: और उनके ख्यालात डेनमार्क के बारे में, उनकी सोच और यहाँ रहने के मुताबिक उनके मसाइल और उनकी कामयाबियों का इस तरह जिक्र करता है
0: जी।
2: ये बहुत अहम सिलसिला है, लेकिन इसको महज इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि सवाल जो है वो यकीनन जो सुनाई देते हैं कि जैसे हम पर कोई हमला किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है।
0: अच्छा।
2: उन सवाल की तह में अगर जाएं और जवाब देते हुए आप अपनी सोच को हवाई घोड़े पर सवार न रखें बल्कि मौजूद की तरफ तवज्जो दें तो ये बहुत अहम सिलसिला बड़ा कामयाब हो सकता है। तो और आपने भी जो जिक्र किया हमारे आदम अलमतारी का
0: जी,
2: तो उन्होंने भी ये चीज़ बिल्कुल ठीक कही है कि ये क्या वजह है कि हमें इंतहाई दाएं बाजू की नज़रों से बारिश में देखा जाता है।
0: एग्जैक्टली जी, बिल्कुल।
2: और हमें यही समझा जाता है कि हम एक तरह से इस मुआशरे में फतूर हैं, मैं फतूर तो नहीं कहूँगा लेकिन कहा यही जाता है।
0: अच्छा।
2: और ये चीज़ जो है ये गलत है। हमारे बारे में अगर आप ये सोच रखते हैं कि ये यहाँ पर ये करते हैं यूँ करते हैं मुआशरे पे बोझ है तो ये सबसे गलत है। उन खूबियों को भी सामने लाइए जिनको खुद डैनिश राय आमा को जाहिर करने वाले अदारे जो हैं वो सामने ला रहे हैं कि किस तरह गैर मुल्की नौजवान नस्ल जो है वो मुख्तलिफ सनतों में मुख्तलिफ दफातर में मुख्तलिफ शोबों में तरक्की करती हुई आगे बढ़ रही
0: है। जी, इसी पहलू के यही पहलू जो है ना वो अब इंफॉर्मेशन वाले चाहते हैं कि उनके रीडर्स को और डेनिश मुआशरे में इस पहलू को भी जो है आगे किया जाए नौजवानों से बात करने के बाद। अभी
2: एक बहुत अच्छी बात है और मैं ये अर्ज करना चाहूँगा अपने सामने
0: जी जी
2: ये आपके तवस्सुत से कि जो ही आपके साथ न सिर्फ रोजनामा इंफॉर्मेशन या कोई और अखबार आपसे रास्ता पैदा करे, गुफ्तगू करना चाहे, आपका इंटरव्यू करना चाहे तो आप जरूर इस मौके से फायदा उठाएं।
0: उनसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल,
2: उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बल्कि हमारी नौजवान नस्ल को ये चाहिए कि ये जो रोजनामा इंफॉर्मेशन मुख्य नौजवानों के इंटरव्यू शेयर कर रहा है जिसमें पाकिस्तानी ही शामिल नहीं, सबको मिलते लोग नौजवान लोग जो हैं वो शामिल हैं।
0: एग्जैक्टली, और फिर यह कि हर लाइब्रेरी में पढ़ा होता है तो लोगों को खरीदने की भी जरूरत नहीं, वहाँ जाके पढ़ सकते हैं।
2: बिल्कुल बजा, लेकिन सिर्फ पढ़े ही नहीं बल्कि उस इंटरव्यू पर अपने तस्वीरात जो हैं वो अखबार को लिखें।
0: बिल्कुल हाँ, लेटर्स भी लिखा करें जो
2: एडिटर्स के नाम लेटर्स में उस मजमून का हवाला देकर अपने तस्वीरात लिखें, और ये एक बहुत बड़ी खिदमत होगी न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने मुतल्लिक डैनिशों की गलतफहमी को दूर करने के लिए।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा नज़र साहब, अगर इसी मौजू को हम लेके आगे बढ़ें तो एक नई रिसर्च आई है डेनमार्क में, वो एक जैसे कहते हैं ना बम शेल की तरह वो फटी है। वो ये है कि اس ڈینش ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ڈینش حکومت نے کئی امیگرنٹ کمیونٹیز خاص طور پہ جو گرین لینڈ سے ہیں بچے آتے ہیں ان کے ایک ایسا پیمانہ آئی کیو جو ہے نا استعمال کیا جو ان پہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا اور اس پہ اس کی وجہ سے ان کو پیرنٹس سے جو ہے والدین سے الگ کر کے کئیوں کو ڈینمارک بھیج دیا کئیوں کو وہیں پہ جو ہے بچوں کے گھر الگ گھروں میں رکھا گیا. تو اب اس ریسرچ سے یہ ہوا کہ حکومت بڑی پریشان ہے کہ یہ ڈینمارک کے مسلم میونسپیلٹی جو ہیں بلدیہ جو ہیں وہ زبردستی بچوں کو ان کے گھروں سے جو ہے وہ نکال کے ان کو سیولائز کرنا چاہتے ہیں کلچر کرنا چاہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی ریسرچ آئی ہے اس سے میونسپیلٹیز کو اور حکومت کو تھوڑی سی سمجھ آئے گی؟
2: حکومت کو سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی یہ تو ایک الگ معاملہ ہے
0: جی.
2: لیکن گرین لینڈ کے بچوں کے ساتھ یہ جو طریقہ آزمایا گیا تھا ان کی نسل کی تحقیق کرنے کے لیے اور ان کو بقول تب کی ڈینش حکومت کے ان کو آداب معاشرہ سکھانے کے لیے یہاں لایا گیا تھا اس کی, تو اب آپ نے آپ کو معلوم ہوگا کہ موجودہ وزیر اعظم جو ہیں وہ باقاعدہ سرکاری طور پر ڈینمارک کی طرف سے معافی مانگ چکی
0: جی.
2: لیکن معاملہ ختم نہیں ہوا ابھی تک. اور اب یہ جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ ڈینمارک نے دو لسانی جو جو برازیلیوں کے بچے ہیں یعنی غیر ملکی بچے براہ راست اگر ہم کہا جائیں
0: جی.
2: اور وہ بچے بھی شامل ہیں جن کے والدین میں سے ایک جو ہے وہ ڈینش ہے
0: جی.
2: ان کے اوپر کم و بیش وہی طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں جو آج سے کچھ تقریباً 50 سال پہلے 60 سال پہلے گرین لینڈ کے بچوں پر استعمال کیے گئے.
0: بالکل درست.
2: اور جب گرین لینڈ کے بچوں پر استعمال کیے گئے وہ طریقے اب اس قدر معطوف ہو چکے تھے کہ وزیر اعظم کو مملکت سے ڈینمارک کی طرف سے معافی مانگنا پڑی. تو کیا وجہ ہے کہ وہی طریقے اب غیر ملکی بچوں پر استعمال کیے جا رہے ہیں؟
0: جی جی
2: یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے لیے حکومت اور متعلقہ ادارے جو ہیں وہ جواب دیں
0: جی.
2: اور ہمارے اپنے پاکستانی بہن بھائی جو یہاں پر رہتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ بچوں کے حوالے سے گھر میں پیش آئے تو وہ باقاعدہ ڈٹ کر اس کا سامنا کریں اور جو سوشل حکام آتے ہیں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے یا بچوں کو اٹھوانے کے لیے ان کے ساتھ باقاعدہ بحث میں حصہ لیں اور اعلیٰ حکام سے رجوع کریں کہ کیا ہو رہا ہے, ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا کیوں سلوک کیا جا رہا ہے اور اس کے نتائج کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں.
0: بالکل بالکل. اچھا ابھی آپ نے جو ہے روزنامہ انفارمیشن کی موجودہ سیریز کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا کہ غیر ملکوں کی خدمات کے بارے میں ڈینش عوام کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن ابھی پھر اسی طرح کے ایک نئے نئے سرویز آ رہے ہیں, ایک نیا سروے آیا ہے خاص طور پہ جو ڈینش منسٹری آف لیبر ہے اس نے کہا ہے کہ جی غیر ملکی تو کام ہی نہیں کرتے, یہ جو ہے ان کو چاہیے کہ یہ اپنے تیار ہو کے کام کی منڈی میں جائیں اور جو نئے جابز ہیں اور ان کو استعمال کریں, نئے پریکٹس کرائیں یہ کریں. اب وہ جب بھی کوئی اچھی خبر آتی ہے اس کے ساتھ فوراً کوئی منسٹری کی طرف سے ایک اور چیز پیش کر دی جاتی ہے جس سے پھر وہی ہم ایک قدم آگے اور دو قدم پیچھے والی بات ہو جاتی ہے. تو یہ کبھی کہتے ہیں غیر ملکی اب کام کی منڈی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ان کی پرسنٹیج ہے, اب کچھ ایک دو مہینے کے بعد کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات درست نہیں ہے, ان کو تعلیم حاصل کرنا چاہیے. تو یہ حکومتی جو شش و پنج میں پڑی ہوئی حکومت کو خود بھی پتہ نہیں کہ وہ کیا کہے تو وہ بس جو واقعی وہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟
2: دیکھیے یہ جس سروے کی یا حکومتی موقف کی آپ بات کر رہے ہیں
0: جی
2: اس کو تیار کرنے میں وزارت روزگار جو ہے ہماری آباش منسٹریم
0: جی
2: ان کے ساتھ ساتھ ڈینش پیپلز پارٹی اور ڈینش ڈیموکریٹس جو تھے وہ بھی شامل تھے. اب ان دو پارٹیوں کا حکومت کے ساتھ مل کر اس موضوع پر سروے کرنا یا اس موضوع کے حقائق جاننے کی کوشش کرنا کہ تارکین وطن روزگار کی منڈی میں کیوں نہیں آتے یا آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے, یہ ایک میری نظر میں اہم کانا اقدام اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں جو ہیں یہ غیر ملکیوں کے متعلق اور خاص طور پر مسلمانوں کے متعلق جو موقف رکھتی ہیں وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں.
0: Exactly. Exactly.
2: और जब इस तरह के किसी सर्वे में इस तरह की किसी पार्टी को शामिल किया जाए तो यकीनन वो अपने मौकफ की हमायत में आदाद व शुमार इकट्ठे करने की कोशिश करेगी
0: और उसको मिस यूज भी कर सकते हैं आदाद व शुमार
2: और उसको वो उसका मकसद ही यही है कि इस तरह इस बात को उछाला जाए कि गैर मुल्की रोजगार की मंडी से बाहर है।
0: Exactly.
2: अब देखिए पिछले दिनों डेंसक इंडस्ट्री यानी डेनिश
0: इंडस्ट्रियों
2: की जो कौमी तंजीम है
0: जी जी
2: उसके आदाद व शुमार आए हैं और उन्होंने हैरान कर दिया है कि किस तरह गैर मुल्की नौजवान जो है और लड़के और लड़कियाँ वो रोजगार की मंडी में आगे बढ़ रही हैं, पेशा वराना महरियत माहिर हैं और डेनमार्क के लिए एक पैदावार की हैसियत रखते हैं।
0: Exactly.
2: वो डेनमार्क के लिए कमाते हैं, टैक्स में इतना पैसा अदा करते हैं। डेनिश अदाद शुमार का अदारा जो है उसके आप ताजा तरीन सर्वे देखिए कि कितने गैर मुल्कियों ने कितना टैक्स की मद में सरकार के खजाने में पैसा जमा करवाया है।
0: तो साहब क्या हम कह सकते हैं कि डेनिश इंडस्ट्री जो पूरी सनतकारी की जो बड़ी सबसे बड़ी तंजीम है वो जो बातें कहती है उसमें ज़्यादा सदाकत है क्योंकि उनको तो पता है कि उनके पास कितने लोग काम कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं।
2: बिल्कुल आपने बजा कहा और न सिर्फ उसमें सदाकत है बल्कि वो क्योंकि जानते हैं कि उनके यहाँ किन किन शोबों में किन किन सनतों में कितने कितने गैर मुल्की जो हैं वो पेशा वराना खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और दूसरी बात यही मैं सुनने वालों के लिए कर्ज करना चाहता हूँ कि पिछले दिनों डेनमार्क ने एक फहरिस्त शाया की है कि जिसमें इनको 49 के करीब मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की अफरादी हुकूमत की जरूरत है। उसमें आप देखिए उसमें एक इनको हजाम जो है उनकी भी जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप गैर ममालिक में रहने वाले लोगों को ये कहकर मुतवज्जो करते हैं कि हमें इन शोबों में अफराजी कुवत की कमी है लेकिन आप साथ ये नहीं बताते कि जब वो लोग यहाँ आते हैं तो आपका अपना सरकारी रवैया और समाज का उनके साथ बर्ताव कैसा होता है। यहाँ जो एक आदमी आ जाता है एक डॉक्टर आता है
0: जी।
2: उसको यहाँ आते हुए इस मुआशरे में अपने कदम जमाने के लिए किन मराहल से गुजरना पड़ता है।
0: बिल्कुल
2: सबसे पहला मसला तो उसका रहायश का है
0: जी।
2: उसके बाद उसकी जुबान का मसला है। उसके बाद फिर जरूरी नहीं कि उसको रोजगार भी मिल जाए।
0: हाँ जी काम की मंडी में बड़ा प्रॉब्लम है जी। हाँ।
2: काम की मंडी हालांकि डेनमार्क को इस वक्त 375 के करीब डॉक्टर चाहिए और इतने डॉक्टर जो है बाहर डॉक्टर जो है मुख्तलिफ सर्जन जो है वो मुहाजिरीन के तनाव के टेम्पो में पड़े हुए हैं।
0: हाँ, और उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल
2: उनको इस्तेमाल क्यों किया जाता। चाहे जितने जाए कि आप इंडिया पाकिस्तान से डॉक्टर बुलाएं नर्स बुलाएं जी और उनको यहाँ आकर ख्वार होना पड़े जी। आप मुझे ये बता सकते हैं बाकी साहब कि पाकिस्तान से आने वाला एक डॉक्टर जो है फर्ज कीजिए जिसे ना यहाँ की जुबान आती है ना वो यहाँ के मुआशरती आदाब से वाकफ है वो यहाँ जब आता है तो सबसे पहले उसके लिए रहायश का मसला है। अगर वो कम से कम किसी कोई एक कमरा लेता है किसी के साथ रहता है तो इसको कम से कम 3,000 करोड़ जो है वो अदा करने पड़े।
0: 3,000 तो रसर भाई अब बहुत कम बता रहे हैं आप। अभी कोपेनहेगन में जो है एक कमरा स्टूडेंट 6,000 करोड़ का कमरा मिलता है वो भी।
2: और अगर वो डॉक्टर साहब जी 6,000 करोड़ यहाँ पर एक साल के लिए अदा करते रहे महीने के क्या वो अपना एक छोटा सा क्लिनिक पाकिस्तान में नहीं खोल सकते।
0: एग्जैक्टली
2: वहाँ पर लोगों की खिदमत भी होगी और अपने घर में भी रहेंगे और यहाँ डेनमार्क में आप कुछ भी हो जाए आपको ये जो तुम और हम का फर्क है उसमें शुमार किया जाएगा।
0: अच्छा एक चीज
2: कहकर पुकारा जाएगा
0: जी। यहाँ पे एक चीज और मैं अर्ज कर दूँ वो ये है कि अक्सर लोग जो यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान से वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बड़े अरसे से अस्पतालों में क्लिनिक्स में उनका अपना बिजनेस होता है वो छोड़ के आते हैं वहाँ पे ये मुझे
2: उनका अपना मुकाम होता है।
0: एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल
2: यहाँ सूरज जो है वो उनकी हाथ पे अकेले पे आ जाएगा और पैसे जो है वो ये होंगे और वो होंगे
0: और फिर जीरो से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ
2: हमारी अपनी हिजरत की जो वजूहत थी वो भी कुछ कम दुख दे नहीं है।
0: जी जी
2: लेकिन फिर वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से मुंह उठाकर यहाँ आने वाले लोग जो है उनको अपने इस रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए खासतौर पर पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूद है और बात बोल रहे हैं हुकूमत कर कुछ उनको मुल्क में रखने दे के लिए कुछ
0: कोशिश कर रहे हैं।
2: उनको अपनी ही जद्दोजहद के तहत अपनी मदद आपके तहत वहाँ अपने आप को समाये रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा जो कि उस अजाब से बहुत कम है जो उन्हें यहाँ आकर भुगतना पड़ता है।
0: बहुत खूब। अच्छा, एक और चीज़ मैं अर्ज कर दूँ अपने सामने और नाज़रीन को, अगर जो हमारा प्रोग्राम पाकिस्तान में भी देखा जाता है, यूरोप के, यूरोप में जो लोग उर्दू बोलते हैं वो भी सुनते हैं, अगर आपको वीज़ा मिल भी जाता है तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अकेले आएँ, अपनी फैमिली को ना पूरी को लेके आएं, क्योंकि उनको जैसे अभी नसर साहब ने कहा है रिहाइश की ज़रूरत है, काम की ज़रूरत है, और सेट होते होते छः महीने एक साल लग जाता है। अकेले आएँ, रिहाइश ढूँढने, काम ढूँढने, सेट हो जाएं, फिर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे ला सकते हैं।
2: ये आपने बहुत अच्छी बात की। मैं इस वक्त तक पाकिस्तान से आए हुए कुछ 5-6 डॉक्टरों को जानता हूँ
0: जी जी,
2: जिन्होंने बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से अपने अहले खाना को भी यहाँ बुला दिया। अपनी बीवी के साथ साथ उनके 2-3 बच्चे हैं, उनको स्कूलों में जाने का मसले दरपेश है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि एक खानदान जो 4 अफराद पर मुश्तमिल है, मियां बीवी और 2 बच्चे, उनके लिए रहायश का बंदोबस्त करना और उस रहायश के लिए एक खतीर रकम जो है वो हर माह किराए की सूरत
0: में। सर भाई, वो तो पलना 20,000 करोने से कम मिलती नहीं कहीं।
2: मैं कहता हूँ वो बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ आने वाले जो हैं वो इस बात को सामने रखें कि क्या मैं साथ ही अपना ये तबर ले जाऊँ या मैं अकेला जाके पहले अपने पाँव जमा लूँ और फिर अपने खानदान को बुलाऊँ।
0: अच्छा, हम इसलिए नहीं कह रहे कि हम नहीं चाहते कि आप आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लें, सोच इंटरनेट पे जाके देख सकते हैं, एम्बेसी से आप वहाँ पे पूछ सकते हैं हालात के बारे में, रोज़गार के बारे में, रिहाइश के बारे में, हो सकता है कि वो आपको थोड़ी सी गाइडेंस कर दे, तो ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो एक और सर्वे आया है, उसमें ये कहा जाता है कि वो वालदैन जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं या उसमें काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं, उनके बच्चे अक्सर जो है वो पढ़ते भी बेहतर हैं और आगे उनकी तरक्की भी बेहतर होती है। तो ये चीज़ तो गैर मुल्की पेरेंट्स में भी बहुत है, और क्या ये सर्वे जो है ये एक सही डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की तालीम में, उनकी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें और उनके बारे में जो है उनसे बातचीत करें तो वो बच्चों का मुस्तकबिल बहुत बेहतर हो सकता है डेनमार्क में।
2: ये तो एक बिल्कुल कुदरती बात है
0: जी,
2: कि अपने बच्चों के सिलसिले में परेशान रहने वाले और तवज्जो देने वाले वालदैन जो हैं उनके बच्चे बहुत तरक्की करते हैं, क्योंकि वो उनको कदम कदम पर बताते रहते हैं और उनके साथ रहते हैं
0: जी,
2: तालीम के मैदान में कैसे जाना है या रोजगार के माहौल में कैसे कदम जमाने हैं
0: जी जी,
2: इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या वालदैन ऐसा करते हैं।
0: एग्जैक्टली,
2: सवाल ये है
0: और करना चाहिए उनको। हाँ जी बिल्कुल।
2: क्या कभी उन्होंने अपने बच्चे को जब वो स्कूल से या बच्ची वापस आती है घर तो पूछा है कि आज स्कूल में दिन कैसा गुजरा
0: जी जी जी हाँ,
2: या रोजगार से वापस आने वाला आदमी जो है वो बेचारा आते ही घर में ये तो नहीं कहता कि रोटी पकाई है। वो दोनों मिलकर आपस में कुछ बात कर सकते हैं कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा, मेरा दिन कैसे गुजरा
0: जी,
2: जहाँ तरक्की के कई मौके और हैं, मैं सोच रहा हूँ कि किसी और जगह भी साथ ट्राई करूँ। लेकिन जहाँ तक बच्चों की तालीम तरबियत का मामला है, इस सिलसिले में ये बात बिल्कुल जगह है कि वो वालदैन जब अपने बच्चों की तालीम और उनके मुस्तकबिल के लिए परेशान रहते हैं या कुछ ऐसे मिले जुले ख्याल रखते हैं, जब वो अपने वालदैन बच्चों की तरफ तवज्जो देते हैं तो वो बच्चे यकीनन कामयाब रहते हैं और वो बहुत अच्छे नतीजे दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे खुद पाकिस्तानी बरादरी में वो वालदैन जो बच्चों की तरफ ज्यादा रागब होते हैं, उनकी तालीम तरबियत के सिलसिले में बड़े एक्टिव होते हैं, उनके बच्चे कहाँ तक पहुंचे हुए। कल हम आपकी सोबत में जब हम गए हुए थे वहां पर मैंगो मेले में, आम के मेले में, तो आपने देखा कि हमारे कितने नौजवान जो हमसे मिले थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि आपके तवज्जो से मुझे भी कई नौजवानों से मिलने का मौका मिला जी, वो कितने शानदार उर्दू पर काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल दुरुस्त।
2: और आपके बारे में वो बताते हुए कितने पुरजोश थे और उनको कितना इत्मीनान था कि वो किस तरह आगे बढ़ रहे हैं।
0: नसर भाई, आपकी इजाजत से मैं यही सवाल जो है रजा साहब से करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे और आपके बच्चे तो वो तो बच्चों के बच्चे भी हैं। मैं रजा की फैमिली जो है ना अभी नौजवान है और रजा साहब के एक बेटा है 5 साल का। रजा, अभी जो मैं नसर भाई बात कर रहे थे कि वो पेरेंट्स, वो वालदैन जो अपने बच्चों की پرورش میں بہت حصہ لیتے ہیں ان کے تعلیم کے بارے میں. جب بچے ان کے اسکول سے آتے ہیں تو ان سے پوچھ کرتے ہیں. کیا ایسے ہوتا ہے پاکستانی کمیونٹی میں؟ ہونا چاہیے. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں؟
1: دیکھیے بھائی صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا دھیان بھی رکھتے ہیں, ان کی پرورش بھی کرتے ہیں. اور دیکھیں ہمارے بہت سے یہاں پہ خاص طور پہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں مائیں وہ ایسے ایسے عہدوں پہ ہیں, اور ہمارے جو بھائی ہیں دوست ہیں وہ بھی اسی طرح کافی آگے جو ہے ہم جا چکے ہیں. لیکن معاشرے میں جو ہے وہ آپ اگر آپ دیکھیں تو جسے کہتے ہیں کہ یہ ایک انسانی فطرت ہے. کچھ بچے جو ہیں ان کے ماں باپ ان پہ توجہ بھی دیتے ہوں گے, ان کے پاس پیسہ بھی ہوگا, وسائل بھی ہوں گے, لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ لائن سے جو ہے وہ بھٹک جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ
0: اس کی کیا وجہ ہے
1: بچی صاحب؟ اس میں شاید جو ہے کچھ گھر کی شاید جو کوتاہیاں ہوں وہ ہو سکتی ہیں, کچھ معاشرے کی جو کوتاہیاں. لاسٹ ٹائم بھی ہم بات کر رہے تھے کہ استاد کا احترام وہ یہاں پہ نہیں سکھایا جاتا. اس کے ساتھ ماں باپ جو ہیں ان کو بچوں کو ڈانٹنے کا یا ان سے اس طرح وہ رویہ رکھنے کا سختی نہیں کر سکتے. تو یعنی بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جو مل کے جو ہیں وہ کرتے ہیں. اور خاص طور پہ جو ہمارے بچے جن دوست جو ان کے کلاس فیلو جو ان کے دوست جو ان کا ماحول جس علاقے میں ہم رہتے ہیں
0: جی
1: اس کا بھی جو ہے وہ کافی اثر پڑتا ہے.
0: جی جی جی جی اچھا بہت بہت شکریہ نصر بھائی. ایک اور مسئلے پہ میں ہم نظر ڈالنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ٹریفک میں خاص طور پہ نوجوان لوگ جو ہیں وہ جب گاڑی چلاتے ہیں تو بہت تیز چلاتے ہیں اور اس سے جو ہے ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو ابھی 2025 کے جو اعداد و شمار آئے ہیں جو اس میں یہ بتایا گیا کہ ٹریفک ایکسیڈنٹ جو ہیں وہ 14,000 کے سے زیادہ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں پوری ڈنمارک میں. اور یہ جو ہے 2024 سے 1,000 سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں. تو ایک ایسا معاشرہ جس میں ٹریفک لائٹس ہیں, روڈز بڑی زیادہ ہیں, اور لیکن یہ نوجوان جو ہیں شہروں میں اتنی تیزی سے گاڑیاں چلاتے ہیں اور ایکسیڈنٹ کرتے ہیں, اس کے بارے میں جو ہے حکومت بڑی پریشان ہے. اور خاص طور پہ جو لوگ سائیکل پہ ہوتے ہیں یا پیڈیسٹرین ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی دکھ والی بات ہے کہ ایک ایسے معاشرے میں جس میں ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے یہ اس میں زیادہ سے زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہو رہے ہیں آج کل.
2: یہ آپ نے بالکل بجا کہا, اور یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نوجوان جو ہیں وہ ان میں سے بے شمار تو نہیں کہوں گا, البتہ ایک خاصی بڑی تعداد جو ہے وہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہیں کرتی.
0: جی جی بالکل.
2: اور اس پابندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ حادثات جو ہیں یہ رونما ہو رہے ہیں. اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ میں اپنے تاکین وطن نوجوان کے حوالے سے بات کروں گا, اور خود میرا مشاہدہ بھی یہ ہے
0: جی جی
2: کہ اس بات کی سخت ممانعت ہونے کے باوجود کہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے آپ ٹیلی فون استعمال نہ کریں. کئی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے کان میں کوٹیاں لگائی ہوتی ہیں اور ٹیلی فون ساتھ رکھا ہوتا ہے. ان کی توجہ اس گفتگو کی طرف ہوتی ہے کہ جائے کہ وہ سامنے دیکھیں کہ اشارے کی بتی سرخ ہے یا سبز ہے یا ان کی گاڑی کدھر جا رہی ہے. ایک اور بات جو بڑی آج کل مایوب سمجھی جا رہی ہے اور ذرائع ابلاغ میں بھی اس کا تذکرہ ہے, اور خاص طور پر وہ غیر ملکی نوجوانوں کو, اور غیر ملکیوں میں بھی عربی نسل نوجوانوں ہیں جو ہیں ان کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں کہ یہ اس موسم گرما میں کار چلاتے ہوئے کار کی کھڑکیوں کے شیشے نیچے کر کے غیر ملکی میوزک بہت اونچا چلا رہے ہوتے ہیں.
0: نصر بھائی آپ میرے دماغ کی بات جو سوال ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھ لیتے ہیں. میں یہی سوال آپ سے کرنے لگا تھا کہ یہ جو شیشے آپ کار نیچے کر کے اور عربی یا اردو میں یا اور لینگویجز میں بڑی اونچی آواز میں جو ہے نا وہ گانے سن جاتے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ادھر ادھر کے کیا ہو رہا ہے.
2: آپ نے بالکل بجا کہا, اور خاص طور پر ہمارے بزرگ لوگ جو ہیں
0: جی جی جی
2: وہ یہ حرکت دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ لندن میں ہیں یا کسی کوپن ہیگن کی سڑک پر ہیں.
0: اور ویسے بھی
2: یہ ایک بڑی معیوب بات ہے, اور یہ غیر مہذبانہ طریقہ جو ہے یہ ہمارے نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ دنیا آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کسی کلب میں نہیں بیٹھے.
0: ایگزیکٹلی, اور ان کو نائٹ کلب سمجھا ہوتا ہے انہوں نے.
2: جی
1: اچھا نصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ अगर हम इंग्लिश म्यूजिक सुनते हैं, यानी डेनमार्क की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानी अरबी तुर्की म्यूजिक मयूब लगता है तो इंग्लिश जो, ये तो एक अंग्रेज मुल्क तो नहीं है, एक डेनिश मुल्क है, तो जब दूसरे गाने अगर सुनते हैं, कोई स्पेनिश हो गया जिस तरह भी, जब भी कोई गाना कोई दुनिया में मशहूर होता है तो वो यहाँ पे रेडियो पे भी लगाया जाता है, वो भी सुना जाता है, तो सिर्फ जो है वो हमारे जो मिडिल ईस्ट या एशिया के वो गाने क्यों मयूब लगते हैं, बाकी क्यों नहीं लगते हैं?
0: मकबूलियत
2: की नहीं हो रही,
0: exactly.
2: यहाँ हम बात कर रहे हैं कि क्या आप खुली कार में
0: ऊंची आवाज,
2: या वो कार जिसके आपने शीशे नीचे गिराए हुए हैं, वहाँ बैठकर सड़क पर चलते हुए गाड़ी चलाते हुए, क्या इतना ऊंचा आप म्यूजिक सुनेंगे? इस मौजू पर बात कर,
0: बिल्कुल
2: जुबान पर नहीं हो रही, आप किसी भी जुबान में सुने आपका हक है,
0: बिल्कुल,
2: लेकिन आप उतना सुने कि सिर्फ आप सुन सकें, आपके साथ सफर करने वाले लोग जो हैं वो गर्दन उठाकर ना देखें कि आप पागलपन में क्या कर रहे हैं।
0: नसर भाई, आपको पता है, खैर आप तो गाड़ी नहीं चलाते, लेकिन डेनमार्क में आप हॉर्न देना चाहिए, ये भी जो है ना इसकी सख्ती से पाबंदी है कि आप जैसे पाकिस्तान और गैर ममालिक में वो हॉर्न देते हैं बहुत ज़ोर से, तो ये वाकई जैसे नसर भाई ने कहा है कि ये नहीं कि उर्दू में या अरबी में, बल्कि जिस ऊँची आवाज़ से वो सुने जाते हैं गाने वो मायूब है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम यह है कि कई नौजवान जो हैं वो गैस सूंघ के या शराब पी के या जो कोई हेरोइन वगैरह लेके फिर गाड़ियाँ चलाते हैं। अभी कोपेनहेगन में हुआ है चंद महीने पहले, दो लड़कों ने वो गैस ली हुई थी और वो इतनी तेज़ी से सेंटर कोपेनहेगन में गाड़ी चला रहे थे और उन्होंने दो बच्चों को मार दिया। तो ये चीज़ें नौजवान नस्ल में जो है थोड़ा सा उनको ख्याल करना चाहिए कि जब आप गाड़ी चलाएं ज़रूर चलाएं, अगर आपने बहुत तेज़ गाड़ी चलाएं तो जाएं उस पे मोटरवे पे चला के वहाँ पे चलाएं, शहर के अंदर ऐसी मायूब हरकतें नहीं करनी
1: चाहिए।
2: बाकी साहब आप और रजा भाई, अब तो हमारे नौजवानों के पास अपनी गाड़ियाँ हैं जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार हैं, लेकिन वो अपने वालदैन की गाड़ी मुस्तार करके बाहर ले जाते हैं,
0: ये भी जी जी
2: जी खबरदार करें कि इस तरह के हालात से इस तरह के सूरत हाल वो पैदा ना करें, कानून की सख्ती से मदद करें।
0: बिल्कुल। अच्छा नसर भाई, हमने
1: आपने कहा ना मोटरवे पे लेके जाएं, मोटरवे पे भी आपकी वो रफ्तार की एक पाबंदी है।
0: नहीं तो ले वहाँ 110 तो है ना, 110 है तो, लेकिन शहर के अंदर अगर आप 110 चलाएंगे तो
1: वो बिल्कुल देखें जी, मैं भी इस हक में हूँ कि रफ्तार जो है उसका जो है वो, अब तो शहर में 40 और भाई साहब अब तो कानून इस तरह हो गया कि अगर आप डबल स्पीड से चलाते हैं तो वो आपकी गाड़ी भी जो है वो जब्त कर दी,
0: बिल्कुल और होनी चाहिए। अच्छा निसर भाई, हमने बहुत नेगेटिव खबरों में बातचीत किया, मैं थोड़ा सा अभी शासक की तरफ भी आपको जी जी प्लीज हाँ जी
2: जी आपने नेगेटिव कहकर आप पूरी मजलिस को आज
0: नहीं नहीं
2: मजा कर दिया है।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं
2: नेगेटिविज्म में जो पॉजिटिव चीजें हैं
0: जी
2: वो बातें सामने आ रही हैं, बस यही कि सड़क पर गाड़ी चलाते हुए आप ऊंची आवाज में म्यूजिक मत सुने। और कानून के दायरे में रहने की बात कर रहे हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपके सामने जो है तोफी, कल मुझे कई दोस्तों ने बताया, एक तो आपकी शिनाख्त जो है वो बड़ी अहम है, आप सर पर पिछले 30-35 बल्कि 50 साल से एक मखसूस टोपी रखते हो।
0: अच्छा, एक हमारे सामेन में से एक शख्स हैं वो टेलीफोन पे है
1: वो टेलीफोन पे नहीं है, उन्होंने अपना एक बताया, वो कहते हैं कि सिर्फ गाड़ियां नहीं अब तो लोग साइकिल वो पे भी जो है बड़े बड़े स्पीकर रखे होते हैं और ऊंची आवाज में जो है वो इंग्लिश हर किस्म का
0: वो भी जो है
1: नहीं, वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ गाड़ियों का मसला नहीं है अब तो ये साइकिलों में भी आ गया और वो खासतौर पर वो खस्तानिया साइकिल जिसके आगे बच्चे भी आप बिठा सकते हैं उनमें बड़े बड़े वूफर जो है वो रखे होते हैं।
0: सामिन और नाजरीन, खा आप गाड़ी में हों या क्रिस्तानिया साइकिल पे हों या साइकिल पे हों या मोटरसाइकिल पे हों, ऊंची आवाज़ से म्यूज़िक बजाना किसी भी लैंग्वेज में जो है वो मुआशरे में उसको बुरा समझा जाता है।
2: मतलब भाई अब हम सफर के दौरान गाड़ी में गाड़ी के शीशे खोल कर या ओपन गाड़ी अगर है तो उसमें म्यूजिक की बात कर रहे हैं। कल शाम को यहाँ डेनिश टेलीविजन पर دو تین مرتبہ ایک اشتہار نشر کیا جا رہا تھا.
0: جی
2: اشتہار نہیں, وہ انفارمیشن جو ہوتی ہے اس میں وہ بتا رہے تھے کہ گھروں کی کھڑکیاں چونکہ گرمی کے موسم میں آپ کھلی رکھتے ہیں تو گھروں کے اندر آپ موسیقی زیادہ اونچی آواز میں نہ سنیں,
0: اور رات کے 10 بجے کے بعد تو بالکل اجازت نہیں ہے.
2: بالکل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی بیمار ہو, کوئی بوڑھا ہو,
0: ویری ٹرو,
2: جس کے لیے یہ اچھا نہ ہو. تو میں آپ کے توجہ سے یہ بھی عرض کروں گا, آپ نے یہاں پاکستان
3: آپ اور ہم وطن ایک سنگ, نئے رنگ نئی امنگ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم. 18 جولائی پاکستان میں ہفتے کی رات. آصف منیرز ڈیفیکٹو فارم 47 ملٹری راج ڈے 231. آج کی اہم ترین خبروں کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کہ آج گلا تھوڑا خراب ہے, آواز تھوڑی خراب ہوگی, اس لیے آپ نے برداشت کرنا ہے. مجھے پتا ہے کہ بہت ہی بھدی آواز ہوگی, آپ کو شاید اس سے اریٹیشن بھی ہو, لیکن برداشت کیجیے گا. اور آج کی جو اہم ترین خبریں ہیں ان میں سب سے پہلی خبر رکھتے ہیں نورین خان نیازی صاحبہ کا وہ ویڈیو کلپ جو آج ملٹری جرنلز نے پاکستان میں نہ صرف سوشل میڈیا پر وائرل کروایا بلکہ اس کو پاکستان کے ٹیلی ویژنز پر بھی سارا دن اس پر میراتھن ٹرانسمیشن کروائی گئی. اس کے اندر نورین خان نیازی صاحبہ یہ بات چیت کر رہی ہیں کہ یہ جو انڈیا پاکستان کی جھڑپ ہوئی تھی وہ لگتا یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی سیٹلمنٹ تھی. وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد کے جو عوامل ہم دیکھتے ہیں اس سب سے یہ لگتا ہے کہ یہ پہلے سے سب کچھ طے شدہ تھا, کیونکہ یہ سارا ماحول برپا کر کے پاکستان نے اسرائیل کو بھی تسلیم کرنا ہے اور کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اور جو انڈیا کے پاس ہے اس کی سیٹلمنٹ بھی جو اس وقت امریکہ چاہتا ہے اور انڈیا چاہتا ہے اس کے مطابق کرنی ہے. اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اس ویڈیو میں کہ انڈیا کا جو سائز ہے, جس طرح کی ان کی فوج ہے, اگر ان کے جہاز ہم نے گرا بھی دیے تھے تو وہ واپس کسی اور طریقے سے حملہ کر سکتے تھے. ایسا تو ممکن نہیں تھا کہ پہلے انہوں نے حملہ کیا پھر ہم نے ان کے جہاز گرائے اور اس کے بعد فوراً سے جنگ بھی بند ہو گئی اور کسی نے اس کے بعد ایک دن کے لیے بھی کچھ نہیں کیا. اب ظاہر ہے نورین خان نیازی صاحبہ کا یہ تبصرہ ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے دونوں تصویریں پیش کرنے کی کہ یہ تبصرہ کتنا اچھا ہے کتنا غلط ہے, لیکن پہلے ذرا کیا کیا گیا. یہ انٹرویو تھا نورین خان نیازی صاحبہ کا اور اس انٹرویو کو ابھی تک پبلش نہیں کیا گیا تھا. مطلب حیرانی کی بات ہے کہ ایک ایسا انٹرویو جو کبھی پبلش ہی نہیں ہوا, آن ایئر ہی نہیں ہوا, کہیں سوشل میڈیا پر روایتی میڈیا پر اس کا کلپ وائرل کروایا گیا. یہ غالباً انہوں نے کوئی 3 مہینے پہلے یا چند ہفتے پہلے انٹرویو دیا اور اس کے بعد یہ انٹرویو کبھی بھی ایئر نہیں ہوا. لیکن آج اچانک سے اس انٹرویو کے اندر یہ جو باتیں میں نے آپ کو کہیں یہ ایئر کی گئیں اور اس کے بعد ٹیلی ویژنز کے اوپر یہ ٹرانسمیشن کروائی گئی کہ نورین خان نیازی صاحبہ نے لال لکیر عبور کر لی ہے. اچھا پہلے تو ذرا اس کو ڈسکس کر لیں, یہ لال لکیر لگاتا کون ہے؟ جب ان کا دل کرتا ہے فاطمہ جناح صاحبہ کے اوپر لال لکیر لگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے عبور کر لی, وہ را کی ایجنٹ ہیں, وہ سی آئی اے کی ایجنٹ ہیں. جب دل کرتا ہے تو اب عمران خان کی بہن, پہلے عمران خان پر بھی سرخ لکیر پھیری گئی تھی ان کے نام کے اوپر. یہ کس نے ان کو مار کر دیا ہے یہ لال اور کالی لکیریں لگانے کا؟ رجسٹری کروا رکھی ہے انہوں نے پاکستان کے اپنے نام, مامے چاچے یا باپ لگتے ہیں آپ پاکستان کے, آپ کو قائد اعظم رجسٹری میں دیکھے گئے تھے پاکستان. آپ ملک کی افواج کے اندر ایک نوکری کر رہے ہیں, آپ آفیسر ہیں افواج کے اور آپ کا کام پاکستان کے دفاع کے ساتھ ہے. یہ آپ مامے چاچے پھپھے بن گئے ہیں پاکستان کے, جہاں دل کرتا ہے لکیریں کھینچ لیتے ہیں, فلانے نے لکیر عبور کر لی, فلانے نے, آپ کا دماغ کام کرتا ہے. اس کے بعد ہوتا کیا ہے, آپ کی ان لکیروں کی وجہ سے جو آپ کھینچتے رہتے ہیں, آپ تو اپنی بے وقوفی میں کاغذوں کے اوپر لکیریں کھینچتے ہیں لیکن پھر دشمن اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ پاکستان کی جو جغرافیائی حدود ہیں ان کے اندر وہ لکیریں کھینچ دیتے ہیں. آپ کے سامنے کیا ایسا نہیں ہوا مشرقی پاکستان میں؟ اس سے پہلے آپ نے شیخ مجیب کے نام پر بھی لکیر پھیری تھی اور یہ بھی بتایا تھا کہ انہوں نے بھی سرخ لکیر عبور کر لی ہے. اگلوں نے پھر ایسی لکیر لگائی کہ ہمارے 90,000 فوجی بھی پکڑے گئے, ہم نے سرنڈر بھی کیا بغیر لڑے ہوئے, سب سے بڑی ہزیمت بھی اپنے نام لی اور آج تک ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس سارے معاملے کو کیسے ڈیفینڈ کریں. ایوب خان اس کی بنیاد رکھ کے گئے, یایا خان نے اس کو پروان چڑھایا, لیکن ابھی جو سابق آرمی چیف باجوہ تھے وہ اپنے آخری دن تقریر میں کہہ رہے تھے کہ 1971 کا فیلئر سیاسی فیلئر تھا, سیاسی ناکامی تھی, ہماری جنرلز کی ناکامی نہیں تھی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سب کے باوجود آپ اپنے حصے کا فیلئر لینے کو تیار نہیں ہیں, حالانکہ سب کو پتا وہ سارا کیا کرا آپ کا تھا. اب آپ پھر وہی کام شروع کر دیا آپ نے, پہلے عمران خان کے لیے آپ نے لکیریں کھینچی, پھر ان کے نام پر لکیر کھینچی, اب ان کی بہن پر آپ نے لکیر کھینچ دی یا کہا کہ وہ لکیر عبور کر گئی ہیں. تو پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے, سید ذیشان عزیز کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو کہیں پبلش نہیں ہوا اور یہ ان کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کلپ کو بیچ میں سے صرف نکال کے سیاق و سباق سے ہٹ کر اس کو وائرل کیا گیا. چلیں یہ ہو گیا, اب آپ ان کو غدار اور باغی اور جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن کچھ سوالات کے اوپر آپ سے پوچھ لیتے ہیں کچھ چیزیں, آپ اس کا ہمیں جواب دے دیں. इंडिया ने हमारा पानी बंद किया, आपने कहा था हम इनकी सांस बंद कर देंगे, आपने अभी तक क्या किया? जब इंडिया ने हम पर मिसाइल फेंके तो राणा सनाउल्ला ने मीडिया के ऊपर खड़े होकर कहा, हालांकि हमारे कोई 100 के करीब लोग शहीद कर दिए थे उन्होंने, आप 50 के करीब बताते थे, असल में शायद 100 के करीब थे, और उन्होंने बिल्कुल प्रसीजन के साथ जहां जहां उनका दिल किया, ये को आज़ाद कश्मीर या ऐसे एरियाज के अंदर नहीं जो डिस्प्यूटेड, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के अपने निशाने लेकर हम पर हमला किया। उसके बाद आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि अगर इंडिया मजीद हमले नहीं करेगा तो हम जवाब नहीं देंगे, हम जिम्मेदार रियासत के तौर पर एक्ट करेंगे। फिर हम क्या समझे, ये मिली जुली नहीं थी बात तो और क्या थी? आगे चलते हैं। पानी बंद कर दिया, आपने आज के दिन तक क्या किया है? आपने तो अभी तक अच्छे तरीके से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उन्हें इस्लामाबाद में बैठ के ब्रीफ नहीं किया कि हमारा पानी उन्होंने बंद किया, उसके लिए हमारे लिए ये मसले हैं। हाँ, आपने हमें फे बनाने के लिए, फे खाता ताजा हवालदार, आपने मुस्लिम लीग नवाज के वजीरों को बिठा के उर्दू जुबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई ताकि अवाम को आप फे बना सकें। अब मुझे बताइए, ये बुशारत मसल्ली ने जाके पानी खोलना है पाकिस्तान का, उधर इंडिया से खेतों में पानी लगाते हैं तो एक बंदे को बेचते हैं, उसके पास जाहिर है कई होती है, कस्सी भी कहते हैं उसे, और वो जाकर उससे पानी खोल देता है। अब अगर तो कोई ऐसी जगह है बता दें कि एक बंदे ने जाना है तो हमको बंदा भेज देते हैं वहां से पानी खोल देता है। आप ये जो उर्दू में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं पाकिस्तान में, अगर पानी पर आप वाकई सीरियस हैं और इंडिया के साथ आप कोई बैक चैनल के ऊपर कार्रवाई नहीं डाल रहे तो फिर आपको अभी तक बहुत कुछ करना चाहिए था। आपको आलमी अदालतों के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे, यूएन के अंदर आपको मजबूत पेशरफ्त करनी चाहिए थी, आपको वफ्द भेजना चाहिए था इंटरनेशनली जो इंगेज करता यूरोपीय यूनियन के ममालिक के साथ, खित्ते के ममालिक के साथ, और अमेरिका के साथ, कनाडा के साथ, चाइना के साथ, रूस के साथ। आपने क्या किया अभी तक सवाए उर्दू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमें बेवकूफ बनाने के? आपने और कुछ नहीं किया, तो पहली बात तो ये। अब आगे चलते हैं। वो कहते हैं कि हम यहां से टनल बनाएंगे और पानी एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएंगे, कहते नहीं, उन्होंने कर भी दिया है, इंप्लीमेंट कर दिया अपना प्लान, चंद सालों में वो सारा पानी उठा के ले जाएंगे। आप हमें बताते थे हमारे पास बटन है, दो बटन दबाएंगे तो वो सारे डैम तबाह हो जाएंगे। वो क्या बटनों के अंदर से सेल खत्म हो गए हैं, कोई तार शार उतर गई है, जंग लग गया है, क्या हुआ है? या मेरा मतलब जिन उंगलियों ने बटन दबाने वो तबला बजा रही हैं या बांसुरी बजा रही हैं, या मतलब क्या मकसद क्या है? या वो लोगों के नाजुक अज़ा के साथ ईंटें बांधने के चक्कर में वो हाथ मसरूफ हैं जिन्होंने बटन दबाने थे? तो काम तो सारे का सारा ऐसा ही लग रहा है। फिर जंग होती है, मैंने जैसे आपको कहा कि इंडिया प्रसीजन के साथ हमले करता है, हमारे लोगों को शहीद करता है, हमारा रिस्पॉन्स ये आता है कि हम जवाब नहीं देंगे, हम कहते हैं कि हम बस ठीक है, इस बात को हम यही खत्म कर देंगे। ओके, उसके बाद क्या होता है आगे? उसके बाद अगला काम यह होता है कि आप किसी भी वजह से, जो भी हमारी जाहिर है हमारी एयरफोर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम उनके जहाज गिरा लेते हैं। अब अगर रवायती जंग हो तो जाहिर है कि इंडिया भी वापस उसका जवाब देता जहाजों का, आपने जहाज गिरा लिए, वो नेवी का कोई हमारा शिप तबाह कर देते, कुछ और करते, उन्होंने किया नहीं। अच्छा, इसका जवाब यह कि जी ट्रंप साहब ने यह जंग बंद करवा दी। ट्रंप साहब की ईरान कितनी मान रहा है, ट्रंप साहब की और बहुत सारे मुल्क कितनी मान रहे हैं, तो क्या इंडिया ने अपनी सालमियत पर सौदा कर लिया ट्रंप साहब की बात मान के, या इंडिया ने अपने जो इंटरेस्ट हैं खत्ते के अंदर उनका सौदा कर दिया? जाहिर है नहीं। तो इसलिए ये जो सवालात किए नौरीन खान ने, आजी साहबा ने, ये अपने अंदर बहुत सारा वजन रखते हैं कि जो सब कुछ हुआ है जिसके बदले में आपने दो तीन काम किए, वो आगे चल के बता देते। एक तो आपने अपने आप को जाहिर है फील्ड मार्शल बनवा लिया, 5 सितारे लगा लिए, एटम बम भी आपने अपने नीचे ले लिया, फट ना जाए कहीं, आप ऊपर बैठ गए। बहरहाल एटम बम का डिपार्टमेंट भी आपने अपने नीचे ले लिया, एयरफोर्स भी, नेवी भी, मीन आप शहनशाह बन के बैठ गए। अर्दली तो पहले ही आपका था, आप फील्ड मार्शल भी बन गए, 5-स्टार जनरल भी बन गए, ये फायदे तो आपने ले लिए। उसके साथ साथ क्या हुआ वो भी आपको बता देते हैं। कश्मीर के अपना जो फलस्तीन और इसराइल का मामला है उसमें वाजे तौर पर पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक जो इसराइल के करीब तरीन या करीबी दोस्त समझे जाते हैं उन मुल्कों में भी आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। पाकिस्तान में आप इसराइल के खिलाफ एहतजाज नहीं कर सकते। आपने देखा जिस जिसने किया उसको किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, सेनेटर मुश्ताक, उनकी अहलिया, उनके साथियों को मुतद्दद बार पाकिस्तान में इसलिए गिरफ्तार किया गया कि वो गजा के हक में और इसराइल के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। किसी ने फलस्तीन का झंडा उठाया तो वो आपने छीन लिया। सरीना होटल के सामने लोग मुजाहरा करना चाहते थे, आपने किस तरीके से उन पर लाठी चार्ज किया। सो इस सबसे लगता क्या है? इस सबसे लगता यह है कि आप बुनियादी तौर पर कमिटेड हैं कि आपने अब पाकिस्तान में फलस्तीन का किसी को नाम नहीं लेने देना। तो फिर नौरीन खान नियाजी साहब ने जो सवाल उठाया वो होता हुआ तो हमने देख लिया, उनकी क्या सराई आपने हकीकत में बदली हुई है? आपकी जो एंगेजमेंट है इसराइल के साथ स्टीव विटकॉफ साहब या दूसरों के थ्रू, वो होती हुई नजर आ रही है सामने, उसके अगराजो मकासद होते हुए नजर आ रहे हैं। जो पीस फोर्स के अंदर फौज थी, इसराइल ने कहा कि हमें तुर्की की फौज कबूल नहीं है, पाकिस्तान की कबूल है, वो उन्होंने क्यों कह दिया? जाहिर है जो नौरीन खान नियाजी साहबा कहती हैं कि ये जो झड़प थी इसके पीछे असल में इसराइली एजेंडा था और ये सारा मिली भगत से हुआ, तो वो होता हुआ तो हमें नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक अमूमी सा ट्वीट कर दिया गजा के हक में, फलस्तीन के हक में, ये कोई बड़ा उन्होंने खतरनाक काम तो नहीं कर दिया, लेकिन पहले भी करते हैं लोग, पूरी दुनिया के लोग ट्वीट करते हैं। आपने उनसे ट्वीट एक दफा नहीं, एक से ज्यादा बार उनसे इसराइल के हक में करवाए हुए ट्वीट आपने डिलीट करवाए। तो फिर नौरीन खान नियाजी साहब ने क्या मुख्तलिफ कहा? यही बात उन्होंने कही है। उसके बाद आप इब्राहिम अकॉर्ड को मानने के लिए, उसको अच्छा पेश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर मीडिया कैंपेन आपने चलवाई, कतर के खिलाफ, अल जजीरा के खिलाफ, जो बड़ी अच्छी कवरेज कर रहा था इसराइल के मामले की, गजा के मामले की, उसके खिलाफ आपने पाकिस्तान से टिकर चलवाए और उनको निशाना बनाया। तो ये फिर आप सब कुछ क्या कर रहे थे? नजर तो वही आ रहा। आगे चलते हैं। जो इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई उसके अंदर नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी एक लफ्ज नहीं बोले। अब उसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक वजह यह हो सकती है कि वो खौफजदा हों। अब नून लीग वाले कहेंगे हमारी लीडरशिप खौफजदा नहीं है, तो फिर अगर खौफजदा नहीं है, खौफ की वजह से नहीं उन्होंने दी, तो फिर जाहिर है फिर मुआहदा है कोई, फिर एग्रीमेंट है, फिर कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हमने बयान नहीं देना, आप अपना काम जारी रखें। उसके आगे जो मोदी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग नवाज शरीफ की रही, आम एक दूसरे से एक्सचेंज करने, साड़ियां बगैर वीजे के बुलाना, जिंदाल को मिलना, वो नौरीन नियाजी साहबा करती रही हैं सब कुछ। जो ख्वाजा आसिफ पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि आज तक कोई जंग आपने नहीं जीती, वो नौरीन खान नियाजी साहबा ने कहा। तो कोई समझ नहीं आती, चौधरी साहब कुछ भी करते हैं ये भूल जाते हैं कि नवाज शरीफ ने अजमल कादरी कहता है कि मुझे इसराइल भेजा था। बहुत सारे और मामलात हैं ऐसे जो आपके सामने रख सकते हैं, जिससे वाजे हो जाता है कि जिन खदशात का इजहार नौरीन खान नियाजी साहबा ने किया, वो खदशात हमारी आंखों के सामने होते हुए हमें नजर आए। लेकिन दोबारा से, क्योंकि इन्हें डायवर्जन चाहिए होती है, उस बयान को पाकिस्तान में वायरल करवाया गया और उनको अब एक मुल्क दुश्मन अनासर या अनसर के तौर पर पेश किया गया। आगे
1: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन

0: हजारों दिलों की धड़कन, आप सुन रहे हैं रेडियो हम वतन।
1: मोहतरम सामेन और नाजरीन, बाशुक्राशी आपको इस इतवार के दिन सलाम और आदाब अर्ज करते हैं। आज का हमारा प्रोग्राम बाशी के संग में एक ख़ास मेहमान को हमने बुलाया है, जिनसे हम डेनमार्क में पाकिस्तानी कम्युनिटीज के मसाइल और उनका क्या हल है उसके बारे में बातचीत करेंगे। जैसे आपको पता है, 70 की दिहाई में पाकिस्तान से और दूसरे ममालिक से बहुत से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आए, ताकि वो अपनी और अपनी फैमिली की ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। लेकिन फिर अक्सरियत ने ये फैसला किया कि वो अब यहीं पे रहना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी बुला लिया, अपनी वाइफ्स को, अपने बच्चों को, और इस तरह इस मुल्क में अपनी ज़िंदगी शुरू की। आज डेनमार्क में पाकिस्तानी निसाल तकरीबन 30,000 लोग रहते हैं, जिसमें डेनिश सिटीज़न भी हैं और जिनके पास अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट भी है या जिनके पास दोनों ममालिक की शरीयत है। उन्होंने इस माशरे में बड़ी अच्छी तरक्की की है, तालीम, कारोबार, नौकरी और सियासत में भी अपना हाथ बिठाया है, और बहुत कोशिश की है उन्होंने कि वो इस माशरे में किसी न किसी तरीके से इस माशरे का एक हिस्सा बन जाए। कुछ को मुश्किलात आईं, लेकिन बहुत से लोगों को ये बहुत अच्छे मौके मिले। लेकिन एक ऐसा शोबा है जिसमें कोई काबिल ज़िक्र पेशरफ्त नहीं हुई, और वो है, इंग्लिश में कहते हैं, जेंडर इक्वालिटी, या मर्दों और औरतों के दरमियान

0: برابری. ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے اسٹوڈیو میں ایک بہت فعال خاتون موجود ہیں جنہوں نے پاکستانیوں کے درمیان مختلف مسائل پر بات چیت کرنے کے لیے ہاں کی اور آج وہ یہاں پہ موجود ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ہماری گفتگو ناگوار لگے, لیکن معاشرے کے مسائل, اپنی کمیونٹی کے مسائل پہ بات کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو روبینہ طاہر باشی کے کارنر میں آپ کا بہت بہت استقبال, خوش آمدید.
1: شکریہ باشی صاحب, اور میں سب سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم. ایک بات میں کہنا چاہوں گی, جو ہمارے درمیان جو بھی بات چیت ہوگی اس میں میں اپنا ورین دوں گی اپنی طرف سے, اور اس میرا مطلب بالکل نہیں ہوگا کہ میں کسی کو ہرٹ کروں اسلامی طور پہ یا مینٹلی طور پہ, یا کیونکہ جو میں نے سمجھا ہے, جو میرے ایکسپیرئنسز ہیں میں وہ بیان کروں گی. کوئی اس سے متفق ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے تو میں اس کو اپنے آپ پہ لاگو کر سکتا ہوں یا میں اس راستے پہ جا سکتا ہوں, تو سو بسم اللہ چلے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں تو اگنور کریں.
0: یہ اچھا ہوا کہ آپ نے شروع میں جو ہے اس چیز کو کلیئر کر دیا. لیکن اس سے پہلے کہ ہم مسائل پہ بات کریں, سیاست پہ بات کریں, اپنی کمیونٹی کے بات کریں, تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے سامعین اور ناظرین کو تھوڑا سا تعارف تو کرا دیں کہ ان کے سامنے جو شخص بیٹھا وہ ہے کون.
1: جی, میں شادی کے بعد 2003 میں یہاں آئی تھی. میری ایجوکیشن ایم بی اے فائنانس ہے, اور میں نے پاکستان میں باٹا میں کام کیا تھا. تو اس کے بعد جب میں شادی کے بعد ادھر آئی تو پہلے شروع میں تو میں نے کام نہیں کیا, کیونکہ ایجوکیشن یہاں کی جو لینگویج ہے اس کے لیے ایک دو سال لگ گئے. پھر بیٹا ہوا, پھر اس کے بعد میں نے جاب کی کوشش کی, تو لیکن اتنا میں کوشش نہیں تھی کری کیونکہ میں نے اپنے ہسبینڈ کا بزنس, ان کا ٹیکسی کا, تو وہ سنبھالنا شروع کر دیا. پھر میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی, دو ماشاء اللہ میرے بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی. تو جب وہ تھوڑے سے بڑے ہوئے تو پھر میں نے کہا نہیں, اب مجھے بھی جاب کرنی چاہیے, کیونکہ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنا کما رہے ہیں کہ وہ ہمیں بھی افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں کے ایکسپینڈیچر اتنے زیادہ ہیں, جب تک یا تو آپ کی اتنی اچھی سیلری ہو کہ آپ بیٹھ کے کھا سکتے ہو صرف ایک کے, تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں, یہاں پہ تقریباً میاں بیوی کو اکٹھا کام کرنا پڑتا ہے اگر آپ نے اپنے بچوں کو وہ لائف دینی ہے جو یہاں کے لوگوں کی لائف ہے.
0: تو اس کا مسئلہ کہ آپ یہاں پیدا نہیں ہوئی, شادی کے ذریعے آئیں,
1: بالکل,
0: اور پھر آپ کی تعلیم بھی پاکستان میں ہوئی. تو یہ بتائیے کہ پاکستان کی ایک اتنی اچھی یونیورسٹی کی تعلیم, اس کو یہاں پہ آپ استعمال کر سکی ہیں؟
1: جی بالکل, میں نے شروع میں کی ہے کیونکہ فائنانس کی تھی, تو فائنانس تو بینک وغیرہ جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی میری پرابلم یہ ہے کہ میں کسی کے انڈر کام نہیں کر سکتی.
0: تو پاکستان میں تو کیا آپ نے باٹا میں کام؟
1: میری اپنے باس سے لڑائی رہتی تھی, وہ جب مجھے کوئی غلط کام کرتے تھے میری ان کے ساتھ لڑائی ہو جاتی تھی, آپ مجھے یہ کہتے کیوں ہیں, آپ نے یہ غلط بات کی کیوں. تو پھر میں نے یہ سوچا کہ چلیں, مجھے ڈرائیونگ کا بہت شوق ہے, مجھے ریئلی آئی لو ڈرائیو.
0: ریئلی ٹیکسی ڈرائیونگ کا یا ویسے اپنی گاڑی؟
1: نہیں نہیں, جہاں بھی,
0: جہاں. اچھا,
1: تو پھر میں نے ویسے ہی ایک دن ہمارے نیبرس تھے ان کے پاس, تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا, میں نے کہا یہ ایک ہے, یہ کیا ہے, فلیکس ٹریفک کے نام سے یہاں پہ ایک انہوں نے فرم کھولی ہوئی ہے جو اسپیشل لوگوں کو یا بچوں کو یا بوڑھوں کو ایک اسپیشل سروسز پرووائڈ کرتی ہے, ون ڈیسٹینیشن ٹو لاسٹ ڈیسٹینیشن, یعنی ان کو ٹیکسی وغیرہ کے لیے باہر نہیں جانا پڑتا, کوئی ویل چیئر پہ ہوتے ہیں, کوئی واکر پہ ہوتے ہیں, بڑی کمفرٹیبل ہے. تو میں نے اس کے
0: جیسے ایمبولینس ہے, اس کا
1: کیسے؟ نو نو, ایمبولینس تو بالکل ڈفرینٹ ہے نا, وہ تو آپ کو کریٹیکل سچویشن میں لے کے جاتے ہیں. نہیں, یہ نارمل کوئی بوڑھا ہے, اس نے اگر آپ ماشاء اللہ سیکھے, اگر آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں.
0: میں تو اپنی ٹانگیں استعمال کرتا ہوں.
1: نہیں,
0: کچھ لوگ ہیں جن کو ہم,
1: وہ جو نارمل لوگ بھی, انہوں نے فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے, کوئی گاڑی پہ نہیں جا سکتا, فوزن کو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے کسی,
0: ایگزیکٹلی,
1: اس کے پاس اپنی گاڑی ہے لیکن وہاں پارکنگ کا بڑا مسئلہ ہے.
0: جی جی جی,
1: تو وہ پھر یہ بک کرتے ہیں, ان کا کوئی ابنمنٹ ہوتا ہے سال کا, تو وہ پھر سال کے کچھ خریدتے ہیں کہ میں اتنی مرتبہ, پھر وہ اپنے گھر سے لے کے وہاں تک جاتے ہیں اور وہاں سے پھر ان کو واپس آتے ہیں.
0: اچھا, فالک نے بھی یہ شروع کیا, کیونکہ جب آپ
1: فالک نے بھی یہ کیا
0: انہوں نے کیا کہ آپ ان کو کچھ تھوڑی سی رقم دیں تو وہ پھر آپ کو ہاسپٹل وغیرہ چھوڑ کے آ سکتے ہیں, لے کے آ سکتے ہیں.
1: جی, یہ ڈفرینٹ ہے.
0: جی, اچھا یہ بتائیے کہ आपने 2010 में अपनी कंपनी शुरू की ना
1: जी,
0: तो ये किस किस्म का कारोबार है? क्योंकि एक खातून का, पाकिस्तानी खातून की अपनी कंपनी बनाना, और इस ये किस किस्म की कंपनी?
1: ये ट्रांसपोर्ट है।
0: अच्छा।
1: जी आर ट्रांसपोर्ट उसका मैंने नाम रखा था, क्योंकि ये फ्लेक्स ट्रैफिक मैंने ट्रांसपोर्ट है। फ्लेक्स ट्रैफिक वैसे एक फर्म है यहाँ पे रजिस्टर्ड जो मूविया के अंडर आती
0: जी,
1: है
0: जी जी जी हाँ।
1: लेकिन उनकी अपनी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, अपनी उनकी कोई गाड़ी नहीं है, अपनी उनका कुछ नहीं है। हम गाड़ियाँ खरीदते हैं तो हम फिर उनको एक अपनी ऑफर भेजते हैं, ओके मेरी ये टाइम पर आर मेरी ये प्राइस है, फिर उसके हिसाब से वो हर।
0: तो आप भी वही काम करते हैं जो फ्लेक्स वाले करते हैं या
1: जी? फ्लेक्स वही है हाँ जी। मेरा मैंने फिर अपना बिजनेस लिया, क्योंकि इसके लिए आपको बकायदा कोर्सेज करना पड़ता है। मैंने टैक्सी का लाइसेंस लिया पहले, आप नॉर्मल लाइसेंस से नहीं चला सकते।
0: तो आपके मियाँ का भी तो टैक्सी का बिजनेस?
1: जी वो टैक्सी का है,
0: वो अलग है,
1: वो बिल्कुल अलग है।
0: वाओ।
1: तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था नहीं आपने इंडिपेंडेंट होना है। मैं वैसे भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में भी इंडिपेंडेंट रही थी, अपने पेरेंट्स वगैरह के साथ जो भी था, अपने भाइयों को भी सपोर्ट की इंडिपेंडेंट होने में।
0: तो ये आपके जो मियाँ हैं उन्होंने कहा तो अपना बिजनेस खुद शुरू करो,
1: उन्होंने कहा आप इंडिपेंडेंट हो।
0: वंडरफुल।
1: और इसके लिए आसान नहीं था, इसके लिए पहले मुझे वॉनमैन का कोर्सेस करना पड़ा।
0: जी जी हाँ।
1: वो मैंने अपनी पे किया यानी 25,000। उसके बाद टैक्सी का लाइसेंस, उसके बाद वो कोर्सेज होते हैं जो आपके एक्यूट, जो हम लोगों ने यानी अगर कोई कंडीशन ख़राब हो जाए किसी की हेल्थ की या जो भी है, जिसे वो रेड क्रॉस के कोर्सेज कहते हैं, वो किए हैं। और हमारे हर तीन चार साल के बाद वो कोर्सेज रिपीट होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: फिर उसके बाद मुझे बस का शौक था,
0: बस चलाने का।
1: फिर मैंने उसका लाइसेंस लिया, मैंने कहा मैंने नहीं छोड़ना।
0: बस भी चलाई आपने?
1: चलाई नहीं है लेकिन मुझे शौक, लाइसेंस मैंने ले लिया।
0: टैक्सी भी नहीं चलाई?
1: टैक्सी कभी नहीं चलाई
0: लेकिन लाइसेंस है। लाइसेंस
1: उसके बगैर मैं ये जॉब
0: तो आपको लाइसेंस इकट्ठे करने का शौक है?
1: मैंने बल्कि यहाँ पे वो जो लेट बेन है मैंने उसके लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने वो बंद कर दिए थे। मुझे वो भी चलाने का शौक है।
0: ये शौक कहाँ से आया?
1: मुझे बस मुझे फिरने का, घूमने फिरने का।
0: नहीं वो तो अलग, वो तो बात है ही है, लेकिन ये खासतौर पर ये जो ट्रांसपोर्ट है तो ये बड़ा इसमें तो स्ट्रेस होती है बहुत लोगों।
1: नहीं नहीं मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं।
0: नहीं आप नहीं होती लेकिन होती है लोगों को काफ़ी,
1: हर एक की नेचर होती है। मुझे खुद अपने, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा अपना बिजनेस है, मैं जिस वक्त चाहूँ बंद कर दूँ, जिस वक्त चाहूँ निकल जाऊँ। टैक्सी से इस तरह डिफरेंट
0: है। आपके मियाँ नहीं कहते हेलो ये पैसा इधर लाओ?
1: नहीं अपने मियाँ का सारा पैसा मैं कंट्रोल करती हूँ, वो सिर्फ उनके।
0: आपने फाइनेंस में भी किया हुआ है?
1: उनके जेब में तो सिर्फ 1,000 करोड़ होता है बस, इससे ज़्यादा नहीं।
0: पूर अच्छा तो क्या ये मुश्किल था ये कंपनी शुरू करना?
1: नहीं बिल्कुल भी नहीं था, सिर्फ मैंने अप्लाई किया और साथ उसके साथ जो पेपर्स वगैरह लगते हैं वो फौरन 1-2-3 दिन में मेरी कंपनी खुल गई। और फिर मैंने पहले ये अपने हस्बैंड के नाम से ली थी ये वाली फ्लेक्स ट्रैफिक, फिर मेरी जब खुद, क्योंकि जब तक मैं वॉन मैन कोर्स ना कर लेती मैं उसको नहीं चला सकती थी, अपने नाम मेरे नहीं थी हो सकती।
0: अच्छा, अच्छा,
1: तो वो जब हो गई तो वो फिर मैंने अपने नाम ट्रांसफ़र करी। अब मैं अपने, उससे पहले मैंने बिजनेस शुरू किया था यहाँ पर,
0: कोई और बिजनेस था
1: जी, मैंने पाकिस्तान से बेड शीट और शूज और खुसा ये वगैरह काफ़ी मंगवाया ऑनलाइन, लेकिन वो इतना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, मैंने बहुत ज़्यादा पैसा उस पर किया, तो फिर मैंने सारा उठा के वो चैरिटी में दे दिया, वो जो पीटर साहब है ना जो डेली शूज लिमिटेड उनको। फिर उसके बाद मैंने एक रेस्टोरेंट खोला एल्बर्ट सलून में, 2-3 महीने मैंने उधर लगाए, लेकिन वो इतनी हार्ड जॉब है रेस्टोरेंट, क्लीनिंग से लेके स्टार्ट टू एंड बहुत लंबी जॉब थी। मैं बच्चों भी मेरे डिस्टर्ब हुए, मैंने 2.5 लाख राउंड तकरीबन उसमें भी यूज किया।
0: अच्छा सॉरी
1: तो उस वक्त मेरे पास ये बिजनेस था फ्लेक्स ट्रैफिक का, मैं इंडिपेंडेंट थी लेकिन मैंने इसको शोफेयर रखा हुआ था आगे, ड्राइवर वो चलाते थे।
0: अभी है आपका ये बिजनेस?
1: जी अल्लाह का शुक्र है मैं अब अकेली कर रही हूँ, मैंने कोई ड्राइवर नहीं रखा क्योंकि उन्होंने मेरी गाड़ियों को मार दिया था, एक्सीडेंट किया था और 2 मरतबा किया है। और वो फिर
0: तो आप खुद जाती हैं
1: काम? जी अल्लाह का शुक्र है मैं खुद जाती हूँ, मैं इतना फिरती हूँ, इतना एंजॉय करती हूँ, इतनी इतनी जगहों पे जाती हूँ जो मैंने कभी नहीं देखी डेनमार्क में, लेकिन इधर पे जाके देखती हूँ मैं।
0: चलिए अब हम आते हैं एक दूसरे मौजू की तरफ
1: जी।
0: मैंने आपको देखा कई सियासी और समाजी तकरीबात में
1: जी,
0: और आप अपनी राय भी देती हैं और बहुत ईमानदार हैं अपनी राय देने में। तो ये जो आपके पास ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो है, ये फितरी तौर पे आई है या सीखा आपने कहीं से?
1: मैंने अभी आपको बताया था मेरी अपने बॉस से नहीं बनती।
0: नहीं वो तो अलग बात है ना।
1: नहीं वो फितरत में था तो नहीं बनती ना।
0: अच्छा,
1: अगर मैं उनकी जो बात गलत एक्सेप्ट कर लूँ तो फिर तो मैंने एक्सेप्ट कर ली। लेकिन नहीं है मेरी नेचर में कि मैं किसी की गलत बात बर्दाश्त करूँ।
0: तो ये फैमिली ने सिखाया आपको, पेरेंट्स की तरफ से?
1: नहीं ये
0: मतलब ऐसा होता है ना कि फैमिली में अगर आप कोई सियासतदान हो या कोई ऐसे लोग हो तो फिर आप
1: बच्चे से। फैमिली में कोई ऐसे नहीं गुजरा, लेकिन ये बचपन से मेरी अपनी रहा है कि मैं हमेशा से दूसरों पे, आप ये कह सकते हो कि मैं ओवरकम रही हूँ दूसरों को, मैंने दूसरों से काम करवाया है कि आप ये कर दो, यानी लीड किया मैंने।
0: जी, जी, जी, जी,
1: तो मेरा सियासत में जब तक मेरे बच्चे छोटे थे मैंने बिल्कुल अपने घर को टाइम दिया, बच्चों को टाइम दिया। माशाल्लाह एक 22 साल का, एक 20 साल की है तो वो इंडिपेंडेंट है।
0: अच्छा,
1: तो फिर मैंने जब
0: अपनी तालीम ख़त्म कर ली है।
1: जी बेटे ने कर ली है, तो बेटी की अभी ज़ाहिर है 20 अभी शुरू हो
0: गई।
1: तो उसके बाद मैंने जब यहाँ पे, पहले मैंने कश्मीर कमेटी ज्वाइन की, आपको पता है यहाँ पे कश्मीर कमेटी
0: है। जी जी हाँ।
1: तो मुझे लोगों ने कहा कि आप बाजी जा रही हैं तो आपने करना कुछ नहीं। मैंने कहा मैं जाके सिर्फ देखना चाहती हूँ कैसे ये काम करते हैं, क्योंकि हमारी कमेटियाँ तो यहाँ बनी हुई हैं।
0: जी जी,
1: बहुत सारी बनी हुई हैं, तो लेकिन हम अपने गोल अचीव क्यों नहीं कर पा रहे?
0: अच्छा सवाल है
1: ये मुझे, जिसे वो कहते हैं ना कि मुझे एक क्यूरियस थी कि हम इतना कुछ करने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन भी करते हैं, हर कुछ करते हैं, तो हम अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तो जब मैंने वो ज्वाइन की, बड़ी माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानी कभी किसी चीज़ से मुखलिस नहीं रहे। डेनमार्क में आके मैंने लोगों को देखे, दूसरे मुल्कों के लोग भी हैं, लेकिन मैंने जितना पाकिस्तानियों को मुनाफ़त भरा पाया है ना, शायद ही कोई होंगे, सारे नहीं होंगे। मैं सारे के बारे में नहीं बात कर रही
0: हूं, हम उस पर बात करते हैं। लेकिन मैं जो एक और टॉपिक जिस पर मैं आपकी कीमती राय लूँगा वो ये है कि हमारी कम्यूनिटी में जेंडर इक्वालिटी के बारे में ना, मैंने आपसे बात की थी पहले भी ना, मैंने देखा है कि बहुत से मुलाकातें इवेंट्स होते हैं। अभी जो एक मुशायर आए हुए थे वहाँ पे, तो ऐसी मीटिंग्स में मिडिल एज लोग या उधेर उम्र के लोग आदमी आते हैं ज़्यादा, ख़वातीन और नौजवान दो ये जो ऐसे हैं तबका वो नहीं आता बिल्कुल। उसके बारे में बताइए, उसकी क्या वजह है?
1: देखिए जो नौजवान तबका है ना वो यहाँ की पैदाइश है।
0: जी
1: ठीक है, एक तो पहले उर्दू का मसला,
0: लैंग्वेज नहीं समझ आती,
1: लैंग्वेज उनको इतनी नहीं आती। मैं नहीं कहूँगी
0: तो उनको सिखाया क्यों नहीं उनके पेरेंट्स?
1: बेशक हमने सिखाया है।
0: अच्छा,
1: लेकिन आजकल के बच्चों का जो इंटरेस्ट है ना सोशल मीडिया के हिसाब से इतना डिफरेंट है कि आप उनको इस तरफ लाना भी चाहो तो नहीं ला सकते। सेकंड जो बात है वो जब सोशल मीडिया देखते हैं आप किसी बच्चे से कोई, जब मेरे बच्चे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान जाते हैं, जब वो पाकिस्तान के हालात देखते हैं वहाँ से क्या लेके आ रहे हैं, वो मैं उनको क्या ला के दे रही हूँ, मैं उनको लेके जाती हूँ
0: मायूसी। जी जी
1: ठीक है, यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, अब मैं सिंपल एक बताती हूँ, फलस्तीन का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, हमारे यंग गए, यंगस्टर गए ना,
0: जी जी।
1: पाकिस्तान के जो डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, यहाँ कभी पाकिस्तान का डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ।
0: जब आप ये कहते हैं पाकिस्तान का डेमोन्स्ट्रेशन, क्या मतलब है?
1: पाकिस्तानियों ने डेमोन्स्ट्रेशन नहीं की,
0: किस लिए करें वो डेमोन्स्ट्रेशन?
1: यहाँ पर करते हैं, ये कश्मीर कमेटी है इसने डेमोन्स्ट्रेशन की, ये तहरीके इंसाफ है ये डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, ये उनका ना तहरीके इंसाफ से कोई ताल्लुक है, क्या देगी तहरीके इंसाफ उनको? कुछ भी नहीं उनका। जब किसी ने पाकिस्तान नहीं जाना, हमारे बच्चों ने, हम नहीं जा रहे, तो उनका तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट क्यों है? क्योंकि हम वहाँ के बॉर्न है, हमारी अभी अफिलिएशन पाकिस्तान के साथ है।
0: वो सवाल है मेरे पास, लेकिन मैं अगर उस जेंडर इक्वालिटी पे बात ख़त्म कर लें तो मैं
1: सॉरी, आप वो आगे थी कि औरतें क्यों नहीं आती?
0: नहीं औरतें, हाँ जी चलिए, औरतों के हाँ,
1: जेंडर का यही था ना कि वो और हमारी ज़्यादा कम्यूनिटी जो आई हुई है वो कहाँ से आई हुई है, ये थोड़े से जिसे कहते हैं बैकग्राउंड इलाके जो उनसे हैं
0: गांव से,
1: जो लेट जो अब
0: जी, जी, जी,
1: एक वहाँ का माहौल कि वहाँ पे इतने मिक्स नहीं थे होते। आपको पता है पाकिस्तान में तो हमेशा से पहले
0: तो बड़े अरसे से रोग रहे
1: यहाँ जब आप आते हो ना, अच्छा वो लोग इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो वो जब इस तरह की महफिलों में वो एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो महफिलें ये आप जो करते हो, जितने भी इस तरह की महफिलें अरेंज होती हैं जिसमें मुशायरा हो गया या ये जो
0: सियासी मीटिंग भी होती हैं,
1: सियासी मीटिंग्स भी होती हैं, उनको सियासत का शौक नहीं, उनको सियासत का शौर नहीं है, इस तरह वो कभी गए ही नहीं। ये सियासत एक पढ़े लिखे का काम है जिसको समझ हो। एक सिंपल बात बताती हूँ, हमारे जो पुराने लोग आए हुए हैं जो अभी तक सियासत में हैं, सियासत में नहीं है लेकिन सियासत पार्टियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका क्या शौर है, उनमें क्या शौर है? अगर वो अभी तक बैठ के पाकिस्तान के जो हालात हुए हैं अगर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका क्या शौर है? कुछ भी शौर नहीं। अगर मर्दों में नहीं है, जो इतने लोग जाते हैं पार्टियों में या फंक्शन में सुनते हैं जाके उसके मुतालिक, उसे सोशल मीडिया पे मर्दों ने देखा हुआ ना, हमारी वो औरतें सोशल मीडिया पे नहीं हैं, उनकी अपनी एक कम्युनिटी वो उसमें उछ रहती हैं।
0: लेकिन अगर सोशल मीडिया पे ना भी हों लेकिन जब वो किसी इवेंट्स में जाती है, मसलन मैं जिक्र करता हूँ उस मशारे का जिसमें एक पाकिस्तान से शायर हुए थे, लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा है कि वहाँ पे काफ़ी खातून आई हुई थी।
1: जी बिल्कुल,
0: ठीक है। और पहली दफ़ा मैंने देखा है कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठी थी, अलग नहीं बैठी हुई थी उनको। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि जब ख़वातीन आती भी हैं, अगर चंद आती तो उनको एक कोने में बिठा दिया जाता है। नहीं नहीं, देखिए मैं बहुत सी मीटिंग में जाता हूँ रोहिना, अक्सर ये देखा है कि ख़वातीन को एक साइड पर बिठा देते हैं या वो खुद ही पीछे बैठ जाती हैं। कितने इसकी वजह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप खातून हैं, आप बड़ी एक्टिव हैं, डेनिश माशरे में जब मीटिंग्स होती हैं किस किस्म की, तो लोग इकट्ठे बैठते हैं, बातें होती हैं, बड़ी मुफीद बातें होती हैं, एक दूसरे से लोग सीखते हैं, तो हमारे जो हमारी ख्वातीन वो अलग क्यों बैठती हैं, उसकी आप मुझे वजह बताएं।
1: पहले मुझे ये बताएं कि ये जितने फंक्शन या मीटिंग होती हैं अरेंज कौन करता है, मर्द के औरत मोस्टली?
0: नहीं, मर्द करते हैं।
1: वो जब औरतें आती हैं तो वो उनको कहते हैं जी आप इधर बैठ जाएं, तो बिठाने वाले तो वो हैं।
0: नहीं तो इनकार कर दें कि जी मैं उधर नहीं बैठती, मैं
1: जो बैठना चाहती हैं वो बैठती हैं, ये एक रीज़न है। दूसरी रीज़न ये है कि औरतों की अपनी डिस्कशंस होती हैं जो वो मर्दों में बैठ के नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल कोई अपने हस्बैंड के साथ आई, वो अपने हस्बैंड के साथ बैठती है, नो प्रॉब्लम, वो बैठती है। जो नहीं आई वो अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल, हमारा एक बैकग्राउंड भी देखे ना हमारा क्या है, और मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ के लोग इस चीज को नहीं समझते, मैं खुद जब मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती हूँ मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठती हूँ, बल्कि इवन शादियों में मैं उनको कहती हूँ आप जाओ उधर दोस्तों में, मैं अपनी बैठ, क्योंकि मैंने जो गप्पे लगानी है वो मैंने अपने हस्बैंड के दोस्तों के साथ
0: नहीं लगानी। गप्पे लगाने की थोड़ी जाती हैं आप, तो एक खास, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी जुमेरात को हमने एक यहाँ पे नेल्सन मंडेला डे मनाया है कोपेनहेगन में, और हमने काफ़ी मुख्तलिफ नेशनैलिटी के लोगों को इन्वाइट किया, मर्द और ख़वातीन, उसमें कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज़ को भी इन्वाइट किया, और वहाँ पे हमने हर टेबल पे नाम लिखा और मिक्स किया, जहाँ पे डेनिश भी, गैर मुल्की भी, अफ्रीकन पाकिस्तानी सब बैठे होते, वहाँ किसी ने नहीं कहा कि जी हम गप्पे मारने के लिए उधर बैठेंगे?
1: नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आपकी सिर्फ अपनी कम्युनिटी नहीं थी, वो एक आपके बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग थे,
0: तो वहाँ भी तो बैठ के उनके उन्होंने बातें की।
1: मैं आपको कह रही हूँ ना कि हमें प्रॉब्लम नहीं है,
0: अच्छा,
1: कि ये सिर्फ औरतों पे नहीं है कि वो अलहदा बैठना चाहती हैं, बस ये होता है कि आपका वो जो फंक्शन है वो क्या है, उसके हिसाब से अगर वो समझती हैं कि नहीं इसमें हम, डिपेंड करता है ना कि आपकी सीटें भी कैसे लगी हुई हैं, अगर तो आपकी रो वाइज लगी हुई हैं तो वो फिर औरतें कहती हैं कंफर्टेबल है कि हम अपने साथ
0: नेक्स्ट टाइम कोई,
1: लेकिन अगर राउंड
0: तो
1: बैठी हो तो फिर वो मिक्स भी बैठ सकती हैं किसी के साथ।
0: ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये उनकी
1: सेटिंग भी,
0: देखिए जब ख्वातीन अपने हकूक की बात करती हैं तो उनको अपने हकूक छीनने पड़ेंगे, आपको कोई मर्द कोई आपको आपके हक नहीं देगा। अच्छा, अगला सवाल मेरा यह है कि आप डेनमार्क में पाकिस्तानी सियासत में भी काफ़ी सरगर्म हैं, आपने तकरीरें की हैं कई दफ़ा, तो ये बताइए कि ये जो आप मुजाहरों में हिस्सा लेती हैं और तकरीर वगैरह की है, क्या पाकिस्तानी सियासत को डेनमार्क में लाना दुरुस्त है?
1: देखिए हम पाकिस्तानी सियासत को डेनमार्क में नहीं ला सकते,
0: लाए हुए यहाँ पे मुस्लिम पार्टियों के दफ्तर हैं, मुस्लिम पार्टियों के हैं,
1: हम सिर्फ यहाँ बैठ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम अपना पैसा पीछे भेज सकते हैं तो हमारी यहाँ वहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं
0: जी,
1: वो वहाँ पे रह के वो कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि मोस्टली जो बाहर से लोग हैं वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं उनको। तो जब वो सपोर्ट कर रहे हैं तो हम वो काम यहाँ जो वहाँ नहीं कर सकते, हम यहाँ बैठ के उनको एक किस्म की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत इसमें, हमने पाकिस्तान में सियासत में तो हिस्सा नहीं लिया
0: नहीं, ना वहाँ मैं पे किसी वहाँ की सियासत की मैं ये बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो मसलन मुस्लिम लीग है या कश्मीर कमेटी है या तहरीक इंसाफ है, उसमें जो है वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं कुछ, हालांकि वो ज़्यादा कर सकते हैं नहीं करते, लेकिन उससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि उनकी जो वहाँ पे फैमिली जिनकी आप बात करें उनको प्रॉब्लम पड़ सकते हैं,
1: पड़ सकती है और पड़ते हैं। इस वक्त हर बंदा जो उनसा डरा हुआ, मेरी जब भी पाकिस्तान में बात होती है भाइयों से, मैं उनको ये कहती हूँ, मैंने कहा बेटा एक बात याद रखो, हर घर में से जब तक एक जनाजा नहीं निकलेगा इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। रियली
0: रेवोल्यूशन आना चाहिए उधर
1: आना चाहिए वहां पे, जब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा आप सियासत में आए। मैं आप एक बात में यहाँ पे कर दूं, ये जो नून लीग वाले बेस्ट या जो पीटीआई वाले ये जलसे वगैरह जो करते हैं ना, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो कश्मीर वाले हैं हमारी तहरीकें कामयाब क्यों नहीं होती, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान के लिए नहीं उठते, कश्मीर वाले कश्मीर के लिए नहीं उठते। अगर नाम है तहरीक कश्मीर, कश्मीर सिर्फ आज़ाद तो और गुलाम कश्मीर तो नहीं है, कश्मीर कश्मीर है। अब वो जब पिछले 4 साल से पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, जो अब जो कश्मीर में हो रहा है, कहाँ है वो तहरीकें?
0: आप किसी पार्टी को सपोर्ट करती हैं?
1: मैं पीटीआई को करती हूँ।
0: आप पीटीआई के मेंबर हैं?
1: जी, मेंबरशिप मैंने ली हुई है बिल्कुल।
0: अच्छा, तो उससे जब आप कोई बयान देती हैं या कुछ कहेंगी तो उससे पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके फैमिली को?
1: होना नहीं चाहिए, अगर
0: नहीं होना नहीं चाहिए वो तो है, लेकिन होता तो है ना,
1: होता तो है। देखिए मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ, मैं एक नजरिए को सपोर्ट कर रही हूँ जो इमरान खान ने नजरिया दिया हुआ है।
0: अच्छा,
1: हमारे यहाँ पे जो लोग करते क्या हैं, वो जो सपोर्ट करते हैं ना, वो पीटीआई को नहीं सपोर्ट कर रहे, वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। जो नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए, नून लीग के पीछे नहीं लगे हुए, वो नवाज शरीफ के पीछे लगे हुए। ये फेवरेटिज्म, जो शख्सियत का फेवरेटिज्म है ना, मैं इसके खिलाफ हूँ।
0: अच्छा, आपने यहाँ पे किसी सियासी पार्टी में हिस्सा लिया या सियासत में हिस्सा नहीं लिया? डेनिश
1: नहीं, नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि सियासत में हिस्सा लूँ।
0: वो क्यों? आप यू आर क्वाइट आर्टिकुलेट। आप,
1: मैं पीछे रह के सपोर्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पीछे रह के सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि देखिए सारी दुनिया असेंबली में नहीं बोल सकती। अब यहाँ पे जो सियासत हो रही है, हमारे जो पाकिस्तानी आए हुए हैं, दो लोग थे एम एन ए शिप ही कहूँगी नेशनल असेंबली पे, अब वो भी नहीं है। अब कितने हैं नेशनल असेंबली पे हमारे?
0: हमारे क्या मतलब, क्या मुल्की या
1: पाकिस्तानी हिसाब से?
0: कोई नहीं है,
1: कोई पहले दो थे,
0: पहले
1: ना?
0: पहले थे, हाँ।
1: क्या किया उन्होंने?
0: अच्छा, आप ये बताइए कि डेनमार्क, अभी हम डेनमार्क की बात कर रहे हैं ना, डेनमार्क में है, अभी आपने देखा होगा कि नस्ल परस्ती, रेसिज्म डेनमार्क में, इस्लामोफोबिया बहुत बढ़ गया पिछले चंद सालों में, ख़ासतौर पर सियासी बयान आ रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, हमारे आने वाली नस्लों को प्रॉब्लम होंगे, हम में तो हैं ही हैं, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि जो आप बात सुन रहे हैं, इसको हम किस तरह टैकल कर सकते हैं, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से नहीं, बल्कि एक मुसलमान होने की हैसियत से और गैर मुल्की होने की हैसियत से?
1: देखिए, अगर मैं एज अ मुस्लिम इमेज कहूँ ना, तो जो लोकल कम्युनिटी है ना, या आम डैनिश है,
0: जी,
1: उसमें बहुत अच्छा इमेज है।
0: अच्छा,
1: मेरे कस्टमर जो उनसे है ना, हैंडीकैप है हालांकि, लेकिन जब मैं उनसे बात करती हूँ ना, वो मैं पाकिस्तानी में ये वो, ओ मेरा नेबर पाकिस्तानी है, बहुत अच्छा है, वो तुर्की
0: है। लेकिन वो तो वन से वन हो गई ना।
1: नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ ना,
0: जी,
1: ये स्टार्ट होती हैं बातें हमारे, अगर मैं ये कहूँ तो मौलाना की तरफ से, जो हमारे इस्लामी लेवल के बैठे हुए लोग हैं, हमें इस लेवल तक उन्होंने पहुँचाया है अपने गलत फतवों और गलत जीलों की चला से।
0: लेकिन यहाँ तो फतवे नहीं देते वो,
1: लेकिन रेजिस्ट करते हैं ना, जिस तरह अब यहाँ पे एक वो बंदे ने कुरान जलाने की कोशिश की थी।
0: जी जी, हाँ हाँ,
1: मैं खिलाफ
0: वो सियासतदान भी था।
1: हमारी जो सी है ना, ठीक है, वो हमारी होली बुक है, हमें रिस्पेक्ट है, सारा कुछ है,
0: जी जी।
1: हम किसी को जलाने नहीं देते, वो कुरान जला रहा है, हम फौरन खड़े हो जाते हैं, और ख़ुद हम कुरान के साथ क्या करते हैं, जब वो फट जाता है उसको जाके नहर में फेंक करते हैं या उसको जला के जाया करते हैं, हम भी तो यही करते हैं ना। हमें यहाँ पे
0: उसके,
1: वो लोग
0: उसके मकसद डिफरेंट है, वो जो करता है
1: exactly,
0: उसका मकसद और है, जो हम लोग exactly, करते हैं वो इज्जत के लिए
1: exactly,
0: करते हैं, फेंका ना जाए उसको।
1: इसके लिए ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, जो हमारे मुसलमान सियासतदान हैं, उनको इसको अपनी अपनी पार्टी के लेवल पे देखे, हर हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम क्रिश्चियन की भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे नबी की औलाद में से हैं, उसको मानते हैं, हम उसको ना माने तो हमारे दीन से खारिज हैं क्योंकि हमने उस नबी को मानना है
0: जी।
1: लेकिन हम उनको खुद अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, वो हमारी जिसे कहते हैं ना दुखती रग को जानते हैं और वो जान बूझ के हमें जिसे कहते हैं ना शुरली छोड़ना कि इनको किसी ना किसी तरफ लगाई रखो, हल्का सा शोशा छोड़ के उनको उस तरफ लगा देते हैं। मुसलमान रिएक्ट करना, जलाओ घिराओ, झंडे जला रहे हैं, भाई क्यों? जो चीज़ अब इमरान खान की बात करें, उसने जाके इस्लाम पे बात की थी ना, वो एक फॉर्म था जहाँ पे उसने बात की, उसको माना गया। तो हमारे लोग
0: हशर भी तो देखना क्या हुआ उसका,
1: वो हमारे अपनों ने किया,
0: वही तो कह रहा हूँ। लेकिन आप बात कर रहे थी मौलानों की या मौलवियों की ना,
1: मौलवियों
0: का इस मुआशरे में कोई किरदार हो सकता है?
1: जी बिल्कुल हो सकता है।
0: बताइए,
1: हमारे जितने सारे मौलवी सारे मुल्कों के, सिर्फ हाँ, पाकिस्तान की नहीं, वो सारे बैठ के बात करें, वो ज़ाहिर है वो सियासत वालों से बात तो कर सकते हैं ना। जब वो सारे एक पेज पे इकट्ठे होंगे तो आपकी बात क्यों नहीं सुनेगा? लेकिन हम मुसलमान एक पेज पे हैं कहाँ? किस मसले में हम एक पेज पे हैं? कोई एक मसला बता दे यहाँ पे जो है कि जिस पे हम एक पेज पे खड़े होकर उनको कहें जी हमारा ये प्रॉब्लम है आप सॉल्व करें। जो मज़हब के ठेकेदार हैं वो तो आगे आते नहीं हैं, वो छोटे छोटे पीछे लोग हैं जो उनसे उनको आगे कर देते हैं, सोशल मीडिया को आगे कर देते हैं और अपने खिलाफ खुद ही लोगों को कर लेते हैं। अगर आपको
0: तो इसका मकसद ये हुआ रोहिना के यहाँ पे मौलाना जो आते हैं उनको नहीं आना चाहिए?
1: नहीं, मैं ये नहीं कहती कि मौलाना नहीं आते,
0: लेकिन आना चाहिए गवर्नमेंट,
1: अगर वो आते हैं तो अगर किसी ने अपने लिए, हालांकि यहाँ भी अब लोगों ने एजुकेशन ली है, अब लोग उनको ज्यादा पसंद करते क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को उनकी लैंग्वेज में समझाओगे तो वजह जो दूसरे मुल्क से लेके आते हैं वो सिर्फ अपनी लैंग्वेज में समझाएगा उनको, यहाँ की लैंग्वेज बहुत जरूरी है। मैंने बच्चों
0: और
1: को कुरान पढ़ाया,
0: मुआशरे को समझना बहुत जरूरी है।
1: मैंने बच्चों को कुरान पढ़ाया अरबी में, ठीक है, उसके बाद
0: उर्दू बोलते हैं वो,
1: बोलते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, बिल्कुल है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: लेकिन कुरान पढ़ाने के लिए जब मैंने उनको कुरान समझाना है, एक मरतबा मैंने अरबी में पढ़ा दिया, फिर मैंने कहा जी अब मैंने डैनिश में कुरान खरीदा,
0: वेरी नाइस।
1: फिर मैं पढ़ती तो मैंने कहा जी ये एक सफ़ा आपने पढ़ना है अरबी में पढ़ो, अब एक एक आयत का देखो डैनिश में क्या तर्जमा है। मैं उर्दू में पढ़ती थी, मैं डैनिश में वो, क्योंकि मैं उनको एक्सप्लेन कर सकती
0: जी, जी।
1: मेरी, मैं नहीं कहूँगी कि मेरी बहुत अच्छी डैनिश है,
0: नहीं नहीं, फिर भी
1: मैं बोल लेती हूँ, लेकिन चूँकि वो कुरान का मसला था इसलिए मैंने उनको, फिर मैं उनको कहती थी हाँ आप समझ आइए उनको, यानी इस लैंग्वेज में मैंने उसको कहा, मैंने कहा अब समझो कुरान को कि कुरान क्या लिखा हुआ है, तो आपको पता चलेगा कुरान है क्या। अरबी इज नॉट एनफ नहीं है, या तो मैं उनको शुरू से अरबी पढ़ाती समझाती,
0: और फिर उनकी मादरी जुबान भी नहीं है जी, बिल्कुल
1: ठीक है। अब जब यहाँ पे आप मौलवी लेके आते हो, आपको चाहिए यहाँ पे बहुत से लोगों ने कुरान पढ़ा समझा अरबी, अब हैं लोग मैंने देखे हैं, तो वो ही इन बच्चों को कुरान पढ़ाएं भी समझाएं भी। और सबसे ज्यादा कुरान पढ़ाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आपने बच्चे की तरबियत करनी है
0: exactly.
1: घर वाले तो करते हैं लेकिन जब आप कुरान पढ़ाते हो मस्जिदों में जाते हो तो वो भी एक तरबियत का जरिया है। पाकिस्तान में सबने कुरान पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, हर रमजान में ये जी मैं 5 कुरान खत्म की थी, मैं 10 कुरान, कितनों ने उर्दू में पढ़ के और उसको समझा और उस पर अमल किया। हम मैं एक छोटा सा थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊँगी
0: yeah.
1: अभी कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, पाकिस्तान में इस्लाम कहाँ है, कितने लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं? कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं, हमारे पॉलिटिशियन से लेके हमारे एक आम बंदे के तक पाकिस्तान में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं।
0: चलिए रोहिना, हमारा भी टाइम ख़त्म हो गया, हमारा एक दूसरा प्रोग्राम शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई, अपने कीमती वक्त दिया आपने और अपने ख्याल से। मैं चाहता हूँ कि समर के बाद फिर आपको बुलाएं और एक टॉपिक जो है वो हो ख्वातीन और बिजनेस
1: जी,
0: वो एक क्योंकि आपकी उसमें महारत है बहुत, आप इंडिपेंडेंट बिजनेस वूमेन हैं, तो वो आप ठीक होगा अगर हम आपको दोबारा बुलाएं
1: जी। बिल्कुल, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि मैं जिस बिजनेस में हूँ, मैं उस वक्त मेरे ख्याल पाकिस्तान की पहली थी जिसने इस बिजनेस में आई थी। लेकिन अब काफी सारी
0: नहीं, तो मशवरा दे सकती हैं ख्वातीन को बिजनेस में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने राय का इजहार करने का एक मौका फराहम किया। शुक्रिया जी सबको, जी अल्लाह
0: हाफिज़। सामेन नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम रोहिना ताहिर साहबा के साथ, और हमें उम्मीद है कि आपने इनकी जो बातें सुनी होंगी इसमें कई बातें जो हैं आपको पसंद आई होंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे सामेन नाजरीन जो हैं वो जिन जो बातें हम करते हैं उस पर अमल करें या कोशिश करें कि उस पर अमल करें। तो अगर अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन।

0: इजाजत दे दीजिए।
1: वो मैं इजाजत तो हम आपको इजाजत जरूर देंगे, लेकिन एक दो बैन अल-अक़वामी अमूर पे आपसे आपकी राय जरूर लेंगे।
0: पूछना जाना है किसी जगह?
1: जी जी,
0: देर लगती है वहाँ पहुँचने में।
1: हाँ जी जी, वो आपके साथ हमारा जो है वो वादा है कि आपको हम 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो है ना इजाजत दे देंगे, कोई बात नहीं।
0: चलिए शुक्रिया।
1: लेकिन ये बताइए कि अभी इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी बड़े ज्यादा वोट लेके कामयाब हुई, लेकिन 2 साल के बाद ही वो जो उनके वज़ीर आज़म मौजूदा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और एक नए उनके सियासतदान जो हैं वो उन्होंने जो है हुकूमत संभाली है, और उन्होंने आते ही जो 2-3 कदम उठाए हैं, हालांकि अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, लेकिन
0: बन जाएंगे,
1: लेकिन उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा है कि मैं जो इंग्लैंड में जो पिछले 30 साल में राइट विंग हुकूमतें आईं, उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, मैं उन चीज़ों को ठीक करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लेबर जो है वो मज़दूरों की जो जमात है और उसको जो है राइट विंग की तरफ नहीं होना चाहिए। तो ये जो तब्दीली आई है वहाँ पे कि सामा छोड़ गए हैं और उसके जगह जो हैं वो आए हैं दूसरे, तो ये जो एक अच्छी बात हुई है वहाँ पे जो चेंज आया है अभी,
0: ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इसमें ये देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं।
1: जी जी,
0: एक पहले वज़ीर आज़म जो थे उन्होंने अपनी खामियों को, अपनी नाकामियों को और अपने हालात को तस्लीम करते हुए खुद रजाकाराना तौर पर पीछे हट गए जब उन्होंने देखा कि पार्टी में उनकी मौजूदगी पर सवाल उठाया जा रहा है और उन्हें तो पार्टी की मकबूलियत में कमी का जरिया बनाया जा रहा है।
1: जी
0: जी, और इस अमल के बाद आप देखिए जब नए वज़ीर आज़म जो कल नए वज़ीर आज़म बनेंगे, वो पहले पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, उन्होंने पार्लियामेंट के लिए एक इलेक्शन लड़ा, उसमें कामयाब हुए और जब कामयाबी के बाद उन्हें वो जानते थे कि उन्हें वज़ारत उज़्मा के लिए लोग कहेंगे और ऐसा ही हुआ और उन्होंने ये ओहदा कबूल कर लिया जिसका वो कल मंडे के दिन हलफ उठाएंगे। ये तब्दीली हमें क्या सिखाती है? अगर हम इधर उधर की बातें करते रहते हैं,
1: यदि
0: हम घर की भी बात करें, पाकिस्तान में देखिए कैसे ये तब्दीलियां रूनमा होती हैं। पाकिस्तान में तो जीते हुए को जेल में भेज देते हैं और जिन्हें जेल में होना चाहिए उन्हें इख्तदार पर बिठा देते हैं।
1: जी मैं सुन रहा हूँ, कीमती राय सुन रहा हूँ। जी जी,
0: मैं सोच रहा था शायद आप कुछ लुकमा देंगे।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं आपको लुकमा देने की कैसे जस्तारत कर सकता हूँ। नहीं नहीं
0: नहीं, हम तो हाकी के लुकमे खाते हैं।
1: कोई बात नहीं, ये जो आपने बात की ना, जो जिसने इलेक्शन जीता हुआ वो जेल में है और जिन्होंने जो हारे हुए वो हुकूमत कर रहे हैं।
0: अब उन्होंने एक जो लंदन में उन्होंने जो एक ऐलान किया है वो और भी बड़ा खूबसूरत है।
1: अच्छा जी,
0: वो ये है कि रोजगार पर जो कोई भी आदमी काम करेगा उसके पास वो एक शनाख्ती कार्ड होता था।
1: जी,
0: उन्होंने कहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। इस शनाख्ती कार्ड के होने की वजह ये बताई जाती थी कि कोई गैर मुल्की या कोई भी फर्द जो है जो मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहता है वो काम ना कर सके।
1: अच्छा, उनका जोर ये होगा कि काम की मंडी को खोला जाए और जो काम करना चाहता वो करे।
0: बिल्कुल जी, और ये चीज जो है ये बरतानवी मैशत के लिए, बरतानवी रोजगार की मंडी के लिए बहुत ही एक तरह का इंकलाबी कदम है।
1: अच्छा, इस जो अभी वज़ीर आज़म जा रहे हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें भी की थी, मसलन उन्होंने कहा था कि हम सेंटर, जैसे डेनमार्क ने कहा कि हम डेनमार्क के साथ मिलकर कुछ गैर ममालिक में सेंटर भी बनाएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि जो नई उनकी जो क़यादत है वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देगी?
0: इस बारे में अभी वसूख से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आसार ये बताते हैं कि वो शायद इस मंसूबे में शामिल ना हो।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जाने वाले जो वज़ीर आज़म थे किया सामा, उन्होंने सदीक खान जो लंदन में 3री दफ़ा लॉर्ड मेयर बने हैं, उनको जाते जाते उन्होंने जो यूके की जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसकी मेंबरशिप दे दी, उनको कहा कि अब ये जो है ना जब ये अगर सियासत से हटेंगे तो फिर ये लॉर्ड एज ए लॉर्ड भी हो सकते हैं। तो क्या ये वो भी लेबर पार्टी के बहुत ही मकबूल लीडर हैं, लेकिन वो वज़ीर आज़म वगैरह नहीं बनना चाहते?
0: ये एक बहुत बड़ा कदम है और ये जनाब शादिक खान जो हैं उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। ये लीडरशिप उनको

0: ये टाइटल मिलेगा और वो इसके लिए डिजर्व भी करते हैं।
1: ट्रंप साहब ने तो उनको बड़ा बुरा भला कहा।
0: नहीं जी, ट्रंप साहब तो उनको बुरा भला क्यों ना कहते, क्योंकि ट्रंप ने जो बकवास किया थी और बरतानिया में मुसलमानों के हवाले से, उसका जवाब देते हुए आपको अगर मैं बात याद दिलाऊं तो उन्हीं दिनों मलका की खुद दावत पर,
1: अच्छा
0: बरतानिया मलका की खुद दावत पर वो लंदन का दौरा करने वाले थे
1: ट्रंप साहब जी।
0: तो सदीक साहब ने एलानिया कहा था कि मैं लंदन की सरजमीन पर लैंड नहीं करने दूंगा।
1: तभी वो नहीं आए फिर।
0: पहली मरतबा वो इसीलिए उन्होंने दौरा मनसूख कर दिया, दूसरी मरतबा आए थे। और ये बात कहना और ट्रंप साहब से कहना के सामने कहना और शाही मेहमान के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल करना, ये बड़ी जरूरत का काम है।
1: अच्छा, न्यूयॉर्क के मेयर जो ममदानी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल कर रहे हैं न्यूयॉर्क में। इधर लंदन में सादिक खान साहब भी बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं।
0: लेकिन एक चीज़ आपने देखी है
1: जी,
0: जो रहनुमा इस तरह की बातें करते हैं और अपने हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये एक खास तहजीबी तमदनी दायरे में रह कर बात करते हैं।
1: वेरी ट्रू। हाँ, बोंगियाँ नहीं मारते
0: जैसे हमारे यहाँ पर होता है।
1: बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर हम बोंगियों की बात करें तो अमेरिका और ईरान की जो ना दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है, हालांकि इनका मुआहदा हुआ था और ये भी कहा गया था कि ये जंग वंग नहीं करेंगे, लेकिन ये अमेरिका जो है ये तो फिर जानबूझ के जो ना वो हमले कर रहा है ईरान पे, और ईरान जो है वो अरब ममालिक पे हमले कर रहा है, तो ये कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला?
0: हाँ, इसके जवाब के लिए आप टेलीफोन उठाइए और वज़ीर आज़म अपने शहबाज शरीफ साहब को या हमारे जो कमांडर इन चीफ हैं जनाब आसिम मुनीर साहब,
1: मुझे अंदर करवाना आपने भैया,
0: उनसे पूछिए कि ये क्या हो रहा है। यदि आप अंदर हो जाएंगे तो हमें खुशी होगी, हम जद्दोजहद करेंगे आपको।
1: ओ खुदा, अच्छा अच्छा
0: आप उनसे पूछिए कि आपने मुंह पे कालक तो बन ली थी, अब उसको धोने का वक्त कब आएगा।
1: लोग पाकिस्तान में भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या किया, क्या हुआ
0: पाकिस्तान में, तो इतनी धोखाबाजी से ये काम ले रहे हैं कि पहले ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरब में जो हम फौज भेज रहे हैं वो दरअसल इसराइल की तरफ से सऊदी अरब के खिलाफ कोई अगर कदम होगा तो वो इस्तेमाल होगी।
1: जी जी,
0: अब सऊदी अरब वालों ने तो इसराइल गोद में बैठाया हुआ
1: है, तो लेकिन
0: कहाँ जाएगी?
1: जी,
0: तो यमन में भेजेंगे।
1: लेकिन एक सवाल नसर भाई उठ रहा है, वो ये कहते हैं कि ये जो डिप्लोमेसी हुई थी यूएसए ईरान के बारे में जंग को बंद करवाने के लिए, ये कोई सही डिप्लोमेसी नहीं हुई थी, ये एक सादा सी डिप्लोमेसी थी और इसमें स्टाइल ज़्यादा था, सब्सटेंस कम था।
0: वो बात आपकी बजा है, लेकिन जो कुछ हुआ कागज का वो सफा जो है, पन्ना जो है
1: वो फट गया,
0: जो कुछ लिखा हुआ है अभी तो 60 दिन पूरे भी नहीं हुए थे। और ये सब कुछ जो कुछ शुरू किया ये तो अमेरिका ने किया।
1: जी जी जी जी, बिल्कुल।
0: पहला बात जो है इस नई जंग का वो अमेरिका ने शुरू किया।
1: जी जी जी जी
0: जी, तो आप बताए ना जनाब नवाज, आपने ये जो हमारे सियासी पंडित हैं पाकिस्तान के जी, और जो जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, कि वो क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने किन किस फर्ज के साथ ये मुआहदा किया, ये जानते बूझते भी कि वो झूठा है, कजाब है, अपनी बात पर कायम नहीं रहता, और जो जुबान वो इस्तेमाल करता है आर्मी रहनुमाओं के मुकाबले
1: बदतमीजी भी करता है बहुत ही। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो चलिए, ये जो है हमारी तो ये दुआ है कि ये जंग ना हो, क्योंकि इसमें अरब ममालिक का ईरान का बहुत नुकसान हो रहा है। और
0: बात तो आपकी बिल्कुल बजा है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए।
1: जी जी,
0: कुरान करीम का फरमान है कि जब एक मुसलमान पर कोई मुसीबत आए तो दूसरा मुसलमान उसकी हमायत करे।
1: लेकिन ये नहीं करते ना, हम आज ये तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं।
0: कौन है ये, क्यों नहीं करते? सऊदी अरब क्यों नहीं बोलता?
1: जी,
0: सबसे बड़ी कुव्वत तो शराकत में सऊदी अरब है। क्यों नहीं बोलता? वो बोलते होंगे, टेबल पे बात होती होगी, टेलीफोन कर लिया होगा, हम नहीं जानते। लेकिन अल ईरानिया, उनसे क्यों नहीं कहा जाता कि ईरान पर ये हमले बंद किए जाए और टेबल पर बैठकर बात की जाए?
1: हाँ जी, वो हो सकता है, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि दबे लफ्जों में कहते हो, लेकिन उनकी कोई सुनता भी तो नहीं है ना, ट्रंप सुनता भी नहीं किसी की।
0: वो उसने तो जो जो जो सऊदी वलीअहद को जो जो कुछ सुनाया हुआ है और सऊदी अरब बखूबी जानता है कि वो गोश्ती की कतर की फाइल अभी तक उनके पास मौजूद है।
1: वेरी ट्रू
0: साहब, मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
1: मैं यही कहने वाला था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया नसर भाई,
0: आपने अभी आपके दम से हमारा दम है,
1: शुक्रिया बहुत बहुत। अभी आपने आम चुपने जाना है तो हम आपको इजाज़त दे देते हैं, कोई बात नहीं।
0: गल सुनो, आम चुपना जो है वो थोड़ा काम है, मैं तो सिर्फ वहाँ मेला देखने जा रहा हूँ।
1: अच्छा, मेला भी है वहाँ पे? अच्छा,
0: जी हाँ जी हाँ, मैंगो फेस्टिवल है।
1: हाँ, तो वैसे आम तो ना आप खा सकते हैं ना मैं खा सकता हूँ। चलिए,
0: नहीं नहीं, आम तो आम लोगों की खुराक है, हमारी तो नहीं है।
1: ओह अच्छा, तो
0: जज़ाकअल्लाह, अल्लाह
1: थैंक यू वेरी मच, और इन्जॉय योर मेला एंड वील टॉक नेक्स्ट वीक। रजा भाई, ये था आज का हमारा प्रोग्राम बाशी के संग। तो अब हमारे पास तकरीबन 20 मिनट हैं, तो मैं और आप फिर बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कोई गाना सुना दें राहत फतेह अली खान का।
2: गाना जनाब आपको राहत फतेह अली का साहब का मैं बिल्कुल नहीं सुना सकता आपको।
1: नहीं, जो भी आप सुनाना चाहें सुनाएं,
2: उसकी आप वजह पूछेंगे तो शायद आप भी। मैंने ना राहत फतेह अली साहब का बड़े अरसे से बॉयकॉट किया हुआ है।
1: चलिए आप ऐसे करें, नुसरत फतेह अली साहब क्यों सुना।
2: लेकिन भाई साहब, अगर हम वो करेंगे तो हमारा जो फेसबुक लाइव प्रोग्राम है वो कट जाएगा, फिर हमें दोबारा से वो।
1: चलिए फिर ऐसे करते हैं कि आप कोई ना कोई पौजा ले लें एक दो मिनट का, तो मैं फिर तैयारी कर लूं कि आपके साथ क्या हमारी बातचीत हो।
2: भाई साहब, तैयारी आप क्या करेंगे, तैयार तो आप रहते हैं, आप थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिएगा, मैं ज़रा टेलीफोन सुन लूँ।
1: अच्छा, चलिए चलिए सामने नाज़रीन, अगर हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएँ और थोड़ी सी बातें करें बैन अल-अक़वामी ख़बरों पे, तो सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कतर के जो साबका क्या खलीफा कह सकते हैं, खलीफा सानी उनको कहते हैं, शेख मोहम्मद बिन खलीफा सानी, वो इसराइली मुखालफत के बावजूद जो है उन्होंने गाज़ा का दौरा किया और अल जज़ीरा टेलीविज़न कायम करने के लिए जो है उन्होंने काम शुरू किया। बड़े दबंग लीडर थे और यहाँ तक कि वो पहले अरबी लीडर थे जिन्होंने वॉलंटरी तौर पे हुकूमत छोड़ के जो है वो अलग हो गए। अब वो जो है वो वफात पा गए हैं 76 साल की उम्र में। तो खुदा पिछले इतवार उनका जो है वो वफात पा गए हैं, तो हम यही कह सकते हैं रेस्ट इन पीस खलीफा शेख मोहम्मद बिन खलीफा सानी। अच्छा, दूसरी हम बात हम कर रहे थे नसर साहब के साथ, ईरान और अमेरिका की जो दोबारा जंग शुरू हो गई है उसमें हमले किए जा रहे हैं, और अपनी जवाबी कार्रवाई में जो है ईरान ने भी कुवैत, बहरीन और उर्दन और दूसरे जगहों पे अमेरिकी अड्डे जो हैं उनको हदफ का निशाना बनाया। बात कोई टेलीफोन, हाँ जी
2: चले वो लाइन कट गई बशीर साहब।
1: चलिए अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अभी जो जंग फिर दोबारा शुरू हुई है उसकी क्या वजह है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका जो है वो चाहता था कि किसी न किसी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाए और वहाँ से अमेरिका जो है उसको कंट्रोल करे, लेकिन ईरान इस बात को मानने पे तैयार नहीं है। तो इस वजह से जो है, लेकिन इस दफ़ा ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनकी फैक्ट्रीज़ पे, उन पे अमेरिका ने हमले शुरू किए, लेकिन कल फिर उन्होंने कहा है अमेरिका ने कि अब हमने हमले बंद कर दिए। तो एक घंटे पहले वो कुछ कहता है, दूसरे घंटे के बाद दूसरी बात कहता है, लेकिन बात यहाँ पे अटक गई है रजा भाई कि ईरान नहीं मान रहा। ईरान ये कहता है कि भाई तुम जो मर्ज़ी तुमने करना कर लो, हम जो है ना शिकस्त मानेंगे ना तुम्हें इजाज़त देंगे, तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कोई अपना हिस्सा तुम्हें मिले या तुम वहाँ पे आओ। तो बात अब जो है यहाँ तक अटक गई है, लेकिन ये जो मुसलसल सातवीं रात पे जो हमलों का सिलसिला शुरू हुआ था अब वो रुक गया है। अब जो लेटेस्ट खबर ये है कि वो जो है बयानात सख्त सख्त बयानात वो दे रहे हैं दोनों तरफ से, ईरान ने भी काफ़ी सख्त बयानात दिए हैं, लेकिन उसका कोई रास्ता नहीं है क्योंकि ईरान को शिकस्त नहीं हुई, अमेरिका को फतह नहीं हुई, और अमेरिका मजबूर हो गया क्योंकि उसके जितने अड्डे थे पूरे मिडल ईस्ट में उनको जो है ईरान ने तबाह किया, और अब ईरान वो मिज़ाइल इस्तेमाल कर रहा है जो उसने पहले पिछले 4-5 महीने में नहीं किए थे।
2: जी बाशी साहब बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा सा वो टेलीफोन कॉल बीच में आ गए। अच्छा बाशी साहब चलते हैं वापस आप ही के प्रोग्राम में, बाशी के संग के शुरू में जो बात हो रही थी कि यहाँ से जो जिनको 1 साल की सजा जब होगी तो उनको जो है वो मुल्क बदर कर दिया जा सकता है, तो बाशी साहब अगर उसमें जिस तरह आपने कार एक्सीडेंट का जिक्र किया, अगर खुदा ना खास्ता किसी से गलती से जो है वो किसी की जान चली जाती है तो उसको अगर सजा सुना दी जाती है कि जी जुर्म साबित कर दिया जाता है कि ये जानने में हुआ है या वो जान गई है, तो अगर साल की सजा होती है तो उस शख्स को जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाएगा।
1: रजा भाई देखिए, हमें इस ये जो तजवीज़ इन्होंने पेश किया, अभी लॉ तो नहीं बना लेकिन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कोशिश कर रही है और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट ने उसको बड़ी सख्ती से जो है वो कहा है कि ये काम नहीं करो क्योंकि ये इंसानी हकूक के ख़िलाफ़ है। आपको पता है कि इससे पहले भी कई ऐसे केसेस थे जिसमें मुल्क बदर की गई थी, एक टर्किश थे, एक दो और ईरानी थे, वो फिर स्ट्रासबर्ग में जो ह्यूमन राइट की कोर्ट है वहाँ पर गए और वहाँ पर डेनमार्क को शिकस्त हुई। क्योंकि देखिए जब आप एक मुल्क में रहते हैं बड़े अरसे से, आपने कभी कोई जुर्म नहीं किया होता और गलती से कोई ऐसी हरकत हो जाती है जिससे आपको सज़ा होती है। अब देखिए मैं अब आपको साफ बताता हूँ, ये जो बात ये कर रहे हैं ना 1 साल की सज़ा, उसमें ये नहीं कि आप कौन सी जुर्म करें, 1 साल की सज़ा किसी जुर्म में भी हो सकती है। जैसे वो पासपोर्ट के लिए 3 साल का जो सज़ा, उसमें आप ड्राइविंग भी करें या किसी के को मारें या कोई भी जुर्म करें या कोई स्मगलिंग करें। मुझे जो इख्तराफ इस बात का है कि जब एक मुल्क में आप 30-40 साल से रह रहे हैं, हाँ आपके पास डेनिश शहरियत ना भी है, लेकिन जब आप एक अच्छे सिटीज़न हैं और कोई आपसे गलती हो जाती है नादानिस्ता तौर पे और आपको सज़ा होती है, तो जब आप जेल में जाते हैं 1-2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो आप उस सज़ा की जो सज़ा काट रहे हैं उसके बाद आपकी स्लेट साफ़ हो जाती है।
2: नहीं बाशी साहब, वो 5 साल तक जो है ना वो आपकी रहती है, लेकिन
1: नहीं नहीं बात मेरी बात सुने, मैं असूली बात कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन यह है कि अगर ये बात है तो वो डेनिश लोग जो बड़े बड़े जराइम करते हैं उनको यहाँ पे जो रखा जाता है उनको भी तो सेंटर में भेज दो, कभी हम अगर ये जुर्म की वजह से है
2: जी।
1: तो फिर वो भी तो मुजरम है।
2: अगर आप वही ले लेना हिलरिक सास लास्ट में ठीक है, जो सोशल डेमोक्रेट के थे मिनिस्टर भी रहे हैं, उनको जब वो उन पे केस बना तो उनको जनाब पहले फर्स्ट फंक्शन भी दे दी गई है ठीक है, उनको जो है इम्यूनिटी भी दे दी गई है, यानी हर चीज जो है वो उन पे, क्योंकि सिर्फ क्या है जी वो सियासतदान है और कितने ले लें पार्लियामेंट में। हाँ मजसमीन अगर आप कुछ जुर्म भी किया ना, नॉर्मली 5 साल तक आप जहाँ पे भी जॉब अप्लाई करते हैं वहाँ पे आपका वो क्रिमिनल का रिकॉर्ड जो है वो चेक करते हैं, पार्लियामेंट में आप कभी भी जो है ना वो जा सकते हैं, उसमें आपको कोई पाबंदी नहीं है।
1: मैं यही कह रहा हूँ, देखिए एक मुआशरे में, एक जमहूरी मुआशरे में, एक इंसाफ पसंद मुआशरे में कानून सब के लिए होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ और मैं इस चीज़ पर बिल्कुल, मेरा ये जो है ये मैं ईमान तो नहीं कहूँगा लेकिन मेरा, मैं इस पर बड़ी सख्ती से कायम हूँ कि यूरोप और डेनमार्क नहीं चाहते कि यहाँ पे गैर मुल्की जो नॉन यूरोपियन हैं जो दूसरी दुनिया से,
2: खास तौर पे मुसलमान,
1: देखिए
2: क्योंकि वो कहते हैं वो यही
1: नहीं नहीं, देखिए जब मैं गैर मुल्की कहता हूँ नॉन यूरोपियन, उसमें मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, अफ्रीकन भी हो, कोई नहीं हो, ये नहीं चाहते कि इनकी नस्लें और उनकी नस्लें यहाँ पे रहें और डेनमार्क का हिस्सा बन जाएं, ये इनकी ख्वाहिश है बहुत।
2: अच्छा, लेकिन जो मैं बाशी साहब कहना चाह रहा था ना, उसमें जो मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत है वो बहुत सी पार्टियों की मिलके बनाई,
1: 4 पार्टियों की
2: है और साथ में उनके 2-3 इतादी भी हैं
1: जी,
2: जिसमें आपके जो
1: है अल्टरनेटिव है जी,
2: एग्जैक्टली ये कानून जब ये बनाना चाह रहे हैं तो उनकी भी उनको सपोर्ट चाहिए होगी, और गारी खेलविंस तो खास तौर पे जो है वो उनकी हुकूमत में है, एसएफ को तो छोड़ दें वो है ही सोशल डेमोक्रेट की तरह, डेनिश वर्कर पार्टी की तरह बातें करते हैं, लेकिन ये जो 3 पार्टियां जो हमारे हक में अक्सर बोल, इस पे इन 3 पार्टियों का क्या मौकफ है, कोई आपकी नज़र से गुजरा है ऐसा बयान कोई उन्होंने कहा?
1: नहीं, मैंने देखे, मैंने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सवाए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कोई इस पर ना तबसरा किया ना कोई बात हुई है, लेकिन मैं ये समझ लेकिन जब इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट कोई बात करता है तो उसकी बात में बड़ा वजन होता है।
2: नहीं वो तो अपनी जगह
1: नहीं, मैं इसलिए
2: जो हमसे वोट मांगते हैं
1: मैं आपको पहले समझा दूँ, उसमें ये है इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट डेनिश पार्लियामेंट ने बनाया है और उनका एक जो बड़ा काम है वो डेनिश पार्लियामेंट को जो है मशवरा दें, और वो आपको पता है यहाँ पे जो हियरिंग सवार के लिए जब कोई कानून बनता है तो वो फिर मुख्तलिफ पार्टीज़ को भेजा जाता है, मुख्तलिफ एनजीओज़ को भेजा जाता है, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन को, वो फिर अपनी राय देते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर इंस्टीट्यूट ने कहा है कि ये कानून जो है इंसानी हकूक के ख़िलाफ़ है तो हुकूमत सोचेगी इस बात के ऊपर। चलिए
2: लेकिन लेकिन मेरा जो सवाल है उसका तो आपने जवाब नहीं दिया कि
1: आप पूछे तो सही ना,
2: जो तीन पार्टियां हैं
1: उन्होंने कुछ नहीं कहा अभी तक,
2: ये मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि जिनको हम वोट देते हैं जिनको सपोर्ट करते हैं आज वो हुकूमत में आ गए हैं या उनके इतिहादी हैं वही हमारे लिए जो है वो उन्होंने बोलना ही छोड़ दिया।
1: मैंने इरफान गिलानी साहब से बात की थी पिछले हफ्ते, वो हमें मिले थे तो मैंने उनको इन्वाइट किया है अगस्त में, और उनसे हम ये पूछेंगे कि इंतखाब के बाद जो है आपकी पार्टी अभी हुकूमत में आ गई है उसका क्या फ़ायदा होगा गैर मुल्कियों को, उसका डेनिश पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा, क्या वो इस किस्म जिस कानून की हम बात करें अगर इस किस्म के कवानीन के लिए अगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी आपकी पार्टी से कोई मदद चाहती है तो फिर आप क्या कहेंगे, आप जो हैं ख़ुद अपनी पार्टी को क्या कहना चाहते हैं। तो ये सारे सवालात क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं कमून वगैरह में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है इरफान गिलानी रेडिकल वेंस्ट्रा में काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, वो
2: उनके पास दो सीटें हैं, एक
1: सीटों के अलावा उनकी बात सुनी जाती है, वो हैं फारूक क्या
2: नाम
1: नदीम फारूक हैं, वो बड़े करीब हैं जो डेनिश पार्लियामेंट के जो
2: बच्चे। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, ये यहाँ पे जो तम्स तो जो अदालत होती है वहाँ पे मैं तम्समैन जिसको ज्यूरी कहते हैं
1: जी जी
2: वहाँ पे एज एक केस सुनने गए थे जिसमें एक तुर्की लड़का था जिसकी उम्र 17 साल थी जब उसने ये जुर्म किया था, वो था स्किज़ोफ्रेनिक जिसको जो है वो आपकी आपको चीज़ें नज़र आती हैं आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो उसने अपनी माँ को जो है वो चाकू मारे थे, तो वो केस बना तो बच्चे साहब उसको जो है वो सज़ा तो जेल की नहीं सुना सके लेकिन उसको जो है पहलिंग स्टॉम यानी उसको जो सज़ा थी वो ये थी कि उसका वो मेडिकल जो है वो इलाज होगा, अब वो एक दिन में ठीक हो जाए या 10 साल में ठीक हो जाए जब भी वो ठीक होगा वो बिल्कुल आज़ाद जो है वो आ सकता है। फिर उस पर तो सारे एग्री हो गए कि उसको जो है वो सज़ा देनी है, फिर दूसरा आया था कि उसको जो है वो मुल्क बदर करना है क्योंकि उसकी जो डेनमार्क के साथ सिल्क न्यूटनिंग यानी डेनमार्क के साथ जो उसका इलाहाबाद ताल्लुक था वो इतना ज़्यादा नहीं था, तो उसको जो है वो मुल्क बदर करने का, तो वो उस पर मैंने जो है वो अपना जो मेरा वोट था मैंने अपना जो है वो कहा था कि मैं इस पर वोट नहीं देना चाहता यानी इसके हक में नहीं हूँ, तो उसने कहा वो जो जज था कि क्यों नहीं देना चाहते, मैंने कहा ये पॉलिटिकल जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि आप उसको जेल की सज़ा नहीं सुना सकते, मैंने कहा अगर कोई और कैदी होता सजा याफ्ता होता तो उसको अगर 2 दिन बाद ठीक हो जाता है तो ही इज़ फ्री ठीक है वो आज़ाद है, लेकिन अगर ये होता है 2 दिन बाद तो इसको आप मुल्क बदर करेंगे, तो कहता है ये तुम जाके पार्लियामेंट में उनके साथ बहस करो यहाँ पे, लेकिन मैंने उसको कहा कि मैं इसके खिलाफ वोट देना चाहता हूँ, तो क्योंकि मेरे नज़रिए में भाई साहब चाहे 10 साल की सज़ा हो या 3 साल की हो या 1 साल की हो डजंट मैटर, क्योंकि आपका अगर तल्लक है यहाँ, अब मुझे मैं यहाँ पे पैदा हुआ हूँ अब मेरे पास डेनिश पासपोर्ट मिसाल के तौर पे नहीं है, तो अगर मैं कोई जुर्म करता हूँ मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे हैं ठीक है, तो यानी उनको भी आप सज़ा दे रहे हैं मुझे भी दे रहे हैं, फिर कहेंगे कल के जी माँ बाप ने इनकी परवरिश नहीं की, बाप को तो आपने निकाल दिया,
1: आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है,
2: मैं एक मिसाल दे रहा हूँ।
1: अच्छा मिसाल
2: तो ये है कि भाई साहब मैं तो बिल्कुल इसके हाँ अगर यहाँ पे कोई टूरिस्ट आया है या कोई किसी और पर्पस के लिए डेनमार्क में आते हैं और यहाँ पे जो है वो कोई क्रिमिनल काम करते हैं उनको मुल्क बदर करना या मुल्क से निकालना सजा देना वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो परमानेंट रह रहे हैं अब जिस तरह वो 17 साल का बच्चा यहाँ पे उसके माँ बाप उसके बहन भाई सभी यहाँ पे हैं, सिर्फ एक नानी या दादी उसकी जो है वो तुर्की में थी, तो उसको जो है वो मुल्क बदल करने हैं।
1: रजा भाई देखिए, ये अभी आपने जो एक्सप्लेन किया, ये इस जो मैं पहले बात कर रहा था उसको सपोर्ट करता है, क्योंकि इनकी जो है नज़रियाती पॉलिसीज जो हैं वो सियासी पॉलिसी से भी आगे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि यहाँ पे तीसरी दुनिया के लोग रहें। तो किसी ना कोई बहाने, सारे जो कवानीन बना जाते हैं ये बहाने हैं, इसमें कोई ना तो लीगली कोई अच्छी चीज़ है। और फिर यह है कि एक शख्स जो है, जैसे अभी आपने बताया, उसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे 40-40, 50-50 साल से रह रहे हैं और उनके पास डेनिश पासपोर्ट नहीं है, और उनको अभी जो डेनिश पासपोर्ट शहरियत के लिए जो सख्त कवानीन बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि जब आपके पास डेनिश पासपोर्ट नहीं होगा तो आपको निकालने में आसानी होगी। ये वजह है कि सियासतदान जो है ना यहाँ पे इन चीज़ों पे जोर दे रहे हैं।
2: ये सारे सियासतदान लाइन में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बढ़कर एक जो है वो बोली लगाते हैं। सोशल डेमोक्रेट अंडर प्रेशर है इस वक्त, क्योंकि ट्रांसफॉर्म पार्टी और दूसरी जो है वो सारे जो है इसी पे जोर। अगर आप यकीन करें, फेसबुक खोल के देखें तो जब आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको सिर्फ
1: मैं देखता हूँ, रोजाना देखता हूँ जी,
2: तो वो नजर आते हैं।
1: अच्छा, एक पाकिस्तान के बारे में खबर है जो उन लोगों के लिए जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट वगैरह भी, उनकी एक खबर मैं बता देता हूँ। पिछले चंद हफ्तों से एक नई फेसबुक पे एक खबर आई थी कि जिन लोगों के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट के अलावा गैर मुल्की पासपोर्ट भी हैं, तो वो पहले था कि एक नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान का फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी, वो दिखा के जो है आप वीज़े के बगैर जा सकते हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो खबर ये थी कि आप नहीं जा सकते। लेकिन अब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने दोबारा ये जो प्रेस रिलीज़ दी है कि उसमें हमारी कोई तब्दीली नहीं हुई, कि अगर आपके पास वो कार्ड है नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी NICOP, तो आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कार्ड ही जो है वो आपका परमानेंट वीज़ा है।
2: बच्चे साहब, मैंने भी खबर सुनी थी, ये जो ख़ासतौर पे उसमें कहा गया था कि जो बरतानिया में रोग रहते हैं
1: वो उस पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये जो है, क्योंकि बरतानिया के साथ जो कवानीन चेंज हुए, लेकिन ये लागू सब पे होता था, लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कहा है कि जिनके पास वो कार्ड है दैट इज़ इनफ, आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं। क्योंकि पाकिस्तान में कई पाकिस्तान यहाँ पर आते हैं जिनके पास वो कार्ड है, आपके पास भी होगा। अच्छा, दूसरी खबर यह है कि PIA की किस्मत बदल गई है। अभी PIA के जो नए मालिक हैं हबीब बैंक के, आरिफ हबीब साहब, उन्होंने कहा है कि हमने 60 नए जहाज़ ख़रीदने का इरादा किया है, और अभी जो है पाकिस्तान के वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी साहब बोइंग जो फैक्ट्री है उसका दौरा किया उन्होंने, और ऑलरेडी 16 नए जहाज़ जो हैं उसका मुआहदा किया है, और वो जो है PIA में शामिल किए जाएंगे। PIA के रूट जो हैं पुराने वाले भी और नए रूट जो हैं वो जो
2: ये मोहसिन नकवी साहब किस हवाले से वहाँ पे,
1: वो वज़ीर दाखला है मेरा ख्याल है,
2: लेकिन ये कंपनी तो प्राइवेट हो गई है।
1: नहीं, कंपनी प्राइवेट है, लेकिन वो ये देखिए, वो ये समझते हैं कि वो अमेरिकन हुकूमत के करीब हैं, और ट्रंप और उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके साथ उनकी हेलो हुई थी अभी जब ये मुआहदा हुआ था अमेरिका का और ईरान का, तो चलिए भी। लेकिन यह है कि आरिफ हबीब साहब जो हैं उन्होंने ये खबर दी है कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं 16 बोइंग 787 जो है अभी नियर फ्यूचर में लेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि अगर पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन फिर दोबारा वही, क्योंकि आप तो खैर नौजवान, आपको नहीं पता, हमारी यूथ एज में जब हम देखते थे पाकिस्तान में वो लगे होते थे ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, तो बड़े फ़ख्र होता था। और पाकिस्तान एयरलाइन ने कई दुनिया के छोटे ममालिक की एयरलाइन शुरू करने में उनकी ट्रेनिंग भी की।
2: काशी साहब, जब हम नौजवान थे ना तो तब वो कहते थे PIA तो पानी आपे PIA।
1: नहीं नहीं, वो कहते परहैप्स आई अराइव, बड़े बड़े मजाक बने हुए थे, लेकिन इस पे हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन
2: काशी साहब, मुझे जो दुख और अफसोस जिस बात का होता है ना, जब वो पाकिस्तान की मलकियत थी, पाकिस्तान की एक चीज थी, तब हमने उसका जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया, उसको नोच नोच के खा दिया।
1: नहीं तो वो पॉलिटिकल पार्टी ने किया ना, जिन्होंने अपने सारे लोगों को वहाँ पे भर्ती कराया। मैं जानता हूँ,
2: मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि यानी हर चीज जो पाकिस्तान की है हम उसको तो ऐसे नोच के खाते हैं जिस तरह पता नहीं गिद्दे नहीं होती, वो मुर्दा गोश्त पे भी जो है वो गिरते हैं।
1: वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन चलिए, ये हमारी तो दवा है कि हालत बेहतर हो, और एक और नई कंपनी पाकिस्तान में शुरू हुई है जो कि एयरलाइन जो वहाँ पे इंटरनल फ्लाइट्स के लिए, तो मूवमेंट हो रही है। तो चलिए, ये था सामईन और नाज़रीन हमारा प्रोग्राम नज़र भाई के साथ। तो अब हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं क्योंकि हमारे जो दूसरे दोस्त हैं ज़फ़र शेख साहब, उनका प्रोग्राम होगा। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
3: आप और हमवतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84। ईमेल radio@hamwatan.org।

0: रहे होते हैं लोग कंफ्यूज। मैं वो कभी भी हमने हबर नहीं लगाई, हमने वही हबर लगाई है
1: जो सदका होती है,
0: सदका होती है। उसके अलावा कोई हबर नहीं है। सोशल मीडिया से कभी कोई हबर नहीं, चाहे उसके व्यूज कोई 1 लाख हो 2 लाख हो, कभी भी नहीं उसको उठाया, बल्कि वही हबर है जो मसदका है और जो इंटरनेशनल चल रही है। और ये बड़ी तस्दीक, अगर हो भी ऐसी खबर जिसमें कोई डाउट हो तो उसको फिर चेक करना होता है, चेक करके फिर लगाते हैं।
1: अच्छा,
0: यानी कि इस पर आप कर सकते हैं कि ये खबर वाकई जो इस पर आ गई है, क्योंकि आस्ता आस्ता इतमाद बनता है। इतमाद तो इतनी जल्दी नहीं बनता, बाद दफ़ा होता है कि बंदा खबर देखता है, कहता है मैं इसको अब कहीं और भी इसको चेक करूँ वाकई ये है कि नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान में अगर आप जितना मर्जी चैनल देख लेना, आप जियो लगाएंगे फटाफट, जियो पर मैं देखूँ कि वो खबर आ रही है कि नहीं जा रही। तो इस तरह ये भी आस्ता आस्ता, मेरी भी कोशिश यही है कि लोग इस पर इतमाद करें, इतमाद बढ़े। जब पढ़ें तो ये ना कोशिश हो इनकी कि हम कहीं और मीडिया पे भी देखें ये खबर इसने सही लगाई है कि नहीं लगाई है। तो अभी अच्छा। भी लोग कई दफ़ा कहते हैं कि ये आपने खबर गलत है आपकी, ये अच्छा। आप फेक है,
1: अच्छा
0: आप कोई सबूत दें हमें, तो बताए वो बताए, फिर उन्हें लिंक देना पड़ता है, लिंक देते हैं इंटरनेशनल अखबार का किसी का भी, तो फिर उन्हें समझ आती है। तो अब देखें पिछली दफ़ा ये जब नॉर्वे के लोग, नॉर्वे का मैच हुआ था आखिरी क्वार्टर फाइनल में हार गए थे, तो उन्होंने बाहर, हालांकि वो कोई फसाद नहीं हुए थे बाहर या कोई ऐसे नहीं था, पर इतना उन्होंने जश्न मनाया कि वो फसाद की शक्ल में हो गया, आग और ये वो सारे झगड़े झुगड़े वो लगे। कहते जी वो मैंने खबर लगाई तो कहते नहीं जी ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वहाँ पे 1 लाख से ज्यादा लोग बाहर निकले, 20-30 हज़ार, वो उन्होंने एक तरह का जश्न मनाया, पर जश्न मनाया जश्न भी ऐसे हो गया कि वो हंगामे शुरू हो गए, आगे आग लग गई कहीं जगह पे, को जो पटाखे वगैरह चलाते हैं, तो वो सारा तो लोग कहते हैं यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ इस तरह का। तो फिर उन्हें मैंने भेजा, मैं नॉर्वे मीडिया का उनका लिंक भेजा, डेनमार्क का भेजा, फिर मैं देखें जरा, फिर उन्हें कोई समझ आई कि
1: अच्छा अच्छा ये पाक डेनिश मीडिया जो है इसको आप मुस्तकबिल में किस तरह देखना चाहते हैं, कि यहाँ का जो लोकल मीडिया इसके साथ कोऑर्डिनेशन करके चलाना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट आप चलाना चाहते हैं, या इसमें जो लोग दिलचस्पी रखते हैं आने की, काम करने की आपके साथ, तो इस हवाले से अगर आप कुछ बताएं।
0: ये तो देखें जी, ये तो हमारी हर वक्त ख्वाहिश रही है, हमारी टीम जैसा हमने इसी वजह से पाक डेनिश प्रेस क्लब भी बनाया हुआ है,
1: अच्छा
0: ताकि जो जो लोग जिस तरह आप रेडियो हम वतन चला रहे हैं, कोई और कोई चला रहा है, तो वो अपना अपना काम करे, पर एक एक छतरी तले जमा भी हूँ, इकट्ठे हूँ ना,
1: मतलब
0: इकट्ठे हूँ, तो वो हमारी कोशिश है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाक डेनिश प्रेस क्लब में आते हैं तो आप अपना ये सिस्टम ख़त्म कर देंगे या आप बाहर नहीं कर सकेंगे। जिस तरह प्रेस क्लब होता है उसकी बेसिक वजह तो यही है ना।
1: आपने लोकल मीडिया के साथ राब्ता किया है या कुछ जो साफी काम कर रहे हैं उनके साथ?
0: हाँ जी बिल्कुल, ये मेयर साहब देखे यहाँ पे कोई 40-50 साल से हैं, ये हमारे साथ प्रेस सेक्रेटरी हैं, सुल्तान गोंदल साहब हैं, वो भी अपना मैगजीन निकाल रहे हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा निगत अहमद हैं, वो रेडियो डेनमार्क में काम करती हैं, हमारी चेयरपर्सन
1: है।
0: तो इस तरह और भी अली जवेद है, वो भी काफ़ी एक्टिव है अब मीडिया पे, वो भी हैं, आपसे भी हमने रब्ता किया, बाकी जो दूसरे चला रहे हैं उनसे भी रब्ता किया। पता है आस्ता आस्ता ये चीज़ें बनती हैं, डेवलप होती हैं, एकदम नहीं बनता, वो देखता है कि एक चीज़ बनी है तो ये लोग सीरियस भी हैं कि नहीं है, ये नहीं है कि वो जो पुराने लोग हैं ना, अच्छा तो वो सोचते हैं कि हमें उस वक्त इन चीज़ों में शामिल होना चाहिए, ये ना कि कल को हमें बैक होना पड़े, वापस जाना पड़े ना, तो वो थोड़ा टाइम लगता है इसको।
1: मैं साहब, आप प्रेस सेक्रेटरी हैं जैसे इन्होंने फरमाया, आप कुछ ऐड करना चाहें मुझसे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इस प्रेस क्लब के हवाले से या इस पाक डेनिश मीडिया के हवाले से।
2: मेरा रब्ता है जी,
1: जी
2: अदब के हवाले से, उर्दू जबान के हवाले से, और पाकिस्तान की कम्यूनिटी जो डेनमार्क में मुकीम है, अगर मैं कोई कॉलम लिखता हूँ तो मैं इन्हें भेजता हूँ और इनकी ट्रांसलेशन की हुई डेनिश खबरें उनका मुतालिया करता हूँ, देखता हूँ, और फिर व्हाट्सएप के ऊपर मेरे ख़ास आदमी कोई 50 आदमी हैं, मैं उनको फॉरवर्ड करता हूँ, इस तरह उन्हें मिल जाता है। वो टेलीफोन भी करते हैं जी हाँ जी कि ये है बड़ी अच्छी खबर आई है। हम अपनी पाकिस्तान कम्यूनिटी की कमज़ोरियाँ भी बयान करते हैं, ये नहीं है कि हम किसी के बाजे बजाते हैं या उनको सर पे बैठा कर कोई उनकी तारीफ और तौसीफ करते हैं, लेकिन नहीं, जहाँ से हमें खबर कोई ऐसी मिलती है डेनिश मीडिया से, क्योंकि डेनिश मीडिया को पढ़ने के लिए कितने पाकिस्तानी हैं, दिलचस्पी तो नहीं रखते, ये जो नौजवान नस्ल है ये तो रखती है दिलचस्पी, लेकिन मेरे जैसे बुज़ुर्ग जो 70+ हैं उन तक खबर पहुँचाने के लिए آصف صاحب ڈینش اخبار کا

0: आज जो मवाद इन्हें मिलता है उसको ट्रांसलेशन उर्दू में करके हम उसको फॉरवर्ड करते हैं और वो लोग पढ़ते हैं और खुश होते हैं, उन्हें पता चलता है, यानी दूसरे नौजवानों को भी पता चले कि भी अच्छी बात करनी है, क्राइम से दूर रहना है, समझे आप, टैक्स चोरी नहीं करना, हमने इस मुल्क के सिटीजन हैं, इन्होंने हमें सब मुराद दी हैं। तो यहाँ मैं आसिफ साहब को एक मशवरा दूंगा कि आप ये ट्रांसलेशन का काम करते हैं, मुझे बड़ा पसंद है और मैं पढ़ता भी हूँ और उसे मैं अपने लाइब्रेरी में महफूज भी रखता हूँ। मैं यहाँ ये कहूँगा कि ये कॉलेज के ज़माने में भी मैगजीन में काम करते थे, यहाँ भी कर रहे हैं, मैं दो माहनामे भी निकाले हैं, ये अपने अपने ख्यालात भी अपने ख्यालात के ऊपर मबनी भी कोई ना कोई मजमून ऐसा लिखें कि जो मुफीद हो, गाइडलाइन हो, क्योंकि सभी लोग तो एडिटर नहीं हैं, सभी लोग तो अदब के हवाले से पढ़ लेते हैं, लिखने लिखने लिखाने का जिनका काम है ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। इस तरह जैसे सिकंदर है, सिकंदर मलिक जो है अपने आर्टिकल डैनिश अखबारों में लिखता है, हम उसका ट्रांसलेशन भी लगाते हैं। अभी पिछले हफ्ते उन्होंने मुझे भेजा है अपना तर्जमा उसका जो उन्होंने डैनिश अखबारों में लिखा है। तो मैं आसिफ साहब से भी ये कहूँगा, ये हमारे प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, तामन करते हैं, हम भी इनसे तामन करते हैं, कभी बैठ कर अपने ख्यालात का तबादला भी करते हैं। तो ये अपने व्यू, अपने ख्यालात, अपने अंदर जो इनके अंदर कोई है चीज़, उसका भी इजहार अपनी तरफ से करें कि पता चले कि हम यहाँ पर लिखे हुए जो मज़मून हैं वो फलाह बहबूद के लिए हैं, पाकिस्तान के लिए हैं, कम्युनिटी के लिए हैं, अच्छी बातों के लिए हैं। यानी मिसाल के तौर पे मैं नाम नहीं लूँगा कि कुछ बच्चे जो बाहर निकल कर रात को 12 बजे इतना बड़ा पत्थर उठा कर बस स्टैंड के ऊपर जो शीशे लगे हुए हैं कि बारिश हो तो आदमी पनाह ले ले, तो वो तोड़ देते हैं। मैंने आंखों से, मेरे पास तस्वीरें हैं, मेरे मोबाइल के अंदर तस्वीरें हैं। तो ये फॉरनर बच्चे करते हैं, गैर मुल्की बच्चे करते हैं, डैनिश बच्चे को आज तक मैंने अपने मुल्क का शीशा तोड़ता हुआ नहीं देखा। बाकी ये है कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानियों के बच्चे हैं, मैंने अपने कॉलम में लिख कर इन्हें भेजा है, उनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, यहाँ तो जज है पाकिस्तानी बेटा जिसका बाप एक मास्टर था। मैं कोई बहुत अमीर घराने से नहीं आया ना, मैं मजदूर था पाकिस्तान के अंदर। तो मैं इन्हें कहूँगा कि ये अपने जो इनकी ऑब्जर्वेशन है जो ये देखते हैं उसको अपने ख्यालात के जरिए कलम बंद करके ये नौजवान नस्ल तक पहुँचा।
1: अच्छा, ठीक है। अच्छा आसिफ साहब, आपने जिक्र किया कि यहाँ पाकिस्तान मीडिया प्रेस क्लब, पाकिस्तान प्रेस क्लब,
2: पाक डैनिश प्रेस क्लब।
1: अच्छा, इसकी अगर आपके अंदर ये ख्वाहिश है तो ये आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से, इससे पहले भी एक कोशिश हुई है, बल्कि है अभी भी वो, यानी मंदरे आम पे तो है ये डैनिश मीडिया। अगर रज़ा मुस्तफ़ा साहब सुन रहे हैं तो उनको मैं अगर रिक्वेस्ट करूं तो वो इसके वाले से थोड़ा सा बताना चाहें, और उसके बाद फिर आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि ये किस तरह आप यहाँ के लोकल मीडिया को इकट्ठा कर सकते हैं ताकि ये एक जगह पे बैठ के बातचीत के ज़रिए इत्तफाक़ राय से एक क्लब जो है वो तश्कील दें ताकि वो रजिस्टर करा सके, ताकि उसकी ताकत जो है ना ज़्यादा बन सके। रज़ा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपने एक कोशिश की थी माजी में, उस हवाले से थोड़ा सा।
3: जी, बहुत शुक्रिया। ये पाक मीडिया इन डेनमार्क जो है, हमने कोशिश की थी कि जितने भी हम यहाँ मुख्तलिफ मीडिया के लोग थे आपस में, यानी उसमें कोई ये प्रेस क्लब या और इस तरह का कोई नहीं था, लेकिन सिर्फ ये था कि अगर उसमें हम सब मिल के एक दूसरे को खबरें पहुंचा सके, क्योंकि सब यहाँ पे जॉब करते हैं, तो कोई जो है वीडियो यानी खबरें, वीडियो खबरें बनाते थे, कोई रिटर्न लिखते थे, कोई रेडियो पे करते थे, तो उसमें यानी हम सब एक अगर जाता है वहाँ पे तो उसमें ऐसा एक ग्रुप हो के अगर वहाँ पे तस्वीरें, वीडियो जो है तहरीर भेज दी जाए, तो दूसरे जो नहीं जा सके वो भी जो है वहाँ से लेके, तो एक दूसरे की जो है हम हेल्प कर सकते हैं।
1: तो वो किस हद तक आप उसमें कामयाब हुए?
3: कुछ हद तक तो कामयाब हुए थे उसमें शुरू शुरू में, लेकिन उसके बाद जो है वो यही है कि कुछ लोग समझते हैं कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो अपनी अपने नाम के लिए कर रहे हैं,
1: जात के लिए,
3: तो वो फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो गया। तो अभी जो है वैसे भी अगर आप डेनमार्क में देखें तो एक यहाँ पे दो रेडियो रह गए हैं, या फिर अभी ये जो डेनमार्क मीडिया जो है वो भी शुरू हुआ है कुछ महीने पहले, तो उसके अलावा आपका यहाँ पे जो है और कोई मीडिया नहीं है, तो यानी वो हमारे एक रेडियो पार्क लिंक था वो खत्म हो गए, एबसलोन में हमारे वो मलिक ताहिर साहब का रेडियो 7 स्टार था वो खत्म हो गया, गोंदर साहब रेडियो करते थे उनका खत्म हो गया, यानी कहने का मकसद है कि यहाँ पे मीडिया जो है वो बहुत चंद जो है अब रह गए हैं, तो उस वजह से जो है वो जो है इतना मोहतरक भी।
1: तो आसफ साहब आपकी नज़र से भी आप ज़ाहिर देखा सुना होगा इस हवाले से, तो आपने अगर आपकी ख्वाहिश है या कोशिश कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या पेशरफ किस तरीके से होनी चाहिए ताकि ये सारे इकट्ठे
2: हो सके। रजा भाई की बात समझ आई है ना, मुझे वो यही हमारे दिन में भी था, इसलिए हमने कोशिश तो की सबको इकट्ठा करने की, हमने कहा कि हम इसका आगाज करते हैं, चाहे हम 3 लोग थे पहले, ठीक है ना, हमने आगाज़ कर दिया, फिर हम कहेंगे आस्ता आस्ता, क्योंकि जिस तरह ये कह रहे हैं मीडिया आस्ता आस्ता बंद हो रहा है, हालांकि वो बंद तो हुए उनके, लेकिन वो किसी ना किसी वाले से सब एक्टिव हैं अपने अपने लेवल, कोई फेसबुक पे है जिस तरह ऑनलाइन कुछ कर रहे हैं, तार साहब मलिक तार साहब हैं ऑनलाइन अपना चैनल बनाया हुआ है,
1: और
2: वो भी देखे ना वो भी अपना बना के कुछ ना कुछ हो रहा है, हम कहते हैं इनको ना एक प्लेटफॉर्म पर भी लेके आए ताकि कल को अगर कोई बंदा आता है, जब भी पाकिस्तान से कोई आता है ना पता है वहाँ तो उन्हें आदत है ना कि प्रेस बुलाएं आप यहाँ, प्रेस कौन सा है, तो हम जब प्रेस का सोचते हैं तो हमें कोई 2-4 बंदे अलावा नजर नहीं आता, इसलिए कहा था कि हम एक प्लेटफॉर्म लेके आए ताकि वो उस पर सब आए, चाहे वो हम हमारी कोशिश ये नहीं है कि आप रेडियो अपना बंद करें और हमारे साथ आ जाए, वो नहीं, आपने जो काम करें वो अपने काम करना है, वो करते रहें ताकि जब भी हम एक मीटिंग करें चाहे साल में एक मीटिंग हो तो पता हो कि एक नाम है यहाँ पे, जिस तरह अगर यूके में देखें तो वहाँ पे 2-3 बड़े बड़े प्रेस क्लब मुख्तलिफ हैं, उस तरह स्पेन में है और डेनमार्क में ऐसा कोई नजर नहीं आता, कोई इत्तफाक नहीं था कोई लोगों में आपस में ना, यही कोशिश की है तो इंशाल्लाह वो आ रहे हैं आस्ता, क्योंकि उन्होंने देखा है कि वाकई संजीदा है इस मसले पे ना, तो वो लोग बात भी करते हैं और आना भी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह आएंगे और ये टीम बढ़ेगी हमारी, ताकि जो जिस लेवल पर काम कर रहे हैं वो करे अपना, जब कोई मेहमान आए पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से तो हम इकट्ठे हों उन्हें बताएं हम कि हम देखें ये मुत्तहिद हैं और हमारा एक प्रेस क्लब है।
1: ठीक, अच्छा मैं साहब दैनिक सियासत के हवाले से आप अगर कोई शेयर करना चाहें कि इस वक्त जो हुकूमत बन चुकी है बड़ी मुश्किल से, तो अभी ये अपना काम सही कर रही है,
0: मेरी दिलचस्पी ज़्यादातर जो भी है ना लिखने की सुनने की पढ़ने की वो पाकिस्तानी मीडिया से है,
1: मीडिया, अच्छा।
0: तो डैनिश मीडिया का जो है हमने सारा तमाम बोझ जो है ये आसफ साहब के कंधों पे रखा हुआ है,
1: ठीक है,
0: तो इनके हवाले से हमें हर चीज़ का पता चलता है,
1: ठीक है,
0: क्योंकि लोग यही कह रहे थे इलेक्शन के दौरान कि मैटे वज़ीर आज़म बनेगी,
1: ठीक है,
0: तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं वेंसरा की हुकूमत बनेगी, तो अब ये है कि ये मिलकर बन गई है ना, तो अब लोग पता है क्या कह रहे हैं कि ये जो है पता नहीं कितने दिन चलेगी, शायद 1 साल के बाद फिर इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे, तो ये जो जमहूरियत है डेमोक्रेसी है पाकिस्तान की और है यहाँ की और है, तो यहाँ भी पार्टियाँ एक दूसरे के साथ तामन वैसे नहीं करती, आपको पता है इलेक्शन होने के बाद कितनी देर तक इनके डायलाग होते रहे हैं, मुद्दत हुई है ना डायलाग का, उस दौरान लोग तो ये समझते हैं कि जी समझौता नहीं हो रहा, बात समझौते की नहीं, गिव एंड टेक की थी बात, जब उन्होंने ऑफर की है तो सबका समझौता हो गया, अब ये समझौता इस बात पे भी हो गया है कि गैर मुल्कियों के मुतल्लिक कवानीन बनाने हैं, आपने बात की है ना, तो अभी मेरे पास मैं घड़ी देख रहा हूँ 15 मिनट रह गए हैं, तो इसके ऊपर तो 2 घंटे इंटरव्यू हो सकता है,
2: मैं थोड़ा सा इसको बढ़ाऊंगा, मेयर साहब
0: ये गिव एंड टेक का सौदा हुआ है, तो ये
2: मेयर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि गवर्नमेंट तो बन गई है, आप लोगों को पता है पता नहीं कितने अरसा उनकी आपस में बातें चलती रही हैं, पहले मेडे को उन्होंने मौका दिया, फिर विंसा को दिया, वो भी नहीं बना सके, ज़्यादा रिकॉर्ड वही थी लास्ट ईयर के कासमुसन, वो अपना ज़्यादा चाहता बल्कि खुद बनना चाहता था, ज़्यादा वजह यही थी
0: जिया, जिया।
2: उसकी क्योंकि वो उसकी सीटें ऐसी हैं कि वो उनके उसके बगैर कोई हुकूमत बन नहीं सकती थी, जब हुकूमत अब बन गई है तो ये छुट्टियां आ गई हैं, अब फिर भी लोग हम जो देख रहे हैं ना इनके बारे में कि अब ये छुट्टियों के बाद जो आएगा इनका पता चलेगा ये कैसे चलाते हैं, फिर भी कहते हैं कि ज़्यादा ये 1.5 साल हुकूमत चलेगी, उसके बाद वस्ता ये मेटे जो है वो आगे EU में चली जाए और यहाँ पर कोई नया बंदा आ जाए या फिर नया नए इलेक्शन हो ना, तभी देखेंगे, अभी ये छुट्टियाँ गर्मियों की ख़त्म होती हैं तो फिर क्या ये कैसे इनके आते हैं जो नए कानून बनाते हैं नए वादे जो इन्होंने किए हुए हैं बड़े बड़े वो कैसे पूरे करते हैं।
0: लंदन में ऐसा हो चुका है ना।
2: हाँ लंदन में तो वो हर
0: देश ने प्राइम मिनिस्टर का पीरियड जो है मुकम्मल नहीं हुआ।
2: नहीं हुआ, अब नया आ गया, अब नया आ रहा है, बल्कि ये
0: दुनिया बदल गई है, बदल रही है।
2: कल आएगा उनका नया।
1: बिल्कुल अच्छा। डैनिश सियासत के साथ साथ पाकिस्तानी सियासत भी हमारे अंदर रची बसी हुई है। ये हो नहीं सकता कि हम जहाँ भी रह रहे हों वहाँ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से जिक्र ना किया जाए। तो पाकिस्तानी सियासत को डेनमार्क में आप कैसे देखते हैं?
2: पाकिस्तान देखें, हम बारह तल्लक पाकिस्तान से जो बंदा यहाँ पैदा होता है पहले 15-20 साल गुजारता है उसके जहन से तो वो आप चीज़ निकाल नहीं सकते।
1: ठीक है।
2: तो हमारे अंदर भी देखें पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पार्टियाँ हैं, हम एक नज़र रखते हैं। अगर मेरा जो पाक डैनिश मीडिया है जो हमारा है इसमें भी अगर देखें ज़्यादा कोशिश होती है कि यहाँ डैनिश खबरें लगे या इंटरनेशनल, फिर भी कोई ना कोई खबर कभी कभी ऐसी आ जाती है कि लगानी पड़ती है,
1: ठीक है,
2: ताकि सियासत के बारे में लोगों को पता चले जो और बाकी जो इंटरनेशनल हो रहा है वो भी पता चले ना।
1: ठीक है।
2: तो ये तो हमारे अंदर है, हम यहाँ पर भी कहते हैं जी पार्टियाँ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों का ख्याल है कि होनी चाहिए, मेरा भी ख्याल यही है कि पार्टियां नहीं होनी चाहिए यहाँ पे ना। एक पाकिस्तान की एक पाकिस्तान के लिए सबको काम करना चाहिए, नाम देना चाहिए, क्योंकि एक सिलसिला चल रहा है। तो मैं भी एक पार्टी का हिस्सा हूँ, पर एक चल रहा है तो हम भी चला रहे हैं। पर मेरा अगर ज़ाती ख्याल पूछेंगे ना तो मैं यही कहूँगा यहाँ पे पार्टियाँ सियासत नहीं बल्कि पाकिस्तान का नाम होना चाहिए, सबको मिल के पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए।
1: क्या आप वजह बताते हैं कि क्यों नहीं होनी चाहिए?
2: क्योंकि वो फिर डिवाइड होते हैं लोग ना। देखें ना यहाँ पर अगर आप देखें हम 4-5 ग्रुप बने हुए हैं।
1: ठीक है।
2: हम इकट्ठे भी कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कहते हैं जी फलां पार्टी का वहाँ आया हुआ है हमने नहीं जाना, वो कहता है फलां आया हमने नहीं जाना। तो अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो हम कोई भी प्रोग्राम बड़े अच्छे तरीके से कामयाब कर सकते हैं। 14 अगस्त हो, ये जो बड़े बड़े कौमी दिन है हमें इस पर काम करना चाहिए, इस पर इकट्ठा होना चाहिए। अगर हम यही पे 14 अगस्त बड़ा प्रोग्राम करें टाउन हॉल, जैसे हमारी कोशिश थी कि इस तरह हम टाउन हॉल पर अपना बड़ा एक प्रोग्राम बनाएँ, पर क्योंकि वो पहली बुक जगह बुक हुई हुई थी
1: 14 अगस्त का
2: अच्छा। क्योंकि 14 अगस्त आ रहा है फ्राइडे को ना, पर ये पूरा वीक ना एक और ग्रुप है डैनिश अच्छा। जो उन्होंने पूरा हफ्ता बुक किया हुआ है अच्छा। तो उसमें हम नहीं कर सके।
1: अच्छा, तो आप कहाँ फिर कर रहे हैं आप?
2: नहीं अभी तो हमारा नहीं था। हम देखा मैं पहले बताया कि मैं पार्टी को यहाँ पे नहीं अच्छा, यहाँ बैठा हूँ अभी तो मैं पार्टी का तो नाम ही ले रहा, ना ही मेरी कोशिश है कि हम पार्टी को प्रमोट करें, क्योंकि यहाँ पे हमने पाकिस्तान कम्युनिटी की बात करनी है। वो भी जो हमारा प्रोग्राम था वो पाकिस्तान कम्युनिटी की तरफ से था,
1: पाकिस्तान कम्युनिटी की।
2: ऐसे नहीं था कि हमने खास पार्टी या किसी सियासत वहाँ तो लाना ही नहीं, हमने तो अपने बच्चों को दिखाना है कि यहाँ पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान को दिखाना है हमने यहाँ।
1: फिर अभी आपने कोई अरेंज किया कि कहाँ?
2: नहीं कर सके ना, क्योंकि जो कोशिश थी हमारी वो थी टाउन हॉल, मेरा हमेशा ही रहा है। अब अगले साल देखें क्या होता है, पर यह है कि नहीं कर सके ना उस तरह, क्योंकि बाकी जगह जो है ना जो हमारा दिल है ना कि पाकिस्तान का नाम प्रमोट हो, लोग देखें, ओपन हो, और वो जगह यही है टाउन हॉल है
1: अच्छा।
2: यहाँ पे अपना
1: कुछ दिन अगर आप चेंज कर सकते, जैसे कि मेरी नजर से गुजरे हैं 2-3 प्रोग्राम हो रहे हैं यहाँ। 8 अगस्त को हो रहा है एक,
2: बिल्कुल
1: एल्बर्ट सलोन में एक हो रहा है, 14 अगस्त को तो जाहिर है एम्बेसी में होगा पहले टाइम, और पिछले टाइम कोई और प्रोग्राम हो रहा है सोसाइटी के हवाले से, फिर एक 16 को हो रहा है इस तरह। तो 2-3 प्रोग्राम तो ये मेरी नज़र से गुजरे हैं, इसी तरह आप कोई ऐसे देख लें कोई ऐसा?
2: ये था एक दिन 23 का दिन था एक हमारे दिन में 23, पर वो टाइम इतना तेज से गुजरता है ना कि बंदा सोचता है अब 23 अगस्त जब आएगा वो जी 14 अगस्त तो इतना गुजर गया, आप अभी प्रोग्राम कर रहे हैं। देखे ना वो ऐसे तेजी से वक्त गुजरता है ना, पता नहीं चलता। पर इंशाल्लाह अगला जो अगला साल होगा ना उसमें हम कोई अच्छा प्लान करेंगे, कोशिश होगी कि 14 अगस्त के आसपास कोई हो और अच्छी जगह पे हो।
1: ठीक। अच्छा मेहर साहब
0: जी,
1: आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो थोड़ा सा इंटरनेशनल आप भी सुनते हैं और देखते हैं खबरें भी, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है अमेरिका ईरान इसराइल के हवाले से, ये ज़रा मुझसे बताएं कि ये दुनिया को मुतासर कर रही है माशी तौर पर भी, इक्तसादी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी। कीमतें जो बढ़ रही हैं पेट्रोल की या रोज़मर्रा चीज़ की, तो आप क्या समझते हैं कि ये मज़ीद ख़राब होगी सूरत हाल?
0: बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जो सिचुएशन जा रही है मिडिल ईस्ट की ना, देखें जी सुपर पावर जो है ना उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर जो ज़मीन का खित्ता है ना, ये मेरी सोच है इसे मुतफिक होना किसी का ज़रूरी भी नहीं, इस खित्ते को उन्होंने اپنے اپنے حساب کتاب سے معیشت کے لحاظ سے اور اپنے سپر پاور ہونے کی طاقت کے لحاظ سے اس کے حصے کیے ہوئے ہیں. اور جب بھی کوئی جنگ لگتی ہے تو آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ قادر حسن جنگ میں کالم لکھتے تھے, 40 سال پہلے میں نے وہ کالم پڑھا تھا. انہوں نے لکھا تھا کہ اب دنیا کی جتنی بھی معیشت ہے نا, اس معیشت کے حوالے سے دشمن کو شکست دی جائے گی,
1: ٹھیک ہے,
0: اس کی اکانومی تباہ کر کے, اس کے وسائل ختم کر کے, اس کی فوجوں کو ختم کر کے, اور اپنے جدید, اب اس کی مثال میں ایسے بھی دیتا ہوں کہ یہ جنگ رکے گی نہیں, یعنی جنگ رکے گی, یعنی اسلام آباد میں آپ نے ڈائیلاگ کیا ہے, ویانا میں ڈائیلاگ کریں گے, پیرس میں کریں گے, لندن میں کریں گے, نیو یارک میں کریں گے, بیجنگ میں کریں گے. میں ذرا اس کی ڈیٹیل بتا دوں, لیکن یہ جنگ وقفے وقفے کے ساتھ چنگاری جو ہے یہ شعلہ بنتی چلی جائے گی.
1: یہ صورت کی,
0: ہاں ہاں یہ وہی بات ہے. اور سپر پاور اس وقت اگر دیکھا جائے وہ اپنی مرضی منوا رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے ہتھیاروں کی. ان کا دعویٰ ہے, میں نام لیتا ہوں امریکہ کے صدر کا, کہ ہمارے پاس جو ٹیکنالوجی ہے دنیا کو فتح کرنے والی کسی دوسرے ملک کے پاس نہیں ہے. یہ ان کے الفاظ ہیں. تو جناب والی یہ انہوں نے لکھا تھا کہ میدان جو تیسری عالمی جنگ کا ہے, پہلے تو یورپ میں رہا ہے نا, آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہے, اب یہ مڈل ایسٹ میں میدان سجے گا,
1: دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتے
0: ہیں. ہاں یہ ابھی مڈل ایسٹ میں سج چکا ہے.
2: بہر صاحب ایک یہ بھی ہے نا, یہ ایک جنگ وسائل کی جنگ ہے جو قبضہ کرنا چاہتا ہے.
0: ہاں وسائل کی جنگ ہے.
1: اور یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا بھی جواب دے دیں کہ ٹرمپ کے دماغ میں یا ذہن میں پھر یہ خیال آ گیا کہ گرین لینڈ کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے ڈنمارک کی پالیسی بیانات تو آ رہے ہیں گائے بگائے, تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتانا چاہیں کہ یہ کس حد تک ڈنمارک
0: وسائل پہ جنگ ہے جی, بس وسائل پہ قبضہ کر.
2: دیکھیں جس طرح اس نے وہاں شروع کیا, اس کا ذہن یہی تھا نا ٹرمپ کا کہ ہم دو دن لگائیں گے, تین دن تباہ برباد کر کے اپنے تیل وغیرہ کے جو بھی آگے ہم نے, انہوں نے جانا تھا کولمبیا یا ادھر جانا تھا, پھر اس کے بعد وینزویلا تو لے گئے نا ان کو اٹھا کے, اس کے بعد کوئن لینڈ کی طرف بیان آ رہے تھے ان کے, ابھی بھی ان کے بیان آ رہے ہیں. پچھلے دن بھی ایک بیان آیا تھا کہ ہم ابھی
1: ترکی میں جو نیٹو
2: کانفرنس, اس میں بھی ہوا ہے, اس سے پہلے ان کا بھی کوئی منسٹر تھا امریکہ, اس نے کہا تھا ابھی ہم بھولے نہیں ہیں, ابھی اس پہ بات چلے گی نا. تو وہ پر یہ ہے کہ وہ چاہتے تو یہی ہیں, پر اس پہ اس مسئلے پہ پورا یورپ اکٹھا ہو گیا تھا ڈنمارک کے ساتھ, یہ تو ہو سکتا ہے ابھی تک وہ لے بھی چکے ہوتے, کیونکہ اس نے کون سا وہاں جنگ کرنی ہے, وہاں اس نے تو آنا ہے اور قبضہ کرنا ہے, کیونکہ ڈنمارک تو اس نہیں ہے اتنا کہ وہ اس
0: کا
2: امریکہ کا مقابلہ کر سکے.
0: مشکل ہے, مشکل
2: مشکل ہے, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاس, یہ ڈنمارک کے پاس ہی رہے گا. اور ڈنمارک کا کہتا ہے ہمارا حصہ ہے اور نہ بیچنا نہیں چاہتے.
0: ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم ملتے رہتے ہیں سودا سلف خریدنے کے لیے, یا ویسے جتنے بھی ہم بوڑھے آدمی ہیں 70+ ہیں 80 ہیں, ان کے ساتھ میری جب گفتگو ہوتی ہے تو میں یہی ان سے کہتا ہوں کہ ایران کے بعد وہ کہتے ہیں پاکستان کی باری ہے.
2: بالکل
0: پاکستان کی باری ہے, کیوں کہ وہ نہیں چاہتے کہ جو کلب ہے, آج آپ کو میں بتاؤں جو ایٹمی کلب ہے نا, اس کے اندر 5 ملک ہیں, چائنا, روس, امریکہ, پیرس اور برطانیہ. ان 5 ملکوں کا ایک ایٹمی کلب ہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا پریس کلب ہے. انہوں نے یہ اوپن کہا ہے کہ ہم کسی چھٹے ملک کو اس میں شامل نہیں ہونے دیں گے.
2: انڈیا بھی ہے ساتواں,
0: انڈیا کو چھوڑیں آپ.
1: بہرحال میر صاحب آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ ایٹمی طاقت امریکہ اس وقت, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس موجودہ دور میں موجودہ صورتحال میں اس کی وہ طاقت اس طرح سے ابھی قائم ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں باقی بلاک بھی ظاہر ہے, چائنا, رشیا, وہ آگے اس وقت چائنیز ٹیکنالوجی آپ کو پتا ہے کہ وہ کتنی تیزی کے ساتھ وہ پوری دنیا
0: بہت تیزی سے بہت تیزی سے
2: امریکہ کی جو سپر طاقت تھا وہ اس نے ایران نے اس سے مقابلہ کر کے دکھایا ہے. طاقت ہی رہی امریکہ کی جو پہلے تھا نام اس کا تھا.
1: آپ نے جو بات کی ہے نا کہ اقتصادی پابندیاں دیکھ لیں, کتنے سالوں سے 45 سالوں سے وہ فیس کر رہے ہیں نا, اس کے باوجود وہ,
0: لیکن غربت بھی تو ہے نا, اس کی کرنسی بھی تو ڈاؤن ہوئی ہے. ترکی کا لیرا بہت پاورفل تھا,
1: سروائیو
0: ترکی کا لیرا بھی گر گیا ہے.
1: اچھا آصف صاحب, ڈینمارک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں ڈینمارک کا رول کس طرح, یہ اپنا رول ادا کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ آنے والا وقت جو ہے ممکن ہے وہ امریکہ اس طرف رخ کرے, تو اس کے لیے ڈینمارک نے کوئی, آپ اپنی رائے ذرا بتائیں کہ کوئی تیاری کی ہوئی ہے یا کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ تارکین وطن جو ہے نا, یہ میں نے بھی باتیں سنی ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو تیار ہیں جنگ کے لیے, امریکہ آئے تو صحیح, ٹرمپ آنے کی ضرورت تو کرے, لیکن ڈینمارک کے اپنے لوگ یا ڈینمارک حکومت اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے جا رہی ہے؟
0: عوامی رائے,
2: یہ جنگ تو کر نہیں سکتے, یہ تو آپ کو پتہ ہے, اتنی طاقت نہیں ہے. پہلے بھی پورے EU جو ہے وہ امریکہ نے انڈر اس کی چھتری کے نیچے ہے, تو وہ کیسے لڑ سکتے ہیں؟ ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. تو یہ تو سیاست ہی ہے, سیاست اور ایک ٹیبل بیٹھ کے بات کریں, اور وہ بات کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ کو کھڑا نہیں ہوا, ڈنمارک اکیلا نہیں ہے اس مسئلے پہ, پورا یورپ اس کے ساتھ ہے. EU میں جو ان کا بنا ہوا ہے اس میں ساری اس پہ بحث ہوتی ہے, اور سب نے بیان دیا ہے حق میں ڈنمارک کے, اور جو عوام ہے وہاں کی وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ڈنمارک کے ساتھ رہیں. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا ٹرمپ کے لیے کہ وہ آ کے قبضہ کر لے, اور اس نے دیکھ بھی لیا ہے جو پچھلی جو کانفرنس ہوئی ہے ترکی میں, اس میں بھی دیکھا ہے کہ سارے متحد ہیں پورا یورپ, تو اس نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, بلکہ خاموشی ہے اس کی طرف سے نا. ویسے تو تھوڑا بہت بیان آتا رہتا ہے, کیونکہ وہ ایک طاقت ہے, تو وہ سرا سرا بھی ہونٹ بھی ہلائیں تو وہ ساری دنیا لرزتی ہے, تو اس کا اثر تو ہے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آ کے قبضہ کر لے امریکہ جو ہے.
0: میں یہاں ایک بات کا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا ایٹمی طاقت کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی, اسلامی ملک ہے, سب کچھ ہے, لیکن جس ملک کے اندر کرپشن سیلاب کی طرح ہر گھر میں گھسی ہوئی ہو, یہ سوالیہ نشان ہے. کیا وہ مقابلہ کر سکتی ہے طاقت؟ بھارت کا تو کر لے گی, سپر پاور کا نہیں کر سکتی.
1: تو اس کا کیا حل ہے میر صاحب؟
0: حل یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کو سزا دے ہی نہیں سکتے. امیر کے لیے قانون اور, غریب کے لیے قانون اور. میری بکری گلی میں کیوں بندی یا چالان ہو جائے گا؟ امیر کا بیٹا قتل کرے تو دوسرے دن جج رہا کر دیتا ہے. تو یہ تفریق جو ہے آپ کو کبھی بھی مقابلہ نہیں کرنے دے گی زندگی بھر.
1: تو یہ کیسے ختم ہو سکتی ہے؟
0: کیسے؟ میں نے کہا ہے نا کہ کرپشن
2: طاقت ہے, امریکہ کے پاس طاقت ہے.
0: آپ کے سپریم کورٹ کے جج جتنے بھی گئے ہیں انہوں نے کہا کہ کرپشن ماں ہے پاکستان کے اندر برائی کی.
1: چلیں
0: اب کروس کریں آپ.
1: ٹھیک ہے آصف صاحب, آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں تک پہنچنی چاہیے وہ آپ کریں, اور اس کے بعد پروگرام
2: شیخ صاحب بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا. آج بڑے اچھا پروگرام چلا رہے ہیں اور اتنے عرصے سے چلا رہے ہیں, یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. اور ہماری کمیونٹی کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ یہاں کی جو سیاست ہے, یہاں کے جو ماحول ہے, جو آپ کے بچے غلط سوسائٹی میں جا رہے ہیں, ان کی کیئر کریں, ان کو دیکھیں. ان کو ویسے تو ہمارا یہ جو تعلیم کا لیول ہے بہت اچھا ہے پاکستانیوں کا, جو باقی بچے جو ہیں ان کو بھی اس طرف لے کے آئیں, ان کی قدر کریں, تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اچھا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے, یہی ڈنمارک میں رہنا ہے, یہی ہمارا ملک ہے. اب ہم چاہیں بھی تو واپس نہیں جا سکتے, تو اس لیے اپنا اس کو اپنا ملک سمجھ کے اس کی حفاظت کریں.
1: ٹھیک ہے شباب,
0: بالکل. ڈنمارک ہمارے بچوں کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, ہمیں انہوں نے ہر طرح کی سہولت دی ہے. بس یہ ہے کہ آپ جس دن سے آئے ہیں آپ کام بھی کرتے ہیں اور میڈیا کا کام بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر جو ہے نا جدت پیدا کریں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, لوگوں کو اور اپنے ویور بنانے کے لیے, سننے والے بنانے کے لیے آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جدت پیدا کریں, اس کو چینل بنائیں
1: بالکل
0: ریڈیو کی بجائے, یہی پیغام ہے.
1: بالکل, میں صاحب کی بات کو آگے میں بڑھاتے ہوئے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں, چاہے وہ سیاسی ہوں, سماجی ہوں, صحافتی ہوں یا ثقافتی ہوں, کسی بھی حوالے سے, اس میں آپ لوگوں کی شرکت بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, اور آپ کی جو خواہش یا ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے ہم آپ سے ریکویسٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ جب ہمارا پروگرام دیکھتے ہو سنتے ہیں اس کو دیکھ کر نیچے کمنٹس کیا کریں, اور ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یا کس موضوع پہ ہم پروگرام کریں یا کس طریقے سے اس پروگرام پروگرام کو آگے بڑھائیں, کیونکہ ہماری کوشش تو یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جو بھی پروگرام ہو وہ ہم سب کے لیے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر وہ فائدہ مند ہو, اور اگر کاز اچھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ سب کو ہمارے ساتھ ملنا چاہیے. اسی کے ساتھ اس آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک نئے پروگرام کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. چلتے چلتے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد.